ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 6 बजे ही अब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों

मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6:05 और 25 सेकंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ही जगत तारिणी, दुख हारिणी, सुख कारिणी, मंगलमयी माँ, हम सबका मंगल कीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धात्री माँ, शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली माँ गौरी, आपकी ज्योति से ही ये जगत जगमग है। आपको बारंबार प्रणाम।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम की यह है अगली प्रस्तुति।

हरि का नाम सुमिर मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे, मानुष का तन पाया तूने, जन्म सफल कर ले मन मेरे।

0: प्रेम हरि को रूप है त्यों हर प्रेम स्वरूप, एक होए हैं यूं लसे ज्यो सूरज और धूप। इन पंक्तियों के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने लता मंगेशकर, राजेश मिश्र और साथियों के गाए भजन सुने। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। चिंतन इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं काका साहब कालेलकर के विचार।
1: अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में गरिमा में स्थान बनाने वाले व्यक्तित्व चिर स्मरणीय होते हैं। काका कालेलकर उन्हीं महिमामय विभूतियों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाते हुए मानवता के उन्नयन का रचनात्मक प्रयास किया। आज भी संपदा हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य सृष्टि के लिए सादर स्मरण किए जाते हैं। महात्मा गांधी के संपर्क में रहने वाले काका कालेलकर पराधीनता को अभिशाप मानते थे। समय की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। फलस्वरूप उन्हें कई बार कारागार की यात्रा करनी पड़ी। प्रदर्शन से परे रहकर समर्पित भाव से काम करने वालों में काका साहब का नाम सम्मान से लिया जाता है। बापूजी के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी कस्तूरबा जी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी काका साहब पर पड़ा। इसीलिए काका कालेलकर हमेशा मानते रहे कि निष्ठा, सदाचार और लगन के द्वारा छोटे से छोटा मानव भी अपनी शक्ति का मनोनुकूल विस्तार कर सकता है। और इसीलिए एक स्थान पर उन्होंने कहा कि सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो कुछ साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तर होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्रवान मनुष्य अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के संपर्क का काका साहब पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। हिंदी भाषा के प्रचार को आप राष्ट्रीय कार्यक्रम का अंग मानते थे। दक्षिण भारतीय प्रचार सभा के सन 1938 के अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। काका साहब ने जीवन पर्यंत हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की सेवा की। जीवन साहित्य, जीवन काव्य, जीवन लीला, लोक माता, बापू की झांकियां और सर्वोदय आदि श्रेष्ठ अमर कृतियां हैं जो पाठकों में श्रेष्ठ मानव संस्कारों का समावेश करती हैं। प्रगतिशील विचारों के होते हुए भी काका कालेलकर भारतीय संस्कृति के एक निष्ठ उपासक थे। उपनिषद आदि भारतीय संस्कृत साहित्य का अध्ययन मनन करने वाले काका साहब ने अपनी कृतियों में अनेक दार्शनिक विषयों को बड़े सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया। मंगल मंदिर खोलो, इस रचना में वे जीवन और मरण के संबंध में लिखते हैं कि जीवन और मरण विराट जीवन के ही दो पहलू हैं। परमात्मा की ये दो विभूतियां हैं। इनमें जीवन मनुष्य की कठोर कसौटी है, जबकि मरण उस क्षमावान परम करुणिक की दया है। मृत्यु के समय मनुष्य को जो वेदनाएं होती हैं वे मृत्यु के कारण नहीं होती हैं। मृत्यु में तो नींद की जितनी ही मिठास और मधुरता है, जो वेदनाएं होती हैं वे जीवन के कारण होती हैं, क्योंकि जीवन अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। इसी संदर्भ में उनका निष्कर्ष है कि मरण का डर और जीने का हौसला असल में मरणोत्तर स्थिति के बारे में हमारे अज्ञान के कारण है। परहित, परसेवा और मानव प्रेम के पुजारी काका साहब की मान्यता थी कि मोहवश होकर मनुष्य को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अपने बाल बच्चे और उनके बाल बच्चे ही हमारी जायदाद के उत्तराधिकारी हैं।

0: हमारे प्रेम के अधिकारी हैं। जिस विराट समाज में हम रहते हैं, हम जीते हैं और जिसके पुरुषार्थ से हमने लाभ उठाया है, वे सब हमारे प्रेम और सेवा के मुख्य अधिकारी हैं।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे काका साहब कालेलकर के विचार। वाचन स्वर था नीरज जैन का। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया।

6:30 हुए हैं। आकाशवाणी आगरा से लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम करंट अफेयर्स। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 पर कार्यक्रम होगा जिले की हलचल। इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर हम प्रसारित करेंगे भैया लाल की वार्ता। विषय रहेगा जल बचत की तकनीकियां। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी। दाद खाज खुजली कारण और उपचार, वार्ताकार होंगे डॉक्टर रूपक सक्सेना। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। आज शुक्रवार है। आज के दिन 9:25 पर आप सुनते हैं गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय वचनों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे यंत्रीकरण के संबंध में गांधी जी के विचार। पूर्वाहन 11:00 कार्यक्रम होगा आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज फिल्म निर्माता निदेशक तिग्मांशु धुलिया पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे मॉनसूनी बरसात हेतु वन संरक्षण आवश्यक, और दूसरा विषय रहेगा प्लास्टिक को कहें ना। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज हमारी बहनें काव्य पाठ सुन सकेंगी। कवित्री होंगी डॉक्टर आराधना भास्कर। चर्चा की जाएगी धरती मां को प्लास्टिक से बचाएं। क्रम रहेगा मेरी पहचान, फैशन ब्यूटी और कुछ तुम कहो कुछ हम। दोपहर 3:00 का वक्त रहेगा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की नशियात का। इसमें आज आप समाप्त फरमाएंगे मकाला माहौलियाती बेदारी और नौजवानों की जिम्मेदारी। मकाला निगार होंगे जनाब समी आगाही। जनाब मोहम्मद यासीन अंसारी का कलाम आप सुन सकेंगे कलामी शायर के तहत। और प्रोग्राम के आखिर में आप समाप्त करेंगे अफसाना, उन्वान रहेगा रोशन चराग। अफसाना निगार होंगी मोहतरमा महमूदा कुरैशी। युवाणी कार्यक्रम में 5:30 हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा। विषय रहेगा यूथ कोलैब। क्रम रहेगा आज का सवाल। इसी कार्यक्रम में एक लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी सुविधा की कीमत पर संकटग्रस्त प्रकृति। वार्ताकार होंगे सुश्री मोना कुकरेजा। इसके अलावा आप सुन सकेंगे आज के हम

सफर और चलते चलते। ग्रामीलो कार्यक्रम में शाम 6 बजे चर्चा का विषय रहेगा सहभागिता योजना। इसी कार्यक्रम में हमारे किसान भाई श्री लटूरी सिंह की वार्ता सुन सकेंगे। विषय रहेगा खरीफ में प्याज फसल की तैयारी। इसके अलावा क्रम रहेगा नई किस्में, जिसमें मक्का की नई किस्मों के बारे में जानकारी दी जाएगी, मंडी भाव बताए जाएंगे और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। इसी कार्यक्रम में एक वार्ता प्रसारित की जाएगी श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान। वार्ताकार होंगे श्री ज्ञानेंद्र कुमार रावत। क्रम रहेगा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, आज की पाती और कुछ सेहत टिप्स दिए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार चतुर्वेदी की वार्ता। विषय रहेगा पर्यावरण की दुश्मन प्लास्टिक। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश, शाम 7:31 पर। इस कार्यक्रम में आज भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी स्वच्छ भारत से प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना। इस विषय पर डॉक्टर आनंद राय से भेंट करेंगे अनिंद्र सिंह। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और बशीर अहमद। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री भैयालाल की वार्ता। विषय है जल बचत की तकनीकियां।
1: जल प्रकृति की देन है जो हमें जीवन प्रदान करता है। सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की शारीरिक रचना में सबसे बड़ा भाग जल का ही होता है। बिना जल के इन सभी का अस्तित्व संभव नहीं है। हमें अपने दैनिक उपयोग, फसल उगाने, पशुओं को पिलाने तथा उद्योग धंधों को चलाने के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना जल के कुछ भी नहीं हो सकता है। अतः हमारे जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व है। विश्व में उपयोगी जल की मात्रा सीमित है। सारी धरती पर 140 करोड़ घन किलोमीटर जल विभिन्न रूपों में है। इसका 97.38% भाग समुद्रों में है जो खारी है। समुद्र का यह खारी जल उसी रूप में हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसके अतिरिक्त 2.01% जल बर्फीली चोटियों एवं हिमनदों में जमा पड़ा है। 10.58% भाग जल जमीन के अंदर है। 0.02% जल तालाब, झीलों एवं नदियों में तथा 0.01% जल वातावरण में वाष्प के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मात्र 0.60% जल जो जमीन के अंदर, तालाब, झीलों एवं नदियों में है, वही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसी सीमित जल से हमें सारे कार्य चलाने हैं, घरेलू उपयोग में लाना है, फसलें उगानी हैं तथा उद्योग धंधों में प्रयोग करना है। लेकिन मितव्ययता के साथ हमारे देश में 90% से अधिक जल की खपत सिंचाई में होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र हमारे देश में है, लेकिन आज भी सिंचाई का बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है। खुली और कच्ची नहरों, नालियों से पानी जमीन में रिस जाता है तथा हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार वर्षा का बहुमूल्य पानी भी इधर उधर बहकर नष्ट हो जाता है। जल की इस हानि को रोकना बहुत जरूरी है। कच्ची नहरें, नालियों से सिंचाई जल की हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इनको पक्की बनाया जाए या पाइप द्वारा पानी खेतों में पहुंचाया जाए। ऐसा करने से इनसे रिसाव एवं अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा होने वाले सिंचाई जल की हानि रुकेगी तथा काफ़ी मात्रा में सिंचाई जल को बचाया जा सकता है। टपक सिंचाई एवं स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग करके पानी काफ़ी मात्रा में सिंचाई

0: जल की बचत की जा सकती है। टपक सिंचाई तकनीक बागों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सिंचाई जल को पाइप बिछाकर पौधों की जड़ क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, जहां यह बूंद बूंद करके भूमि को नम करता है तथा पौधों को उपलब्ध होता है। खेतों से होने वाली वर्षा एवं सिंचाई जल की हानि को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि खेत समतल हों तथा उनकी मेड़ें मजबूत बनी हों। खेतों में ढलान होने से वर्षा एवं सिंचाई का जल तेजी के साथ ढलान की ओर बहकर नष्ट हो जाता है। खेतों से बहने वाला जल अपने तथा अपने साथ उपजाऊ पोषक तत्व एवं मिट्टी को भी बहा ले जाता है। इस हानि को बचाने के लिए ढाल के विपरीत जुताई करना चाहिए। 6% से अधिक ढाल वाली भूमि में वेंच टेरेस यानी सीढ़ीदार क्यारियां बनाकर ढाल को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खेतों से होने वाली सिंचाई जल की हानि को बचाने के लिए सिंचाई हल्की करें। बाग बगीचों में थालाब से सिंचाई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खेत खुला छोड़ दें, जिससे वर्षा जल को अधिक मात्रा में सोख सके। वर्षा के मौसम में प्रत्येक वर्षा के बाद ओट आने पर खेत की जुताई करके प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगावें। भूमि की सतह से वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल हानि को रोकने के लिए खेतों की निराई गुड़ाई करते रहें। मल्च का प्रयोग करें। खेतों से खरपतवारों को नष्ट करते रहें। खेतों में कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट एवं हरी खाद का प्रयोग करें। भूमि पर्याप्त जीवांश होने पर भूमि की जल धारण एवं जल संरक्षण क्षमता बढ़ जाती है। वर्षा जल खेतों में पड़ता है तो यह जल मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। एक स्थिति आती है, खेत और अधिक जल नहीं सोख पाता और फालतू पानी खेत से बहकर बाहर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इस फालतू पानी को वाटर हार्वेस्ट तकनीक द्वारा फार्म या खेत के उपयुक्त स्थान पर प्रक्षेत्र तालाब बनाकर एकत्रित कर लेना चाहिए। एकत्रित किए गए वर्षा जल को आवश्यकता अनुसार सिंचाई में प्रयोग करें। वर्षा के बहुमूल्य जल को इकट्ठा करने के लिए गांव के तालाबों को गहरा कराएं। ऐसा करने से न सिर्फ वर्षा जल का सदुपयोग होगा बल्कि भूमि का जल स्तर भी ऊपर आएगा। सिंचाई के अतिरिक्त दैनिक एवं घरेलू कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल सामान्यतया नहाने पीने, जानवरों को पिलाने, कपड़ा धोने, शौचालयों में एवं अन्य घरेलू कार्यों में प्रयोग लाया जाता है। दैनिक कार्यों के लिए 40 लीटर पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है, लेकिन जिन परिवारों में नल या हैंडपंप हैं वे परिवार आवश्यकता से अधिक पानी बर्बाद करते हैं। शौचालयों में 4 से 5 लीटर पानी एक व्यक्ति शौचालय के समय बर्बाद कर देता है। जल की इस बर्बादी को रोकना चाहिए। घरेलू कार्यों में उतना ही पानी प्रयोग किया जाए जितना आवश्यक हो। शौचालय में ऐसे पाट लगाए जाएं जो कम जल से प्रयोग से स्वच्छ हो सकें। सड़कों पर पानी के नलों का प्रयोग करने के उपरांत प्रायः उन्हें खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी अनावश्यक रूप से बहकर नष्ट होता रहता है। ऐसे नल लगाए जाएं जो प्रयोग करने के उपरांत स्वतः बंद हो जाएं। इस प्रकार जल की बचत, इन तकनीकियों का प्रयोग देश के सभी नागरिक करेंगे तो 60% से भी अधिक जल की बचत कर सकेंगे तथा पानी की कमी से होने वाली परेशानियों से बच सकेंगे। हम सभी लोग जल के महत्व को समझें और अन्य व्यक्तियों को बताएं कि जल ही जीवन है। जीवन को धरा पर स्थायी बनाए रखने के लिए जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करें। प्रत्येक प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर जल की बर्बादी को रोकें।
1: जल बचत की तकनीकियां।

0: आप ये वार्ता सुन रहे थे, वार्ताकार थे श्री भैयालाल। इसके साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर SP सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। 75 दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्र यात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च

0: प्रायः अष्टाशीत्यधिक अष्टशतोत्तर त्रीणि सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2

0: Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in the round of 32 match in Toronto, Canada. In the ICC Women's T20 World Cup, host England defeated South Africa by 40 runs in the second semi-final at the Cannington Oval in London to set up a title clash with Australia. Put into bat first, England posted 169 for 5 in the 20 overs, riding on net Shivar Brand 75 runs off 47 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज के अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर रूपक सक्सेना की लघु वार्ता। विषय है दाद खाज खुजली, कारण और उपचार।
2: आज मैं आपके सामने दांत खाज खुजली के बचाव एवं उपचार के विषय में अपने विचार लिखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, दांत या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस गर्म एवं उमस वाले मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कमज़ोर होती है या हमारी हाइजीन पुअर होती है, जैसे कि नित स्नान न करना या अपने खान पान में पौष्टिक आहार को सम्मिलित न करना, तब ये इन्फेक्शन हमें जल्दी पकड़ते हैं। ये सिर से लेकर पैर तक कहीं भी पनप सकते हैं। प्राय सिर में फंगल इन्फेक्शन 14 साल से कम आयु के बच्चों में अक्सर देखे जाते हैं। इसमें जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उस जगह बाल तक गायब होने लगते हैं। ऐसे ही जांघों का फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम धोबीज इच कहते हैं, ये मर्दों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही पैर का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा देर तक जूते पहने होते हैं या जिनमें पैरों के उंगलियों के बीच में विशेष तौर से पसीना बहुत देर तक ठहरता है। इसलिए इसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें खिलाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलता है। अक्सर दांत में खुजली एक प्रमुख लक्षण होता है और ये बढ़ते समय एक गोलाकार का रूप ले लेता है। इसीलिए इस इन्फेक्शन को आम भाषा में हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। जय यह शरीर के बहुत सारे हिस्से को प्रभावित करता हो या बहुत तेज़ी से जब फैलता है, तो यह डायबिटीज़ या मधुमेह एवं HIV इन्फेक्शन का संकेत देता है। अतः दांत से बचने के लिए हमें अपने खान पान के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ती है। बदन पर गीला वस्त्र न धारण करना व बंद जगहों जैसे कि कांख, रागें व पैर की उंगलियों के बीच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका संभव हो तो अपने ऑफिस में कुछ देर के लिए अगर आप जूते मोजे उतार के बैठ जाएं तो ये अच्छा होगा, या मोजे जो हैं कॉटन सॉक्स पहने और हमेशा सूखे मोजे पहने, कभी नमी ना हो। आजकल इन दांत के इलाज या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का इलाज अमूमन 6 से 8 हफ्तों में बड़े आराम से संभव है। पर हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी केमिस्ट के द्वारा या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज ना लें, वरना ये और विकृत हो जाता है। हमेशा एक विशेषज्ञ से ही सलाह लें। ऐसे ही सूखी खाज या स्केबीज भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो, एक बंद कमरे में या छोटे सी जगह में कई सारे रोग रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में ये स्केबीज बहुत कॉमन है। इसका भी मुख्य लक्षण अत्यंत खुजली होना, विशेष तौर पर सोते समय। ये चूंकि एक छूत की बीमारी है, अतः ये परिवार के और सदस्यों को भी प्रभावित करती है। इसका भी इलाज एक विशेषज्ञ द्वारा सुचारू रूप से संभव है। तो मैं अंत में एक बार ये बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अवस्था में जब भी दांत खाज या खुजली हो, तो केमिस्ट या झोला छाप डॉक्टरों द्वारा कभी भी इलाज ना लें, क्योंकि जब आप इनके द्वारा जब कोई भी दवा लेते हैं तो इसमें अक्सर स्टीरॉयड नामक औषधि होती है, जो आपके मूल जो रूप है उस बीमारी के स्वरूप को भी बदल देती है। इससे बात इसको ठीक करने में और परेशानी होती है, आपका खर्चा भी बढ़ता है।

0: है, समय भी बढ़ता है और कभी कभी विशेषज्ञ को भी इसको ठीक करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको दाद, खाज या खुजली आपको परेशान करे, तो एक विशेषज्ञ के द्वारा ही इसके उपचार के लिए प्रयास करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रूपक सक्सेना की लघु वार्ता। विषय था दाद, खाज, खुजली, कारण और उपचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से आइए अब सुनते हैं समवेश्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं समवेश्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: में कुछ है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।

0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए SIT दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VVG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
3: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर SIT की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। ADA के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ADA की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
2: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026-29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
5: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर

0: मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत अच्छा योजना। अब आपका बीच भारत, बीच उत्तर प्रदेश और बीच राज्यसभा में
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने

प्रयागराज में वीबी जी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत, मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। जिंदगी की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। सभी सुनने वालों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओ, कैसे हैं आप? जी, आप कहेंगे ठीक हैं। ठीक ही होना चाहिए। अगर हम ठीक हैं तो सब कुछ फिर ठीक ही है। लेकिन हम ठीक हैं और ठीक ही रहें, हमेशा ठीक रहें, इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान हमेशा देते रहने की जरूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अभी घर से बाहर जा रहे हैं और कुछ सामान लेने के लिए आपको जाना है, ब्रेड लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, या घर की और किसी तरह की किसी चीज को लेने जाना है, तो जाते समय क्या आपके मन में यह ख्याल कभी आता है कि मैं जो सामान लेने जा रहा हूँ उस सामान को कैसे लेकर आऊँगा, यानी किस में रख कर लेकर आऊँगा? आपको मालूम है कि जो दुकानदार है वो सामान देगा और एक पॉलीथिन के बैग में रख कर दे देगा और आप बहुत खुशी खुशी चले आएंगे सामान लेकर। घर में आकर सामान रख देंगे और जो पॉलीथिन है उनको आप कूड़े कचरे में कहीं भी जहां भी होगा डस्टबिन वगैरह में आप उसको डाल देंगे। कई बार आप उसको रख भी लेते हैं कि आगे कभी काम आएगा, लेकिन प्लास्टिक का जो बैग है वो सुविधाजनक तो है और आप जब घर से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, अच्छा लगता है कि भाई खाली हाथ जाएंगे हिलाते हुए, उधर से सामान रख लाएंगे दुकानदार दे ही देगा। दुकानदार प्लास्टिक बैग इसलिए दे देता है क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है। हालांकि अगर आप मना करेंगे कि प्लास्टिक बैग में मुझे नहीं चाहिए तो उसके लिए फायदा है और वो फायदा केवल दुकानदार के लिए नहीं है, उससे कहीं ज्यादा फायदा हमारे लिए है, खुद के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है और हमारे जो आसपास जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके लिए है। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।

चाहे वो पानी की बात हो, धरती की बात हो, खाने पीने की चीजों की बात हो, प्लास्टिक हर चीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ती ही है। आपने गौर किया होगा, आप कहीं जाते हैं, कहीं बैठे हुए हैं और आपका मिलने वाला कहता है कि भाई चाय पियेंगे, आप कहते हैं हाँ पी लेंगे, एक कोई औपचारिकता नहीं होती कभी कभी। तो अब चाय वाले को बोलेंगे या कहीं चाय लेने के लिए जाएंगे या किसी को आप भेजेंगे, तो आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक की थैली में गरम चाय लेकर आ जाते हैं और गत्ते के दो तीन चार जो भी हैं कप लेकर आ जाते हैं, और खट से कप रखे और प्लास्टिक की थैली में से चाय को उड़ेल दिया। अब जो वहां से दुकान से लेकर आप तक जो चाय पहुंची, वो खौलती हुई उबलती हुई चाय एक प्लास्टिक की थैली में आप तक जो पहुंची, तो थोड़ी सी तो ठंडी भी हुई होगी, लेकिन जिस समय थैली में उबलती चाय को डाला गया होगा, रखा गया होगा, उस समय कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया चाय और प्लास्टिक की थैली के बीच में हुई होगी। आप ये तय मान लीजिए कि जब प्लास्टिक किसी भी गर्म पानी के में या गर्म चीजों के संपर्क में आती है तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होती है, और उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, दुनिया भर की ऐसी नुकसानदायक जो चीजें हैं, गैसें हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं आसपास हमारे हो जाती हैं, और यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुओं में भी हो जाती हैं। और ये जो हमने अभी आपको नाम लिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, इथेन, ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक होती हैं। एक छोटे समय में, एक छोटी सी जब प्रभाव होता है तो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे लगातार लगातार जब हम इसी के संपर्क में रहते हैं, अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं और लगातार हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में कैंसर का कारण भी बनते हैं। कैंसर केवल ये तम्बाकू, गुटखा, पान, मसाला, इन चीजों से ही नहीं होता है, प्रदूषण भी बहुत बड़ा एक कारण है कैंसर के लिए, और उसमें प्लास्टिक सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव फैलाने वाला एक कारक है। तो हमारा आपसे केवल ये कहना है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, वो छोटा सा काम है, घर से एक आप थैला लेकर जा सकते हैं, बैग लेकर जा सकते हैं, और जब सामान लें और दुकानदार आपको प्लास्टिक की थैली में सामान दे, तो उससे साफ मना कीजिए कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें केवल या तो कागज की थैली में या फिर जो जूट के थैले होते हैं आजकल चल रहे हैं, कपड़े के थैले चल रहे हैं, या उनमें दीजिए, या फिर जो हमारे पास अपना थैला है हमें इसमें हमारा सामान रख दीजिए, हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए। और दुकानदार को ये बोलिए कि भैया आप भी प्लास्टिक इस्तेमाल मत किया कीजिए, बहुत नुकसानदायक होती है, और प्लास्टिक केवल हमारे लिए ही नहीं नुकसानदायक होती, हमारे आसपास जो गाय भैंस पशु जो चरते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, शहरों में भी आवारा पशु होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जिनके घर में गाय हैं वो सुबह शाम अपने जब गाय दूध देती है तो घर में बांध लेते हैं और दिन में उसको छोड़ देते हैं, अब वो बाहर क्या खा रही हैं क्या नहीं खा रही हैं, बहुत सारी गायें तो प्लास्टिक की थैली को चबा चबा कर, अगर उसमें कुछ सामान है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे घर में सामान बचा हुआ है और थैली में पैक किया और सड़क पर फेंक दिया या कूड़े में कचरे के ढेर पर फेंक दिया, अब गाय या पशु इधर उधर घूमते हैं और वो उसको खा लेते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि जितना हम इसको चबाएंगे इसमें से सामान निकलेगा, लेकिन वो चबाते चबाते प्लास्टिक की थैली भी उनके पेट में चली जाती है, और ये कभी कभी उनके लिए जानलेवा साबित होती ही है। तो हम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, हम इतना क्यों नहीं सोच पाते हैं कि जिस वातावरण में, पर्यावरण में हम रह रहे हैं और हमारे ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हम काम करते हैं, इनसे कितना बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण को होता है, हमारे आसपास के जो जीव जानवर हैं उनको होता है, हमें होता है, हमारे समाज को होता है। तो हमें कहीं ना कहीं तो ये सोचना ही चाहिए कि हमें किस तरह से काम करना है, समय बचाने के लिए, या क्या है अगर हम हाथ में थैला लेकर चले जाएंगे तो कोई शान घट नहीं जाएगी हमारी। पहले भी तो कभी ऐसा होता था जब ये प्लास्टिक की थैली नहीं चलती थी, अब आप कहेंगे कि प्लास्टिक की थैली बनती ही क्यों है, भैया आप इस्तेमाल करते हैं तो बनती है,
और प्लास्टिक का बहुत सारा सामान बनता है।

ये भी सोचेंगे प्लास्टिक की तो कुर्सियां भी हैं, टेबल भी हैं, बहुत सारा सामान प्लास्टिक का बन रहा है। हाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत सारा प्लास्टिक का सामान ऐसा होता है जो रिसाइकिल हो जाता है, उसका संग्रह कर लेते हैं लोग, कंपनियां ही संग्रह करा लेती हैं। आपने देखा होगा पानी की बॉटल होती है, आप जब खरीदते हैं उसको फेंक देते हैं, तो बहुत सारे लोग जो कचरा बीनने वाले होते हैं या सफाई कर्मी होते हैं, उनको इकट्ठा करके और एक जगह ले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि मशीनें लगी हुई हैं, आप उसमें पानी की बोतल डालिए, बल्कि उसमें तो एक सिक्का भी निकलता है कहीं कहीं, तो ये सब क्या है, वो रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन जो ये पॉलीथीन की छोटी छोटी जो थैलियां हैं, इन्हें जो आप फेंक देते हैं, ये रिसाइकिल नहीं होती हैं, और ये जहां कहीं भी पड़ी होती, इनका विघटन भी बहुत आसानी से नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, और जब ये खेतों में पहुंचते हैं तो वहां की मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो ये नुकसान तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों पर भी अगर हम ध्यान दे दें तो हो सकता है कि हम अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में मदद कर सकते हैं, और स्वच्छ पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप संकल्प लीजिए कि आज से हम प्लास्टिक को मना करेंगे, स्वयं के लिए भी कहेंगे और दूसरों के लिए भी कहेंगे, भाई प्लास्टिक को इस्तेमाल मत कीजिए, ये हमें नहीं चाहिए, और एक स्वच्छ साफ सुंदर पर्यावरण की कल्पना कीजिए।

0: जो आप सपना देख रहे हैं उसे साकार करने का संकल्प भी लीजिए। आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो हम सफर विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद सूचनाएं।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के साथ।
1: के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस DTH सेवा का उठाए लाभ,
1: आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 2400 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रूपये और विमान ईंधन में 5 रूपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक सिलेंडर दिल्ली में अब 2,930 रूपये का मिलेगा। 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत भी 13 रूपये घटाकर 808.50 रूपये कर दी गई है। घरेलू उपयोग वाले 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं है। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम में इस वर्ष की यह पहली कटौती है। बीते महीने इसके दाम बढ़कर 3,113 रूपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए थे। STF की कीमतों में 5 रूपये प्रति लीटर की कटौती के बाद दिल्ली में कीमत घटकर करीब 110 रूपये प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सचिवों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 13,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत अधिकारियों के नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 4,372 पदों के सृजन को हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि वर्तमान में लगभग 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में करीब 42,000 ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त प्रभार के जरिए काम कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग सचिव की तैनाती करना है, ताकि पंचायतों के प्रशासनिक और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। नई भर्ती पूरी होने के बाद अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था भी समाप्त होने की उम्मीद बन जाएगी। मॉनसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने आगरा और आसपास के क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार को

गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम बदला बदला रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में 5.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई और आर्द्रता 73% और शाम को 47% रही। गुरुवार को दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रही। दोपहर बाद तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम का मिजाज बदलेगा। बादलों की आवाजाही के बीच एक दो दौर की बारिश और गरज चमक की संभावना है। बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि इस दिन कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बादल और वर्षा की गतिविधियों से दिन के तापमान में गिरावट आएगी। बारिश के दौरान पेड़ों और बिजली के खम्भों के नीचे आप खड़े न हों, खुले मैदान, खेत और जलाशयों से दूर रहें, तेज हवा में कमजोर पेड़ों, होर्डिंग और निर्माणाधीन भवनों से दूर रहें, खुले स्थान पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग भी न करें। मौसम खराब होने पर आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। नीट यूजी और जेईई परीक्षाओं के स्कोर पर आधारित मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिलों की मेरिट में अब 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले अंक भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% तक वेटेज यानी महत्व देने का सुझाव दिया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डीआरडीओ ने वर्ष 2026 के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये फेलोशिप उन युवाओं के लिए बेहतर अवसर है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और देश की रक्षा तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आदि पद निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ बीई बीटेक डिग्री या वैध गेट स्कोर होना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक लिंक tinyurl.com/mrm8eswa पर विजिट किया जा सकता है। शहर में बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। शहर में बड़ी संख्या में वैन, ऑटो और ई रिक्शा स्कूली बच्चों को ढो रहे हैं। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग अभियान चला रहा है। बुधवार को पहले दिन 5 वाहन सीज और 12 का चालान किया गया। गुरुवार को 1 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। स्कूल प्रबंधकों से 7 जुलाई तक स्कूली वाहनों की फिटनेस और परमिट अपडेट कराने के साथ ही प्रत्येक चालक पर ड्राइविंग लाइसेंस होना सुनिश्चित करने को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध स्थायी कॉलेजों की स्नातक और परास्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। शहर के प्रमुख महाविद्यालयों में कई पाठ्यक्रमों की सीटें फुल हो गई हैं, लेकिन मंडल के निजी कॉलेजों में बंपर सीटें खाली हैं। अभी तक सीटों की तुलना में काफी कम समर्थ पंजीकरण हुए हैं। ऐसे में अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध स्थायी कॉलेजों की स्नातक और परास्नातक की 50% सीटें खाली रह गई हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र नीट और जेईई की तैयारी को प्राथमिकता

0: दे रहे हैं। छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित कॉलेजों से स्नातक को प्राथमिकता दे रहे हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम की जगह छात्र रोजगार परक पाठ्यक्रम कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक वीडियो लिंक जारी किया है। किसी भी तकनीकी समस्या या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन ईमेल आईडी samarthbdrau@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। और अब आसपास कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार कविता पुत्री जोगेंद्र सिंह, निवासी गांव सिकंदरपुर, थाना सैया, जनपद आगरा। कविता दिनांक 26-27 मध्य रात्रि को मई से लापता है। कविता की उम्र 19 वर्ष है। कद 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला है और इकहरा बदन है। चेहरा गोल, आंखें काली हैं। घटना के समय कविता ने शलवार सूट पहना हुआ था। कविता के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सैया, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार नीरज सिंह उर्फ भूरा, पुत्र सुरेश सिंह, निवासी धीतापुरा मोतीपुरा, थाना सैया, जनपद आगरा। नीरज सिंह उर्फ भूरा दिनांक 24 मई 2026 से सुबह 9:45 से अपने घर से लापता है। नीरज सिंह की उम्र 33 वर्ष है। कद लगभग 5 फीट, रंग सांवला है, इकहरा बदन है, चेहरा गोल है और घटना के समय पैंट और शर्ट पहने हुई थी। नीरज सिंह उर्फ भूरा के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सैया, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना के अनुसार अविनाश गुप्ता, पुत्र श्री राममोहन गुप्ता, निवासी भगवती विहार कॉलोनी, सेवला सराय, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा। अविनाश गुप्ता 6 जून 2026 से अपने घर से लापता है। अविनाश गुप्ता की उम्र 28 वर्ष है। कद लगभग 170 सेंटीमीटर, रंग सांवला है, चेहरा गोल है। अविनाश गुप्ता के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। शिव धाकड़, पुत्र राजेश कुमार, निवासी नाला पचकुइया, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा। शिव धाकड़ की उम्र 15 वर्ष है। कद 5 फीट 11 इंच, रंग गोरा है, शरीर लंबा और औसत है, चेहरा सामान्य है। बाईं तरफ कमर पर चोट का निशान है। शिव धाकड़ 11 अप्रैल 2026 से दोपहर 3:30 से लापता है। शिव धाकड़ के बारे में कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्य के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: का साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
3: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। का मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश

0: के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़राए आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक्वामे मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़राए आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़राए आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दोतरफा खुसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इक्तसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तई अपने मुश्तरका अहद का इआदा किया है। इक्तसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इक्तसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली, सलामती और इक्तसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आजादाना और खुला भारत बहरुल काहिल नीज मुख्तलिफ खित्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे इकदामात के दरमियान तालमेल से तरफैन को इक्तसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दोतरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात, इंफॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के अहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और उनके जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी की एक और लीडर रीता ब्रता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों के हिदायत दी गई है कि वो पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें।

0: पार्टी के तंजीमी ढांचे और उसके काम करने की अथॉरिटी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस का तनाजा इंतखाबी कमीशन के सामने चला गया है। इस तरह के तनाजात में चुनाव निशान अलॉट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4 से 9 जुलाई तक साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पाबित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आखिरी रसूम में उनकी मौजूदगी तहजीबी राबतों की अहमियत को उजागर करती है, जो अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के माबैन सियासी और इकतसादी राबतों को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज कोलकाता में मगरबी बंगाल असेंबली के नए मुंतखब अरकान के लिए 2 रोजा तरबती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद नए मुंतखब अरकान को कमेटी निजाम, माली निगरानी, पार्लिमानी मुराद और कानून साजी में उभरते हुए डिजिटल पहलुओं समेत पार्लिमानी और कानून साजी के कामकाज के मुख्तलिफ उमूर से रोशनास कराना है। पंचायती राज की वजारत आज नई दिल्ली में पंचायती राज के रियासती वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी ताकि 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस वर्कशॉप की सदारत पंचायती राज महकमे के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे, जबकि इसमें रियासती वजीर ममलकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है, जो 57 दिन तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा के इस सफर में शामिल होंगे। अकीदतमंद तकरीबन 3,888 मीटर की बुलंदी पर वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फितरी तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि आज सुबह खवातीन और बच्चों समेत 4,800 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
2: बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के बीच आज सुबह हजारों की तादाद में यात्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गार की तरफ रवाना हो गए। 57 रोजा इस यात्रा के दौरान लाखों यात्री नुनवन पहलगाम और बालतल के रास्तों से सफर करके बाबा बर्फानी के यहाँ अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर हुक्काम ने तिब्बी कैंपों, आरामगाहों, लंगर खानों, पीने के पानी की सहूलियात जैसे जामिया इंतजाम किए हैं। दरियासना यात्रियों का दूसरा काफिला आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज सपहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसान की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। थाईलैंड में शुमाल मशरकी मुगदह

0: सोलन सूबे में 11 साल के एक लड़के ने एक पिकअप ट्रक यात्रा के लिए जाने वाले राहिबों के एक ग्रुप से टकरा दिया। इस वाकये में 9 राहिबों की मौत हो गई। 13 दीगर जख्मी राहिबों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मस्कूरा लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। जनूब मगरबी मानसून दिल्ली में मजीद आगे बढ़ गया है। ये गुजरात के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बकिया हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों की जानिब भी बढ़ रहा है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश और कहीं बहुत ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में मतला अबरारूद रहने के इम्कान के साथ साथ दिन में हल्की बारिश हो सकती है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से एनसी ब्रंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने 47 गेंदों पर 75 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। एनसी ब्रंट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फीफा आलमी कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यह मैच कैलिफोर्निया के इंग्लवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेद्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबारात ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप सुनते हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 8:45 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं

सदाबहार फिल्म संगीत कार्यक्रम है गीतांजलि और कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूं आपका रेडियो हम सफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

आशिक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मुकेश का गाया हुआ, शैलेंद्र के बोल थे, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। रवि की तर्ज पर एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गीतकार हैं शकील बदायूनी, फिल्म का नाम है गहरा दाग, आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की।

गहरा दाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है प्रेम बंधन। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल। फिल्म का नाम था प्रेम बंधन। युगल आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम में आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ये है गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है समुंदर। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

राहुल देव बर्मन की तर्ज पर आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल। फिल्म का नाम था समुंदर। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में है। फिल्म का नाम है दोस्ती। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 हुए हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 613 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल

0: परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है।
1: यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
2: पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प हुआ है और सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि पहले दंगे और पलायन जैसी घटनाएं आम थी, जबकि अब प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का CCTV वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच समिति गठित की। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1.31 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। SPCT व्योम बिंदल ने इसे जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। वहीं फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला भी सामने आया। विभागीय जांच में दस्तावेज फर्जी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सड़क सुरक्षा, साइबर सेवाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में पोलियो बूथ पर एक छोटे बच्चे को ड्रॉप्स पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,09,306 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार शक्ति दिखाई है। कार्य में लापरवाही मिलने पर नकुर थाने की अम्बेटा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा साइबर अपराध, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नियमित चेकिंग अभियान को तेज किया गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने मंडल स्तरीय बैठकों में विकास कार्यों, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की।
3: अभी मंडली समीक्षा में हमने विकास कार्यों की जो कुछ कार्य हैं पर्यटन विभाग के वो इनकम्प्लीट हैं और UPCNDS इसमें कार्यदायी संस्था है, तो उनको हमने पुलअप किया कि इसको समय पे पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा अभी आने वाला जो मानसून सीजन है इसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को।
2: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जल भराव, बाढ़ जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बाइट मंडलायुक्त रूपेश कुमार। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सर्वाधिक कर देने वाले 10 व्यापारियों और उद्यमियों को DM अरविंद चौहान व नगर विधायक राजीव उम्बर ने शील्ड, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। में लगभग पूरे महीना भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। कई बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि इन दिनों मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, गरज चमक और मानसून की आगमन की संभावना जताई। सामाजिक और खेल गतिविधियों में भी जिला सक्रिय रहा। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता Under-12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल जिला साइकिलिंग संघ की कार्यकारिणी का विस्तार तथा CIS द्वारा अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी की अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आयोजित सौहार्द कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे। हरविंदर सिंह लार्ड की अध्यक्षता में UP सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गुरुप्रीत सिंह बग्गा को नवाब कपूर सिंह सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सिख समाज की एकजुटता, धार्मिक मर्यादा और युवाओं के लिए मुफ्त UPSC कोचिंग की घोषणा की गई। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ करते हुए शातिर आरोपी गणेशपुर निवासी रोहित उर बाबा को गिरफ्तार किया। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक नदी के डूब क्षेत्र में कमरे में छापा मारकर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए।
4: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय श्रीवास्तव का।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर के धनघटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत कबीर नगर को 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बाबा तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, मघर के सुंदरीकरण और बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किया।

0: अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने पर विशेष जोर दिया। जनप्रतिनिधियों ने मेहंदावल धनघटा मार्ग को 4 लेन बनाने, जर्जर बिजली तारों को बदलने, नगरीय आवासों के निष्पक्ष आवंटन तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग उठाई। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कार्यों में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी निर्देशों का 100% पालन कराने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर में कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक विवेक मिश्रा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। संत कबीर नगर जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरकों, अस्पताल, भोजनालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कारागार में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न हो, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कारागार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संत कबीर नगर की महुली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अशोक चौहान, शिव कुमार उर्फ नकुल चौहान और राजन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और पुलिस टीम पर हमला किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। संत कबीर नगर के नाथनगर विकास क्षेत्र में पुत्सर में बिना मान्यता के संचालित स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई IGRS पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में जारी नोटिस के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का प्रवेश निकटवर्ती सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया कि जिले में 3,11,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 858 बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय वचनों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा।

और अब यंत्रीकरण के संबंध में बापू के विचार। मैं मशीनों का नहीं वरन उनकी अंधाधुंध चाह का विरोधी हूं। आज श्रमहारी मशीनों की प्रबल चाह है। मनुष्य यहां तक श्रम को बचाता जा रहा है कि हजारों लोग बेकार हो जाते हैं तथा भूख से तड़प कर मरने के लिए सड़कों पर जा पड़ते हैं। मैं मनुष्य के किसी अंग के लिए नहीं वरन समस्त मानव जाति के लिए समय की बचत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संपत्ति का संग्रह कुछ लोगों के हाथों में नहीं वरन सबके हाथों में हो। आज यंत्र चंद लोगों को करोड़ों लोगों की पीठ पर सवारी करने में मदद कर रहे हैं। इनके पीछे मूल प्रेरणा श्रम को बचाने की नहीं वरन लोभ की है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक सत्य और खोज को लोभ का साधन बनाना बंद कर दें। तब मजदूरों पर काम का दबाव नहीं रहेगा तथा यंत्र बाधक के स्थान पर सहाय बन जाएंगे। मैं यंत्र मात्र का उन्मूलन नहीं नियंत्रण चाहता हूं। मैं एक बात साफ कर दूं कि मेरे सामने मनुष्य ही प्रमुख लक्ष्य है। यंत्र मनुष्य के अंगों को बेकार न बना दे। मैं इसमें कुछ अपवाद करना चाहूंगा, जैसे सिलाई मशीन। मैं चाहता हूं कि श्रम की दशाओं में परिवर्तन होना चाहिए। संपत्ति के लिए अंधी दौड़ समाप्त होनी चाहिए तथा श्रमिक को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि उसे केवल एक न्यूनतम वेतन ही प्राप्त नहीं होगा, वरन एक ऐसा प्रतिदिन का धंधा भी उसे मिलेगा जो कि उसके लिए मुसीबत नहीं बनेगा। मैं यंत्रों के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु जब यंत्र हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, तब मैं उनका पूरी तरह विरोध करता हूं। मैं अपने विचार के अनुसार भारत का औद्योगिकरण चाहता हूं। ग्राम समाज का संगठन फिर से होना चाहिए। भारत के गांव भारतीय नगरों की समस्त आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करके उन्हें पूरा करते थे। जब हमारे नगर विदेशी बाजार बन गए और वे विदेशी वस्तुओं के व्यापार द्वारा भारतीय गांवों का जीवन नष्ट करने लगे, तब भारत निर्धन हुआ। हम अनुपम जीवित यंत्रों अर्थात हमारे अपने शरीरों को बेकार छोड़कर नष्ट कर रहे हैं और उनके स्थान पर निर्जीव यंत्रों की स्थापना कर रहे हैं। विश्राम एक सीमा तक ही अच्छा और आवश्यक हो सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को पसीना बहाकर रोटी कमाने के लिए पैदा किया है। मुझे भय है कि यदि हम जादू के जोर से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। जब उत्पादन और उपभोग स्थानीय होते हैं, तो उत्पादन को किसी भी प्रकार अधिकाधिक बढ़ाने का आकर्षण नहीं रहता। हमारी वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था से जो कठिनाइयां और समस्याएं पैदा हुई हैं, उसमें वे सब भी समाप्त हो जाती हैं। उस स्थिति में चंद लोगों की जेब में अधिकांश संपत्ति का अस्वाभाविक संग्रह तथा विपुलता के बावजूद भी शेष समाज के लिए दरिद्रता का अभिशाप नहीं रह सकेगा। ये थे यंत्रीकरण के संबंध में बापू के विचार। और अब सुनते हैं MS सुब्बलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय भजनों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 9:25 पर प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी आगरा से आइए अब सुनते हैं कुछ भजन। यह है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, सोमवे स्वर में रचना तुलसीदास की है।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे तुलसीदास की भक्ति रचना। आइए सुनते हैं एक और भजन। गायक कलाकार हैं डीवी पलुस्कर।

आप सुन रहे थे तुलसीदास की भक्ति रचना, गायक स्वर था डीवी पलुस्कर का। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। जिंदगी की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। 9:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं संध्या शर्मा। आइए सुनते हैं संध्या शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत।

0: डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा। इस सेवा पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 10 चैनल, वो भी अपने टेलीविजन सेट पर बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, डीटीएच पर आप सुन सकते हैं विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल मुफ्त, कहीं भी कभी भी। आकाशवाणी की डीटीएच सेवा का लाभ उठाएं। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम।
1: आकाशवाणी का ये डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा है।
2: डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा जो रहे आपके साथ हर दम हर क्षण 2400 घंटे दे आपको देश विदेश की जानकारी।
3: आज की
1: कराए भरपूर मनोरंजन भी।
4: दूरियां नजदीकियां बन गई।
2: देश के चाहे किसी भी कोने में रहे आप, न सताएगी आपको अपने राज्य की याद। डीटीएच के माध्यम से अपने राज्य के प्रादेशिक समाचार, गीत संगीत अपने ही राज्य के आकाशवाणी केंद्र से सीधे सुन पाएंगे आप।
5: बिलपुर में तो
1: कहा कैसे जुड़ पाएंगे अपने राज्य के आकाशवाणी केंद्र से आप, इसके लिए सुनते रहिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समय समय पर।
6: 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, प्रादेशिक समाचार 7 बजे आकाशवाणी भोपाल से और 8:30 बजे आकाशवाणी पटना से।
2: वाह, एक ही स्थान पर बैठे बैठे आनंद, हर राज्य का हर भाषा का, कमाल है केवल डीटीएच सेवा का।
0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं संध्या शर्मा। यह है लोक संगीत कार्यक्रम की अगली लोक रचना।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संध्या शर्मा के गाए ब्रज लोक गीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 10:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता। आप सभी को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं सुर सरिता कार्यक्रम का पहला ये सदाबहार गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, गीतकार सलाहुद्दीन परवेज। फिल्म का नाम है यादों के मौसम। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश ओबेरॉय की।

भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: ये आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश ओबेरॉय की। फिल्म का नाम था यादों के मौसम। गीतकार थे सलाहुद्दीन परवेज और गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: सुरसेता कार्यक्रम का अगला गीत समीर का लिखा हुआ

राजा भैया, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति। गीत समीर का था, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

सुरसरिता कार्यक्रम में आइए, आप सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर संतोष आनंद का लिखा गीत। फिल्म का नाम है संतोष, आवाज लता मंगेशकर की।

संतोष आनंद का लिखा गीत आप सुन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर। इसे गाया था लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम था संतोष। सूर्यवंशी फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं कुलवंत जानी ने, धुन बनाई है अमित कुमार ने।

ये आवाजें थी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम था सूर्यवंशी। गीतकार थे कुलवंत जानी, संगीतकार अमित कुमार। आइए अब सुनते हैं राजेश रोशन की तर्ज पर जावेद अख्तर की गीत रचना। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। गायक कलाकार हैं कुमार शानू और अलका याग्निक।

ये युगल आवाजें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था पापा कहते हैं। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार राजेश रोशन। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं धौंदुताई कुलकर्णी का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया राग कबीरी भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दोलूताई कुलकर्णी का ख्याल गायन राग कबीरी भैरव में। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता मित्रों, तिग्मांशु धूलिया भारतीय सिनेमा के एक बहुमुखी प्रतिभावान निर्देशक, लेखक, निर्माता और अभिनेता रहे। जी हाँ, आप एक निर्देशक और लेखक होने के साथ साथ निर्माता होने के साथ साथ अभिनेता भी रहे। आज कार्यक्रम आज के कलाकार में हमारे कलाकार भी आप ही हैं। 3 जुलाई सन 1967 को इलाहाबाद में तिग्मांशु जी का जन्म हुआ। आपने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार रही, हिंदी बॉलीवुड में जिन्होंने काफी नाम कमाया, जिसमें अगर बात की जाए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म रही पान सिंह तोमर, और एक फिल्म आई गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसमें रमाधीर सिंह का आपने किरदार निभाया, और इसमें इनका अभिनय इतना शानदार रहा कि इन्होंने इस अभिनय से खासी लोकप्रियता हासिल की। शुरुआती जीवन और शिक्षा की बात करें तो अभी जैसा बताया हमने कि इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, वहां पर इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की, साथ ही उच्च शिक्षा पूरी की। आपके पिता एक जज थे, लेकिन तिग्मांशु की रुचि हमेशा से ही आर्ट की तरफ थी। आप सिनेमा की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव महसूस करते थे। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से थिएटर से जुड़ी हुई बारीकियों को सीखा। इनके करियर की शुरुआत शेखर कपूर की चर्चित फिल्म बैंडिट

जो कि सन 1994 में आई, इससे हुई। इसमें इस सहायक निर्देशक और कास्टिंग निर्देशक के रूप में रहे। साथ ही एक निर्देशक के तौर पर सन 2003 में एक फिल्म आई इनकी और इस फिल्म का नाम था हासिल। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में इसी का एक गीत।

भगवान श्री धूलिया जी का जन्म और पालन पोषण इलाहाबाद में हुआ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आपकी परवरिश हुई। आप अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। शुरू से ही इनका रुझान, इनका झुकाव संगीत की तरफ था, आर्ट की तरफ था, फिल्मों की तरफ था, और ये कहें कि फिल्म निर्देशन की तरफ था। ये चाहते थे कि ये फिल्में बनाएं, फिल्मों की कहानियां लिखें, एक डायरेक्टर के तौर पर काम करें। इनकी माताजी संस्कृत की प्रोफेसर थी। सेंट जोसेफ कॉलेज इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन 1986 में इन्होंने नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगमंच में मास्टर्स किया और इसके बाद ये फिल्मों को लेकर आगे बढ़ने का मन बना चुके थे। सन 1995 में फिल्म स्टिफ अपर लिप्स के कास्टिंग डायरेक्टर भी ये रहे। इसमें उन्होंने एक स्टॉल धारक के रूप में कैमियो का किरदार निभाया। इसके साथ ही आसिफ कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म द वॉरियर के लिए भी इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में अपना काम किया। प्रदीप कृष्णन की फिल्म इलेक्ट्रिक मून और केतन मेहता की फिल्म सरदार में इन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने टेलीविजन की ओर भी रुख किया और इन्होंने 90 के दशक में कई टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्देशन और निर्माण कार्य किया। कृष्णाज ड्रीम कहानी एक कन्या की, जो कि दूरदर्शन के लिए लिखी गई थी, और इसके साथ ही हम बंबई नहीं जाएंगे बीआई टेलीविजन के लिए एक अभिनय विद्यालय पर आधारित कहानी थी। भगवती चरण वर्मा के क्लासिक हिंदी उपन्यास को रूपांतरित करने वाला नया दौर धारावाहिक, इन्होंने इसमें भी भूमिका निभाई। सन 1999 की श्रृंखला स्टार बेस्ट सेलर, इसके साथ ही इन्होंने लघु कहानियां भी की और इनके इस काम ने इनको काफी लोकप्रिय पहचान दिलाई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कुछ पल सुकून के हम सभी को अपने साथ बैठना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से कार्यक्रम आज के कलाकार में

मैं दूसरी बात क्यों करने लगी। दरअसल आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम किसी कलाकार के बारे में आपसे बातचीत करते हैं, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें शेयर करते हैं, उनकी फिल्मों के गीत सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है और शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि जीवन में एक चीज जो बहुत अहम है वो है शांति। जी हाँ, मानसिक शांति हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। चाहे एक कलाकार हो, चाहे एक आम इंसान हो, या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जीवन में स्थिरता का होना बहुत जरूरी है और ये स्थिरता शांति से ही आती है। ये मेरा अपना सोचना है और मुझे लगता है कि शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा। जब हम स्थिर होते हैं, हमारा मन स्थिर होता है तो वो शांत होता है, और शांत होता है तो वो सृजन अच्छे से कर पाता है। शायद आपने ये सुना भी होगा कि दौड़ते हुए हम खाना नहीं खा सकते, या कोई भी काम हम भागते हुए नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। अलग अलग फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक अपनी कहानियों में अपने विचारों को, अपनी सोच को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें सामाजिक संदेश छुपा होता है। तिग्मांशु धूलिया जी ने भी कुछ ऐसी कहानियां बनाई जो सामाजिक संदेशों को लिए हुए थी, यथार्थ को लिए हुए थी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, साथ साथ गीत संगीत भी सुनते जाते हैं। तो आइए सुनिए हरिहरन और साधना सरगम की आवाज में आप ही की फिल्म का एक गीत। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

हिमांशु धूलिया जी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। एक निर्देशक के तौर पर सन 2013 में फिल्म का नाम था पान सिंह तोमर। इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साहब बीबी और गैंगस्टर इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार को लेकर आपको नामांकित किया गया। साथ ही सार्क फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर आपको इसी फिल्म के लिए स्टार डस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम आज के कलाकार अब समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज आपने सुने फिल्म निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया जी की फिल्मों के गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत श्रोताओं अब प्रस्तुत है। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज का विषय है, मानसूनी बरसात हेतु वन संरक्षण आवश्यक क्यों है। हम सभी ये बात जानते हैं कि वन हमारी आजीविका का एक अनिवार्य हिस्सा है। वन पृथ्वी पर एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें वृक्ष शामिल हैं, झाड़ियां, घास और अन्य छोटे बड़े पौधे शामिल हैं। वनों का एक बड़ा हिस्सा वृक्षों और पौधों से बना है। वन केवल मनुष्यों के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है, लेकिन हम अपने अस्तित्व के लिए इसके महत्व की गहराई को शायद या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझ कर भी हम इसे अनदेखा और नजरअंदाज कर देते हैं या फिर हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। आज कार्यक्रम का विषय भी यही है, वनों का महत्व क्या है। वन मनुष्य के लिए और सभी प्राणियों के लिए, दोनों के लिए बराबर तौर पर आवश्यक है। अनेक ऐसे कारण हैं जिसको लेकर हम वनों पर निर्भर हैं, चाहे जीव जंतुओं के आवास की बात हो, जीवन यापन की बात हो, तो वो वनों पर ही निर्भर है। वनों से ही हमें बहुत तरह के फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, औषधियां मिलती हैं, लकड़ी, ऑक्सीजन, ये सभी हमें वनों से प्राप्त होता है। पशुओं का, जानवरों का संपूर्ण जीवन वनों और वन उत्पादों पर निर्भर है। हम ये बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए, जीवन के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जल की आवश्यकता रहती है और ये बहुत अहम है। इसे हम नकार नहीं सकते, इससे हम इनकार नहीं कर सकते और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वन हमें वर्षा प्रदान करते हैं और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर वनों का क्षय हुआ तो पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और अपने वनों को बचाना बेहद जरूरी है। श्रोताओं, हरियाली किसे अच्छी नहीं लगती। जब मैं छोटी थी, जी हाँ, जब मैं अपने बचपन के बारे में बात कर रही हूं, आप लोगों ने भी अपना बचपन जिया होगा, उस समय हम जो पर्यावरणीय संतुलन महसूस

महसूस करते थे। मौसमों का आना जाना, हर मौसम का अपना एक अलग महत्व होता था, गर्मी, सर्दी और बरसात। बारिश के मौसम में ठंडक का होना, पेड़ों की हरियाली अपने आप में एक लाजवाब रंग लिए हुए होती थी, और ये हरियाली हमारे लिए काफी आवश्यक है। समय बदलने के साथ साथ जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, साल दर साल हम इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। अपने आसपास के माहौल में हम इस बदलाव को साफ तौर पर देख सकते हैं। हरियाली हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि हर पेड़ और वृक्ष का पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारे जीवन को खूबसूरती, रंग, उमंग, उम्मीद और ऊर्जा से भर देता है।

कहा जाता है कि अतिकिया भला ना बोलना, अतिकी भली ना चूप, अतिका भला ना बरसना और अतिकी भली ना धूप। जीवन में अधिकता हर चीज की खराब होती है, ये कहावत शायद हम सुनते आ रहे हैं। अक्सर जीवन को हम करीब से देखें तो पाएंगे कि हम हमेशा संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और ये संतुलन बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अच्छा जीवन जी पाएं। तो उसके लिए कुछ शर्तें मानना जरूरी है, और इनमें जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में मानसिक शांति की बात करी, वैसे ही संतुलन, संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक है। पर चाहे वो भोजन के साथ हो, आपके काम करने को लेकर हो, किसी भी चीज को आप ले सकते हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई। अब अगर मानव की इच्छाओं की बात करें, ईश्वर इंसान की इच्छाओं की बात करें, तो ये कहा जाता है कि इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। शायद हम अपने जीवन से भी बहुत ज्यादा सोच कर रखते हैं, इतना बड़ा तो हमारा जीवन भी नहीं है। आज हो ये रहा है कि वन एक ही स्थान पर असंख्य वृक्षों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है। और ये कटाई कौन कर रहा है? इंसान, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर जरूरतें सच में पूरी हो रही हैं और संतुलन स्थापित किया जा सकता है, तो शायद इस बात पर रोक लगाई जा सकती है वनों के महत्व को देखते हुए, क्योंकि वन भी उतने ही जरूरी हैं हमारे लिए जितने की हमारी बाकी आवश्यकताएं। वन पर हमारा जीवन टिका है, हम इस बात को भूल नहीं सकते। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हम इसके लिए क्या ऑप्शन निकाल सकते हैं? कुदरत ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हर चीज बहुत सोच समझ कर बनाई है। हर चीज अपने आप में जुड़ी हुई है, और ये व्यवस्था हमारे लिए ही करी गई है। अगर हम इस व्यवस्था में अपनी दखलंदाजी करते हैं, तो मानव इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। वन हमें एक शुद्ध और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में काफी मददगार है, और ये कौन नहीं चाहता। ऑक्सीजन का एक बड़ा स्रोत है, सभी द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को वन अवशोषित करते हैं। जैव विविधता, वाष्पीकरण और संघनन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज मनुष्य की, मानव की बढ़ती हुई मांगों के कारण हम बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, कई बार जरूरत के अनुसार और कई बार जरूरत ना होने पर भी। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो रहा है। कई तरह के खतरे आगामी जीवन, आगामी भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। इन खतरों में शामिल है ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण। इसके लिए जरूरी है कि हम जीवन में वनों के महत्व को समझें, उनकी सुरक्षा के लिए काम करें, यह बेहद जरूरी है।

तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि वनों के महत्व को हम सभी समझेंगे, आगे आने वाले जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर इस महत्व को अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे, आपस में इस विचार को साझा करेंगे और इस दिशा में सार्थक कदम उठाएंगे। वन महोत्सव चल रहा है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। साथ ही आज एक और खास दिन है, जी हाँ, आज है प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, जिसका उद्देश्य है कि हम प्लास्टिक को कहें ना। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 में, आज ही के दिन यानी 3 जुलाई के दिन, और उद्देश्य था कि एकल उपयोग यानी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के गंभीर पर्यावरणीय खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके विकल्पों जैसे कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल किया जाए और इसको बढ़ावा दिया जाए। प्लास्टिक बैग के बारे में कुछ जानने योग्य बातें इस तरह से हैं कि इसके अगर जीवन काल की बात करें तो एक प्लास्टिक बैग का उपयोग आमतौर पर केवल 12 से 20 मिनट के लिए किया जाता है। हाँ, एक छोटे से समय के लिए, एक छोटी सी समय सीमा के लिए और अपने कंफर्ट्स

कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जबकि इसके अपघटन यानी कि इसको नष्ट होने में, इसको विघटित होने में 10 से लेकर 1000 वर्ष तक का समय लगता है। गलत तरीके से फेंके गए बैग अक्सर महासागरों में पहुंच जाते हैं, लैंडफिल में पहुंच जाते हैं, और इससे हर साल लाखों समुद्री जीवों को आघात पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। मतलब कितनी गंभीर बात है ये कि अगर हम अपने जीवन

वो रहती है तब तक वो जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को कितना नुकसान पहुंचाती है, वातावरण के लिए कितनी नुकसानदायक है। तो क्या हम उसके विकल्प के तौर पे कपड़े के थैलों को, जूट के थैलों को इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। घर से अपने साथ एक कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर निकले, ये हमेशा फायदेमंद होता है, काम में आता है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, संभव है ऐसा करना, पॉसिबल है, तो हमें करना चाहिए। इस दिन को मनाने का मकसद बहुत सीधा है, साफ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं, हम उन्हें जानें और कपड़े या जूट के थैलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया।

0: है जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
1: जी।
0: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है?
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि।

0: समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
2: मामा जी, मामा जी।
3: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
1: बहुत अच्छी तरह मामा जी। आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
1: ये किसी खुदरे से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
3: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
3: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
3: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा।
3: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
3: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
3: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
3: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
3: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
3: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
3: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
3: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ

0: बदला है।
1: ओ, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही।
2: तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी,
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के

0: इससे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
1: फिर आगे बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
0: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा, वाह। और
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का इस सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से ही सतर्क थी। आप आक्रमण।

0: 过。रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं अच्छा, किसी से नहीं कहेंगे?
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा,

0: तू अपनी कटार मुझे दे।
1: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। अब प्रस्तुत है नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

हीरोपंती फिल्म से मोहित मोहित चौहान के स्वर में कौसर मुनीर का लिखा हुआ और साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना। अब सुनिए जुबीन नौटियाल को, आपके साथ आवाज़ है पलक मुचाल की। संदीप नाथ के लिखे हुए गीत को संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने। ये गीत हमने लिया है फिल्म अमावस से।

तनिष्क बागची का लिखा हुआ गीत, शब्बीर अहमद का लिखा हुआ गीत और संगीत तनिष्क बागची का, जुबीन नौटियाल की आवाज में सुना आपने मिशन मजनू से ये गीत। राहत फतेह अली खां के स्वर में अब सुनिए ये अगली पेशकश। फिल्म का नाम है तिश्नगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे।

0: routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver in Canada. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California to book a place in the round of 16. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in their round of 32 match in Toronto, Canada. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जदीद इंतजामी तरबियत के लिए 464 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 22 एकड़ से ज्यादा रकबे पर बनाए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एकेडमी के जदीद तरीन नए कैंपस का इफ्तिताह किया। इसके अलावा वजीर आला ने नवें उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया और उसका सोवेनियर जारी किया। इसके अलावा उन्होंने तरक्की पसंद बागबानों को एजाज से भी नवाजा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे के काम का जायजा लिया। उन्होंने शेल्टर होम्स और ट्रेनिंग सेंटर और हाफ वे होम्स में रहने वालों की देखभाल के लिए ग्रांट की रकम 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए माहाना करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
1: देही तरक्की, ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 का आगाज किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यह एक्ट मुल्क में रोजगार को यकीनी बनाने, देही माश को मजबूत करने और देहात की तरक्की को तेज करने की सिमत में एक अहम कदम है। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में एक्ट के आगाज के लिए मुनक्किद प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मजदूरों को इज्जत देने, गरीबों की मदद करने और देही हिंदुस्तान में देहातों की पायदार तरक्की को तेज करने का एक ताकतवर जरिया बनेगी। एसआईटी की टीम श्रीराम मंदिर चंदे के गबन के इल्जाम की जाँच के सिलसिले में कल एक बार फिर अयोध्या पहुंची। टीम अपनी तहकीकात जारी रखते हुए मुख्तलिफ नुक्ताए नजर से तहकीकात कर रही है। तफ्तीश की मुद्दत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दरियासना अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीराम मंदिर चंदे के गबन केस के एक मुलजिम लव कुश मिश्रा से जुड़ी एक जेर तामीर जायदाद को नोटिस जारी किया है। सेक्रेटरी एडीए ने बताया कि नोटिस बिल्डिंग रेगुलेशंस की मुश्तबे खिलाफ वर्जियों की वजह से जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज लखनऊ के मुख्तलिफ मराकज पर दूसरे दिन भी मुनक्किद हो रहा है। कल 4 जुलाई तक होने वाले इम्तिहान के लिए रियासत के मुख्तलिफ जिलों और दूसरी रियासतों से भी लोग लखनऊ आए हैं। इंतजामिया ने इम्तिहान के पुरअमन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। बायोमेट्रिक के बगैर किसी उम्मीदवार को सेंटर में दाखिल नहीं किया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 29 जून से लागू हो गई है। नई स्कीम ने 1952 की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम की जगह ली है। इस स्कीम का मकसद डिजिटल तामील को मजबूत

0: करना, इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, अकाउंट की मुंतकली को आसान बनाना और लेबर प्रोविडेंट फंड के नए ढांचे के साथ हम आहंग करना है। नई स्कीम के तहत लाजमी ईपीएफ का हिस्सा मुलाजिम और आजिर दोनों के लिए तनख्वाह के 12% पर रहेगा। 10% की मौजूदा शरह मरकजी हुकूमत के जरिए मुतला करदा इदारों पर लागू रहेगी। स्कीम में जुजवी रकम निकालने के कवानीन को भी अपडेट किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज से अगले 3 दिन तक रियासत के मशरकी और मगरबी डिवीजनों में बारिश की पेशगोई की है। दरियासना रियासत में मानसून की आमद से लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई अजला में लोगों को अब भी नमी का सामना है। जुनूब मगरबी मानसून मंगल से सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात ने कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को प्रगति का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा हुआ है। हाँ बहनों, चर्चा का विषय है धरती माँ को प्लास्टिक के बोझ से बचाएं। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं कि धरती को हम माँ कहते हैं, जिस प्रकार एक माँ बच्चे का पालन पोषण करती है उसी प्रकार धरती भी हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, अन्न, दवाई और रहने का स्थान प्रदान करती है। पर बहनों, दुख की बात तो ये है कि हम अपनी धरती माँ को प्लास्टिक के कचरे से प्रदूषित करते जा रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग तो जैसे हमारे जीवन का हिस्सा ही बन गया है। बाजार से सामान लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी की बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेटें और पैकेजिंग सामग्री, इन सब का प्रयोग हम दिन में ना जाने कितनी बार करते हैं। सुविधा के लिए प्रयोग की जाने वाली ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जब प्लास्टिक थैलियाँ सड़कों, नालियों, खेतों, नदियों, खेतों और समुद्र आदि में फेंकी जाती हैं तो ये जल और मिट्टी दोनों को प्रदूषित करती हैं। नालियाँ जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, जिससे कि तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। कई पशु, विशेषकर गाय, थैलियों में भोजन समझकर उसे अपने मुँह में रख लेती हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक को जलाने वाला जहरीला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जिससे कि हमें अस्थमा, कैंसर और फेफड़ों की कितनी ही बीमारियां हो सकती हैं। बहनों, अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्लास्टिक के उपयोग को कैसे रोका जाए, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। बहनों, इसका उत्तर बहुत सरल है। जो भी प्लास्टिक एकल प्रयोग वाली होती है, जैसे कि चम्मच है, गिलास है, प्लेटें हैं, आप उनका प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला अपने साथ लेकर जाएं। डिस्पोजेबल ग्लास के स्थान पर आप स्टील व कांच के ग्लास का प्रयोग करें। प्लास्टिक थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, कचरे के डिब्बे में डालें और उनका रिसाइकिल या पुनः चक्रण करवाएं। अपने आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करें और प्लास्टिक के दुष्प्रभाव उन्हें समझाएं। बहनों, जब हम छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित धरती हम दे पाएंगे, क्योंकि धरती हमारी धरोहर है, हमारी

माँ हैं। तो बहनों चलिए हम संकल्प करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और धरती माँ को प्लास्टिक के बोझ से मुक्त कराने में अपना योगदान अवश्य देंगे।

0: बहनों, अभी आपने इतना अच्छा मधुर संगीत सुना, गीत सुना, तो अब ये हम आपको एक ऐसा ही मधुर काव्य पाठ भी सुनवाएंगे। जो बहनों कविताएं होती हैं, कविता मानव जीवन में भावनाओं की अभिव्यक्ति, सौंदर्य अनुभूति और मानसिक शांति का एक सशक्त माध्यम होती हैं। ये संस्कृति का संरक्षण करती हैं, जीवन दर्शन समझाती हैं, तनावपूर्ण माहौल में सुकून प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, कविता हमारे सुख और यादों को सहेजती है, भाषा का सौंदर्य बढ़ाती है तथा संवेदनशीलता का विकास करती है। तो आइए सुनते हैं एक काव्य पाठ, और कवित्री हैं डॉक्टर आराधना भास्कर।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है उम्र के उस पड़ाव पर। उम्र के उस पड़ाव पर जब सब सिमटने लगे, शांत होने लगे, जब आसपास की हलचले अनवरत घड़ी की सुइयों सी भागती जिंदगी जब थमकर सांस लेने लगे, तब हम फुर्सत

के पलों को जीते हुए पलटेंगे गुजरे वक्त के पन्ने। मैं ढूंढूंगी पुरानी अल्बमों में कैद वो लम्हे, मैं ढूंढूंगी पुराने अल्बमों में कैद वो लम्हे जिनमें कभी जिंदगी मुस्कुराई थी, और तुम ढूंढ निकालना वो गुमशुदा हुआ प्रेम जो जीवन की आपाधापी में पड़ा रहा हाशिए पर, प्राथमिकताओं की सूची में अपनी बारी का इंतजार करता। हमारे साथ ही उम्र की तहों के तले धीमे धीमे अपना वजूद खोता जाता, पर तुम ठीक ऐसे ढूंढ निकालना उसे जैसे कोई खोई हुई चीज अचानक मिल जाए और बड़ी खुशी दे जाए। तुम छेड़ना उस अधूरे गीत की लय, तुम छेड़ना उस अधूरे गीत की लय, करना वो सब आधी अधूरी रह गई बातें, घंटों बैठना साथ बस यूं ही बगैर कुछ बोले, तब जब मुझ में और तुम में ज्यादा फर्क ना रह जाए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जैसे जीते जीते, क्या पता पूरी हो जाए वो कविता ठीक तभी जब सब सिमटने लगे, शांत होने लगे। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मेरी भाषा मेरे शब्द। मेरी भाषा मेरे शब्द नहीं ओढ़ पाते छद्म आवरण, नहीं हो पाते सुशोभित क्लिष्ट अलंकारों से, मन के भाव जैसे होते हैं अपने शुद्धतम निर्मलतम रूप में संप्रेषित होते हैं वैसे ही, मुझे नहीं भाते चमकीले वस्त्र आभूषण कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन, क्योंकि छुपा देते हैं ये वास्तविकता को एक झूठे आवरण तले। मनुष्य ने ओढ़ रखे हैं वैसे ही इतने मुखौटे कि अपना असली चेहरा खुद भूल चुका है। मोहक मुस्कान के पीछे हो सकती है कितनी कुटिलता, उसे स्वयं नहीं पता है। दुनियादार होने के क्रम में खोई है कितनी मौलिकता, अब ये भी याद नहीं। अब बचा है बहुत थोड़ा सा मनुष्य ज्यादातर मानवों में। ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में क्या जरूरी है कि सब शामिल हों इस दुनियादारी की अंधी दौड़ में। इसीलिए, बस इसीलिए मैंने छोड़ दिए हैं जतन दुनियादारी के मानकों पर खरे उतरने के, मौलिकता छोड़ कृत्रिमता ओढ़ लेने के। मुझ में बची रहे मानवता और मेरे शब्दों में पारदर्शिता जो संप्रेषित कर सके मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं। कोई ढूंढ ले उनमें अपना दर्द, कोई ढूंढ ले उनमें अपना दर्द, अपनी खुशी, अपना अक्स, तो सार्थक है जीवन भी और लेखन भी। मेरी अगली कविता समर्पित है उन माओं को जो किसी ना किसी वजह से अकेली रह जाती हैं और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी अकेले ही काटती हैं। कविता का शीर्षक है अकेली माँ। औरत का सर्वश्रेष्ठ रूप देखना हो तो किसी अकेली माँ को देखो, उसके परिश्रम, उसके साहस, उसके जीवट को देखो, उसकी सुबहें शामें दिन रात जो नाम होते हैं जिंदगी की अंतहीन जद्दोजहद के, उसके कामों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं होती, दिन भर के काम की थकन लेकर लौटती है अपने आशियाने में, थके चेहरे पे जबरन ओढ़ती है मुस्कान और सुनती है बच्चों की फरमाइशें, उनकी अनगिन बातें सुनते हुए बुनती है आने वाले दिन की रूपरेखा। कितने काम अधूरे पड़े हैं अब तक, कितने काम अधूरे पड़े हैं अब तक, कल तक कितने निबट जाएंगे और कितने हफ्ते के अंत तक, भरती है ठंडी सांस, लगाती है हिसाब आने वाली जिंदगी का, जिंदगी जिसमें अब थकन है अंतहीन जिम्मेदारियों की। बिस्तर पर लेटकर बच्चों को थपकियां देती एक अनमनी सी कहानी कहती, बार बार लौटती है कड़वे अतीत की ओर, तन मन आत्मा पर लगे जख्म टीसने लगते हैं, बोझिल पलकों की कोर से अब भी छलक जाता है कोई आंसू बे आवाज, टूटे ख्वाबों की किरचें चुभती हैं आंखों में, सो जाने की भरपूर कोशिश के बावजूद नींद नहीं आती, और फिर नजर डालती है वो अपनी आगोश में बेखबर और बेफिक्र सोते अपने जिगर के टुकड़ों पे।

0: हौले से चूमती है उनके माथे को और मुस्कुरा देती है। मन ही मन दोहराती है अपना संकल्प, मन ही मन दोहराती है अपना संकल्प, मुझे बनाए रखना है खुद को मजबूत, ताकि हर रात यूं ही दे सकूं इन्हें यह सुखद बेफिक्र नींद, और हर रोज एक खुशनुमा दिन। मुझे मुस्कुराना है ताकि खिली रहे मुस्कान इनके होठों पर, मुझे जीना है जिंदा दिली से, ताकि सिखा सकूं इन्हें जीवन को हर हाल में स्वीकारना और हिम्मत ना हारना। और सब दुश्चिंताएं झटक कर वो मूंद लेती है अपनी पलकें, ताकि फिर तैयार कर सके खुद को अगले दिन की उसी जद्दोजहद के लिए। मेरी अगली कविता का शीर्षक है क्षितिज। कितनी कस्में खाते हैं प्रेमी, प्रेम में साथ निभाने की, दूर क्षितिज तक जाने की, जो मिल ना पाए जहां में, तो आज संजोते हैं पार क्षितिज के जाने की। पर क्षितिज हकीकत नहीं, पर क्षितिज हकीकत नहीं, महज एक आभास है, दूर बहुत दूर जहां धरती आसमान मिलते हैं, पर मिलते कहां हैं, बस आभास देते हैं मिलन का। कोई ना गया आज तक क्षितिज तक भी साथ, उसके पार का तो कहना क्या। जितना आभासी क्षितिज है, उतनी ही आभासी है उस तक पहुंचने की कल्पना। मुझे कभी पहुंचना नहीं है किसी का हाथ थाम उस मृग मरीचिका तक, क्योंकि मेरा सच मेरे पांव तले की जमीन है और मेरे सर का आसमान। क्योंकि मेरा सच मेरे पांव तले की जमीन है और मेरे सर का आसमान, दोनों की जगह स्थिर है, उनकी भूमिकाएं तय हैं, उनके बीच का प्रेम उस दूरी में है जिसे वो कभी तय नहीं करेंगे। कल्पनाएं सुंदर होती हैं, कल्पनाएं सुंदर होती हैं, क्षितिज भी एक सुंदर कल्पना है, बस दूर से देखो और महसूस करो ठीक प्रेम की तरह।
1: बहनों, अभी आपने काव्य पाठ सुना और जिसकी कवित्री थी आराधना भास्कर। बहनों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारा अगला सेगमेंट है मेरी पहचान। आज मेरी पहचान में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी महान महिला की, जिन्होंने शिक्षा, महिला अधिकारों और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। इनका नाम है हंसा मेहता। हाँ बहनों, हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और लेखिका थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर कार्य किया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल रही। संविधान निर्माण में भी हंसा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संविधान सभा की सदस्य थी और महिलाओं के अधिकारों तथा समानता के पक्ष में अपने विचार रखे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में प्रयुक्त वाक्य ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को अपनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि मानवाधिकार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय वह भारतीय विश्वविद्यालय की महिला कुलपति बनी, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। बहनों, हंसा मेहता का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आइए, आज उनके जन्मदिन की तारीख पर हम भी हंसा मेहता के आदर्शों से प्रेरणा लें और एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दें जहां सभी को समान अवसर व सम्मान मिले। आइए, अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सेगमेंट की तरफ, जिसमें कि हम आपसे बात करेंगे शरीर के उन हिस्सों की जिनका इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं लेकिन उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं हाथ और पैरों की। हाथों को हम दिन में कई बार धोते हैं। बार बार साबुन के या हैंड वॉश के इस्तेमाल से त्वचा रूखी हो जाती है, अतः हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाना ना भूलें। अपने नाखूनों को साफ रखें और सप्ताह में एक दो बार हल्के स्क्रब से सफाई करें। हाथों के साथ साथ पैरों को साफ करना भी बहुत जरूरी है। पैरों को साफ पानी से धोना चाहिए और उनको पोंछना जरूर चाहिए, विशेषकर उंगलियों के बीच में। कभी कभी उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए आप पैरों को अच्छी तरह से पोंछें। सप्ताह में एक बार गुनगुने पानी में नमक डालकर पैरों को 10-15 मिनट तक उसमें भिगोएं और उसके बाद पैरों पर क्रीम या तेल लगाकर हल्की सी मालिश करें। पैरों के नाखूनों को भी काट कर रखें और मोजे पहने धूल मिट्टी से बचाने के लिए, और जूते हमेशा फिटिंग वाले पहने। गीले जूते और मोजे बिल्कुल ना पहने। इस तरह नियमित देखभाल से आपके हाथ और पैर दोनों सुंदर बने रहेंगे। आइए अब सुनवाते हैं आपको एक गीत।

बहनों, आज की रेसिपी टाइम में हम आपको सिखाएंगे मसालेदार छाछ की रेसिपी, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ही ठंडक देती है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए, ये सब आपके घर में है। 1 कप ताज़ा दही, स्वादानुसार नमक, आधा कप पानी, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी काला नमक और 1 चुटकी काली मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। बहनों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप दही को एक बर्तन में फेंट लीजिए मथानी से, या फिर आप मिक्सी में भी फेंट सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से एक बार और चलाइए।

इसमें पुदीना और बारीक कटा धनिया ऊपर से डाल दीजिए और थोड़े से आइस क्यूब भी डाल दीजिए। ये लस्सी आपके शरीर को तरोताज़ा रखती है और आपको ठंडक भी देती है। तो बहनों, अब उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप प्रगति को जानने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुनिए रानू मुखर्जी की आवाज में गजल।

आप सुन रहे हैं रानू मुखर्जी की आवाज में गजल और गीत। आप सुनिए राज बोहरा का लिखा हुआ ये गीत, बोल है अब मेघा छाए।

जब मेघा छाए। आपने सुना अभी ये गीत रानू मुखर्जी की आवाज में। इसे लिखा था राज बोहरा ने। अब सुनिए अगली पेशकश। शब्द रचना है राजेश जौहरी के।

ढूंढे हैं किसी को प्यासी प्यासी आंखें, राजेश जौहरी के लिखे हुए गीत को अभी आपने सुना रानू मुखर्जी की आवाज में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

0: hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला

0: में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे

0: ऑनलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों

में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेव के मीटर्स पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:30 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन, राग मिश्र तिलक का मोत पर आधारित एक ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां के स्वर में राग मिश्र तिलक कामत पर आधारित ठुमरी। आइए अब सुनते हैं पंडित अजय पोहनकर का गायन राग मिश्र पहाड़ी में।

पंडित अजय पोहनकर का गायन अभी आप सुन रहे थे राग मिश्र पहाड़ी में। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

एसडी बर्मन के संगीत के साथ ये रचना आपने सुनी फिल्म आराधना से। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, आवाज किशोर कुमार की। अगली पेशकश सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है हकीकत, संगीत है मदन मोहन का और गीत रचना है कैफी आजमी की।

हसीना मान जाएगी, इस फिल्म से आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना ये पैरोडी गीत। इसी के साथ भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम अंजुमन में सुनिए मकाला, माहौलियाती बेदारी और नौजवानों की जिम्मेदारी। मकाला निगार हैं समी अगाई।

आज पूरी दुनिया माहौलियती दुश्वारियों के चलते मुख्तलिफ परेशानियों का सामना कर रही है, जिसके चलते इंसानी जिंदगी जीना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। साथ ही जलजले सैलाब की शक्ल में कहर का सामना करने के लिए मजबूर हैं। हजारों जिंदगियां वे वक्त हलाक हो जाती हैं। इंसानी जिंदगी में माहौलियात का अहम किरदार होता है, क्योंकि आपके पास खुशगवार माहौल होता है तो एक सेहतमंद जिंदगी आसान होती है। माहौलियाती बेदारी के लिए सूबाई और मरकजी सरकारें वक्त वे वक्त मुख्तलिफ कारगुजारियों को अंजाम देती रहती हैं और उसको दूर करने के लिए गामजन रहती हैं। समाजी बेदारी में नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना लाजमी है और उसके लिए उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में माहौलियाती सरगोशियों में होनी चाहिए। माहौलियाती बेदारी बुनियादी तौर पर इंसानी ज़रूरत है। बढ़ती आबादी भी माहौलियात के लिए परेशानी का सबब है, जिसको हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। यह सिर्फ हमारे इर्द गिर्द के इलाके का नाम नहीं, बल्कि तमाम जिंदा चीजों जैसे पानी, हवा और जमीन का वह मजमूई निजाम है जिस पर हमारी जिंदगी मुहसर रहती है। नंबर एक, माहौल की अहमियत और उसका तहफ्फुज। माहौल हमारी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। इसमें सभी कुदरती वासिल शामिल हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जंगल और जानवर। इन सबका आपस में एक गहरा ताल्लुक है। जब तक यह निजाम तवाजुन में रहता है, तब तक जमीन पर जिंदगी पुरसुकून चलती है। लेकिन आज के जदीद दौर में इंसान ने अपनी तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचाया है। नुक्ता नंबर दो, माहौलियाती मिसाइल। आलूदगी कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फिजा को गंदा कर रहा है, जिससे हवा का मयार गिर रहा है। जदीदकारी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बेदर्दी से दरख्तों को काटा जा रहा है, जिससे बारिशों का निजाम मुतासिर हो रहा है। गर्जिश अर्जी, जमीन का दर्जाए हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नुक्ता नंबर तीन, माहौल की हिफाजत कैसे करें। अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर कदम उठाना होगा। हिफाजत के चंद अहम तरीकों को अमली जामा पहनाना होगा। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करें या कम से कम करें। पानी और बिजली कुदरती नेमतों को ज्यादा से ज्यादा खर्च होने से बचाएं। घर का खास ख्याल रखें और आलूदगी फैलाने से गुरेज करें। मौजूदा दौर में हम हर शोबे में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के आदि होते जा रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना करने लगे हैं कि घर का हर सामान प्लास्टिक बैग में लेकर आते हैं। साथ ही पीने के पानी की बोतल भी काफी तादाद में इस्तेमाल करने के आदि होते जा रहे हैं। हालात तो यह हो गई है कि हर तरफ दिन ब दिन प्लास्टिक हमारी जिंदगी का हिस्सा होती जा रही है, जिसके नतीजों में मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना भी पड़ रहा है। अगर वक्त रहते हमने इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो इसके बुरे असरात काफी खतरनाक हो सकते हैं। माहौल की हिफाजत सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर फर्द का फर्ज।

0: कि वह कुदरती वसाइल की हिफाजत करे, तभी हम एक तरक्की पसंद मुल्क की पहचान आलमी सतह पर बना पाएंगे।
1: आप सुन रहे थे मकाला माहौलियाती बेदारी और नौजवानों की जिम्मेदारी। मकाला निगार थे समी अगाई। कलामी शायर में अब सुनिए मोहम्मद यासीन अंसारी को।
2: एक कता आपकी समातों के हवाले करता हूं। अर्ज किया है कि किसी अजीज से सौगात में नहीं मिलती, किसी अजीज से सौगात में नहीं मिलती कि कामयाबियां एक रात में नहीं मिलती, कि कामयाबियां एक रात में नहीं मिलती। बुलंदियां हमें मेहनत से होती हैं हासिल, बुलंदियां हमें खैरात में नहीं मिलती। बुलंदियां हमें मेहनत से होती हैं हासिल, बुलंदियां हमें खैरात में नहीं मिलती। अर्ज किया है कि खत्म नफरत हो दोस्ती हो जाए, खत्म नफरत हो दोस्ती हो जाए, खुशनुमा अब तो जिंदगी हो जाए, खुशनुमा अब तो जिंदगी हो जाए। वो जलाओ दिए मोहब्बत के, वो जलाओ दिए मोहब्बत के, हर तरफ जिनसे रोशनी हो जाए। वो जलाओ दिए मोहब्बत के, हर तरफ जिनसे रोशनी हो जाए। एक मतला एक शेर हाजिर करता हूं। अर्ज किया कि फायदा कुछ नहीं बहसो तकरार से, फायदा कुछ नहीं बहसो तकरार से, जीते जा सकते हैं सबके दिल प्यार से, जीते जा सकते हैं सबके दिल प्यार से। हमको मेकअप की कोई जरूरत नहीं, चमका करते हैं हम अपने किरदार से, हमको मेकअप की कोई जरूरत नहीं, चमका करते हैं हम अपने किरदार से। अर्ज किया कि जिंदगी जो बेअमल हो जाएगी, जिंदगी जो बेअमल हो जाएगी, वो भला कैसे सफल हो जाएगी, जिंदगी जो बेअमल हो जाएगी, वो भला कैसे सफल हो जाएगी, वो भला कैसे सफल हो जाएगी। तुम चले आओ तो तन्हाई मेरी, तुम चले आओ तो तन्हाई मेरी, बज़्मे शाही का बदल हो जाएगी। तुम चले आओ तो तन्हाई मेरी, बज़्मे शाही का बदल हो जाएगी। बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूं मैं, बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूं मैं, झोपड़ी एक दिन महल हो जाएगी। बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूं मैं, झोपड़ी एक दिन महल हो जाएगी। एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूं आपकी समातों के हवाले। अर्ज किया है कि दिल की बंजर जमी पे घास भी है, दिल की बंजर जमी पे घास भी है, तलखियां हैं तो कुछ मिठास भी है, तलखियां हैं तो कुछ मिठास भी है। हार सकता हूं जिंदगी की जंग, हार सकता हूं जिंदगी की जंग, जीत जाने की मुझको आस भी है। हार सकता हूं जिंदगी की जंग, जीत जाने की मुझको आस भी है। वक्त के सूरजों से ये कह दो, वक्त के सूरजों से ये कह दो, रोशनी जुगनुओं के पास भी है। वक्त के सूरजों से ये कह दो, रोशनी जुगनुओं के पास भी है। फिक्र है तेरी प्यास की मुझको, फिक्र है तेरी प्यास की मुझको, यूं तो खाली मेरा गिलास भी है। फिक्र है तेरी प्यास की मुझको, यूं तो खाली मेरा गिलास भी है। दिल का अच्छा वो शख्स है यासीन, मुझको गम देके वो उदास भी है, मुझको गम देके वो उदास भी है। हजरत, मैं एक गजल के चंद अशार आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूं। अर्ज किया कि कांटों का क्या काम है इस फुलवारी में, कांटों का क्या काम है इस फुलवारी में, फूल खिलाओ रिश्तों की तुम क्यारी में, कांटों का क्या

काम है इस फुलवारी में, फूल खिलाओ रिश्तों की तुम क्यारी में। ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। उलझे हैं सब लेकिन दुनियादारी में, ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। उलझे हैं सब लेकिन दुनियादारी में। और अर्ज किया कि घर को चलाने के चक्कर में मुफलिस की, घर को चलाने के चक्कर में मुफलिस की, कट जाती है सारी उम्र उधारी में। घर को चलाने के चक्कर में मुफलिस की, कट जाती है सारी उम्र उधारी में। अपने उसूलों पर चलने वाले भी लोग समझौते कर लेते हैं लाचारी में, समझौते कर लेते हैं लाचारी में। मौत के जैसी सच्चाई से है गाफिल, मौत के जैसी सच्चाई से है गाफिल। लोग लगे हैं जीने की तैयारी में, लोग लगे हैं जीने की तैयारी में। ऐसा नहीं है उसमें है बस ऐब ही ऐब, ऐसा नहीं है उसमें है बस ऐब ही ऐब। खूबी भी है कुछ यासीन अंसारी में, खूबी भी है कुछ यासीन अंसारी में। हजरत एक गजल के चंद शेर हाजिर करता हूं। अर्ज किया कि बेखता जब सफाई देते हैं, बेखता जब सफाई देते हैं, लफ्ज गूंगे दिखाई देते हैं। बेखता जब सफाई देते हैं, लफ्ज गूंगे दिखाई देते हैं। हार जाओ तो पूछता है कौन, हार जाओ तो पूछता है कौन। जीत पर सब बधाई देते हैं, हार जाओ तो पूछता है कौन। जीत पर सब बधाई देते हैं, जीत पर सब बधाई देते हैं। किसी मजलूम के खामोश आंसू, किसी मजलूम के खामोश आंसू चीखे बनकर सुनाई देते हैं, किसी मजलूम के खामोश आंसू चीखे बनकर सुनाई देते हैं। क्या तमाशा है आस्तीन के सांप दोस्ती की दुहाई देते हैं, क्या तमाशा है आस्तीन के सांप दोस्ती की दुहाई देते हैं। देर तक रहती है फिर उसकी चुभन, देर तक रहती है फिर उसकी चुभन। जख्म जब अपने भाई देते हैं, जख्म जब अपने भाई देते हैं। जो बने फिर रहे हैं कद आबर, जो बने फिर रहे हैं कद आबर। मुझको बौने दिखाई देते हैं, मुझको बौने दिखाई देते हैं। बाप और माँ को आजकल यासीन कितने बेटे कमाई देते हैं, बाप और माँ को आजकल यासीन कितने बेटे कमाई देते हैं, कितने बेटे कमाई देते हैं। हजरते ग्रामी, मैं एक गजल के चंद अशार और हाजिर करना चाहता हूँ। अर्ज किया है कि बस चमकदार होना समझ बैठे हैं आप, पीतल को सोना समझ बैठे हैं। बस चमकदार होना समझ बैठे हैं आप, पीतल को सोना समझ बैठे हैं। आजकल खेला करते हैं जज्बात से, आजकल खेला करते हैं जज्बात से। लोग दिल को खिलौना समझ बैठे हैं, लोग दिल को खिलौना समझ बैठे हैं। जिंदगानी है कांटों का बिस्तर, जिंदगानी है कांटों का बिस्तर, मगर फूलों का वो बिछौना समझ बैठे हैं, फूलों का वो बिछौना समझ बैठे हैं। गम के मारों की आंखों के अश्कों को लोग, गम के मारों की आंखों के अश्कों को लोग सिर्फ पलकें भिगोना समझ बैठे हैं, सिर्फ पलकें भिगोना समझ बैठे हैं। वो किसी को भी खातिर में लाते नहीं, वो किसी को भी खातिर में लाते नहीं। वो तो सबको ही बोना समझ बैठे हैं, वो तो सबको ही बोना समझ बैठे हैं। शेर गोई का यासीन मुश्किल है फन, शेर गोई का यासीन मुश्किल है फन। लफ्जों का वो पिरौना समझ बैठे हैं, लफ्जों का वो पिरौना समझ बैठे हैं। एक गजल के चंद शेर हाजिर करता हूं। अर्ज किया कि झूठ की जब सिलाई उधड़ जाती है, झूठ की जब सिलाई उधड़ जाती है, बात बनती नहीं है बिगड़ जाती है। झूठ की जब सिलाई उधड़ जाती है,

बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। हाथ की वो सफाई में माहिर सही, उससे कह दो के चोरी पकड़ जाती है। हाथ की वो सफाई में माहिर सही, उससे कह दो कि चोरी पकड़ जाती है। रात के और बढ़ जाते हैं हौसले, रात के और बढ़ जाते हैं हौसले, रोशनी जब दियो से बिछड़ जाती है। रात के और बढ़ जाते हैं हौसले, रोशनी जब दियो से बिछड़ जाती है, रोशनी जब दियो से बिछड़ जाती है। सच की ताकत का अंदाजा भी है तुम्हें, सच की ताकत का अंदाजा भी है तुम्हें। सच की ताकत जमाने से लड़ जाती है, सच की ताकत का अंदाजा भी है तुम्हें। सच की ताकत जमाने से लड़ जाती है, सच की ताकत जमाने से लड़ जाती है। फेर लेता है जिससे मुकद्दर नजर, फेर लेता है जिससे मुकद्दर नजर, उसकी यासीन दुनिया उजड़ जाती है, उसकी यासीन दुनिया उजड़ जाती है। एक गजल के चंद शेर हाजिर करता हूं। अर्ज किया कि मुसीबतों ने बिछा अपने जाल रखे हैं, मुसीबतों ने बिछा अपने जाल रखे हैं, हम अपने आप को लेकिन संभाल रखे हैं, हम अपने आप को लेकिन संभाल रखे हैं। किसी को ऐसे में पहचानना नहीं आसान, किसी को ऐसे में पहचानना नहीं आसान। नकाब चेहरों पे लोगों ने डाल रखे हैं, किसी को ऐसे में पहचानना नहीं आसान। नकाब चेहरों पे लोगों ने डाल रखे हैं, जवाब दे नहीं सकता है जिनका गूगल भी, जवाब दे नहीं सकता है जिनका गूगल भी। हमारे जहन में ऐसे सवाल रखे हैं, हमारे जहन में ऐसे सवाल रखे हैं। ये और बात अब भी है तिश्नए ताबीर, ये और बात वो अब भी है तिश्नए ताबीर। हसीन ख्वाब तो हमने भी पाल रखे हैं, हसीन ख्वाब तो हमने भी पाल रखे हैं। ये देखकर है ताजुब में आंधियां यासीन, ये देखकर है ताजुब में आंधियां यासीन। चराग हमने हवा में उछाल रखे हैं, ये देखकर है ताजुब में आंधियां यासीन। चराग हमने हवा में उछाल रखे हैं, चराग हमने हवा में उछाल रखे हैं। एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूं। अर्ज किया है कि मुस्कुराते हुए शोलों पे जो चल सकते हैं, मुस्कुराते हुए शोलों पे जो चल सकते हैं, ख्वाब उनके ही हकीकत में बदल सकते हैं। मुस्कुराते हुए शोलों पे जो चल सकते हैं, ख्वाब उनके ही हकीकत में बदल सकते हैं। ये जमाना मुझे पत्थर का समझता क्यों है, ये जमाना मुझे पत्थर का समझता क्यों है। अश्क तो मेरी भी आंखों से निकल सकते हैं, अश्क तो मेरी भी आंखों से निकल सकते हैं। गम के मारे हुए लोगों की मदद करता जा, गम के मारे हुए लोगों की मदद करता जा। ऐसा करने से तेरे हाथ से टल सकते हैं, ऐसा करने से तेरे हाथ से टल सकते हैं। वो मजामीन जिन्हें छूते नहीं अहले कलम, वो मजामीन जिन्हें छूते नहीं अहले कलम, वो मजामीन गजल में मेरी ढल सकते हैं, वो मजामीन गजल में मेरी ढल सकते हैं। चाहते हैं जो चरागों को बुझाना मेरे, चाहते हैं जो चरागों को बुझाना मेरे, उनसे कह दे ये कोई हाथ भी जल सकते हैं, उनसे कह दे ये कोई हाथ भी जल सकते हैं। चढ़ते सूरज की रफाकत का जुनू है जिनको, चढ़ते सूरज की रफाकत का जुनू है जिनको, मोम की तरह वो यासीन पिघल सकते हैं। चढ़ते सूरज की रफाकत का जुनू है जिनको, मोम की तरह वो यासीन पिघल सकते हैं।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन में अभी आप सुन रहे थे कलाम शायर में मोहम्मद यासीन अंसारी को, और अब सुनिए अफसाना रोशन चिराग। अफसाना निगार है महमूदा कुरैशी।

चराग आज जब स्कूल से वापस आया तो काफी थका हुआ था और वो आते ही अपने कमरे में चला गया। बेटे को यूं निढाल देखकर माँ भी पानी का गिलास हाथ में लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई। चराग, आज आप शूज बाहर उतारे बगैर ही कमरे में दाखिल हो गए, और ये क्या, आपने चेंज भी नहीं किया, और ये आपकी ड्रेस इतनी गंदी कैसे हो गई? माँ ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। चराग किसी भी बात का जवाब दिए बगैर माँ की गोदी में सर रखकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, माँ कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी क्लास टीचर बहुत गंदी हैं, वो मुझसे बहुत काम कराती हैं। आज उन्होंने हमसे पूरी क्लास साफ कराई और पूरी क्लास को हम सभी दोस्तों ने मिलकर डेकोरेट भी किया, और ऊपर दीवार पर जब मैं स्टार लगा रहा था तो मेरा पैर बेंच से फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सब दोस्त मेरे ऊपर हंसने लगे, और तो और सोनाली मैम भी हंस रही थी। माँ देखो मेरे कितनी चोट लगी है। अपनी चोट पर फूंक मारते हुए, उफ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल तो सोनाली मैम को गिफ्ट भी देना होगा, जिसने मेरे कपड़े गंदे कराए और सबके सामने मेरा मजाक बनाया और कहा चराग से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, और तो और पढ़ाई में वीक होने का ताना भी दिया। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गंदी है सोनाली मैम, और टीचर्स डे बनाया ही किसने है, क्यों मनाते हैं टीचर्स डे? जरूर इस दिन सोनाली मैम का बर्थडे होगा, गिफ्ट बटोरने के लिए बस कह दिया है टीचर्स डे है, चराग ने मुंह बनाते हुए कहा। ना बोला ना, ऐसे नहीं कहते अपनी मैम के बारे में, वो आपकी उस्ताद हैं, माँ ने डांटते हुए कहा। ये तो बहुत पहले से ही 5 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में योमे असातज़ा यानी टीचर्स डे मनाया जाता है, और बेटा 5 सितंबर को सोनाली मैम का बर्थडे नहीं है, 5 सितंबर को तो अजीम मुफक्किर दानिश्वर और अबकरी शख्सियत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योम पैदाइश को हम योम असातज़ा यानी टीचर्स डे की शक्ल में मनाते हैं, माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा। लेकिन माँ हमारी जीके की बुक में तो टीचर्स डे 5 अक्टूबर को लिखा है, चराग ने फौरन ही माँ के सामने एक सवाल पेश कर दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनाली मैम ख्वामखा ही कहती हैं कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, माशाल्लाह तुम्हारा हाफजा बहुत तेज है, जो तुम्हें अपनी सारी किताबों के बारे में अच्छे से मालूमात हासिल है। और माँ ने बेटे के बालों को सहलाते हुए जीके की किताब की मुफस्सल हवाले के साथ वजाहत करते हुए कहा, हाँ हमारे मुल्क में तो योमे असातज़ा 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, जबकि आलमी योमे असातज़ा 5 अक्टूबर को मनाते हैं बेटा, जो 1994 से जारी है। यूनेस्को, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने ही इस रस्म की ऐजाद की। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जो मुख्तलफ तारीखों में योमे असातज़ा मनाया करते हैं, जिस तरह हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलफ कौमी और मजहबी त्योहार मनाते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे मुल्कों में भी अपने कौमी और मजहबी त्योहार मनाए जाते हैं। मजीद अपनी बात को मुकम्मल करते हुए माँ ने चिराग को हिदायत की, अब तुम पहले फ्रेश हो जाओ और ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, और हाँ कल तुम्हारे बोलने के लिए मैंने एक स्पीच भी तैयार की है, बस तुम एक दो बार पढ़ लेना तो तलफ्फुज की गलतियां भी निकल जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, कहते हुए माँ किचन की तरफ चली गई। चिराग ने भी नफी में सर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ बहुत जोरों की भूख लगी है। चिराग स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों साथियों को टीचर्स के लिए लाए हुए तोहफे को फखरिया तौर पर एक दूसरे को दिखाते हुए देख मुस्कुराता हुआ किसी को भी अपने गिफ्ट दिखाए बगैर ही बहुत खामोशी के साथ बैठकर सोनाली मैम का इंतजार करने लगा। तभी बैल बज गई और सभी बच्चे हाल में पहुंच गए। दूसरे ही लम्हा सोनाली मैम ने अपनी बात पेश करते हुए कहा, प्यारे बच्चों गौर करो, फिक्र करो, जुस्तजू करो, मुशाहिदा करो, आसमान की बुलंदियों और जमान की तहों से इस दुनिया के पोशीदा राजों और खजानों को ढूंढ निकालो और उन पर तहकीक करो यानी रिसर्च करो। तालिबे इल्म जब इल्म हासिल करने निकलता है तो तालीम से उसका मकसद जहनी, जिस्मानी और रूहानी नशोदोनुमाई करना होता है। इस मकसद को हासिल करने में तलबा को काबिले कदर असातज़ा के इंतखाब करना होता है, जो हुसूले तालीम का मकसद हल करने में उनकी मदद करें,

उसके जहन को जिला बख्शें, उसको समझने का सही उसलूब सिखाएं, उसमें नजरी और तनकीदी निगाह कायम करें और तलबा को फिक्री इज्तिहाद के काबिल बनाएं। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, मैं पढ़ाता नहीं जगाता हूँ। और हुसूल मकसद को हल करने में अगर तालिबे इल्म को सही उस्ताद मिल गया और उसने तालिबे इल्म को सही राह पर डाल दिया तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह एक इंसान की कामयाबी में उसके असातिज़ा का बहुत अहम किरदार होता है। सभी असातिज़ा और तालिबे इल्मों ने भी फिर एक बार तालियों से माहौल को गर्मा दिया। इसके साथ ही प्रिंसिपल मैम ने अख्तिताम का ऐलान कर दिया और सभी तलबा अपनी अपनी क्लासों में चले गए। क्लास में पहुंचकर सभी बच्चों ने सोनाली मैम को गिफ्ट दिए। जब चिराग ने सोनाली मैम की तरफ अपना गिफ्ट बढ़ाया तो सोनाली मैम ने उसे लेने से इनकार करते हुए कहा, सॉरी चिराग, तुम्हारा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। पहले तुम पढ़ाई में अच्छे बनकर दिखाओ, तभी मुझे ये गिफ्ट लेने में फख्र महसूस होगा। सिर्फ नाम चिराग रख लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने हिस्से के चिराग खुद ही रोशन करने होते हैं। चिराग रोता हुआ क्लास से बाहर चला गया और आज 20 साल बाद अपने आंसू साफ करते हुए चिराग ने कहा, थैंक यू सोनाली मैडम। क्योंकि आज उसे 20 साल बाद टीचर्स डे पर खुद अपने ही स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है तो उसके जहन में सोनाली मैम के कहे वो सारे जुमले रक्स कर रहे हैं। आज जबकि वो अपने ही शहर में IAS ऑफिसर है तो खुद पर गुजरे सारे लम्हात रह रह कर याद आ रहे हैं और स्कूल पहुंचने की भी जल्दी है जैसे कि 20 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन साथ ही ये भी खदशा लाहक था कि अब पता नहीं सोनाली मैम कहाँ होंगी। खुद से ही बड़बड़ाते हुए चिराग ने कहा। स्कूल में दाखिल होते ही चिराग का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और जल्द ही प्रोग्राम की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जब IAS ऑफिसर मोहम्मद चिराग से प्रिंसिपल साहिबा ने अपने तलबा की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज पेश करने को कहा तो उसने बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा, अजीजम, मेरे लिए निहायत इफ्तिखार का मकाम है कि आज मैं आपके सामने आपसे रूबरू हूँ। एक उस्ताद जिंदगी में क्या मायने रखता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दरअसल उस्ताद ही जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है और तालिबे इल्म भी अपने असातिज़ा से ये तवक्को रखता है क्योंकि बचपन में असातिज़ा ही तालिबे इल्म के रोल मॉडल होते हैं। अगर असातिज़ा का किरदार खुद मिसाली होता है तो जाहिर है तालिबे इल्म में उन खूबियों का आना फितरी है। एक बज़हीन तालिबे इल्म अपने असातिज़ा की ही नकल मकानी करता है। उनके असातिज़ा का पढ़ाने का अंदाज कैसा है या वो किस तरह से समझाते हैं कि वो हमेशा के लिए उनको जहनशीन हो जाता है। अक्सर तलबा को ये कहते हुए सुना जाता है कि मुझे फला टीचर की क्लास लेना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फला उस्ताद का समझाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। एक उस्ताद ही होता है जिसकी सिर्फ एक बात, एक अंदाज तालिबे इल्म को वो फिक्री नजर बख्श सकती है जिससे तालिबे इल्म की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो सही राह पर कामजन होता है। इसी स्कूल में मौजूद हमारी साइंस टीचर सोनाली मैम ने मुझे वही नजरिया बख्शा था जिसका नतीजा आप सबके सामने है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अपनी बात को मजीद तूल देते हुए चिराग ने कहा। एक और मिसाल देते हुए चिराग ने कहा, अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आजादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो जो हमें सुलाए नहीं बल्कि हम में हरकत और हंगामा पैदा कर दे, क्योंकि ज्यादा सोना मौत की अलामत होगा। ये दो जुमले कि जो हमें सुलाए नहीं बल्कि हम में हरकत और हंगामा पैदा कर दे, ये हरकत और हंगामे शायद बहुत पहले सोनाली मैम ने मेरे अंदर पैदा कर दिए थे। इसके साथ ही अपनी बात खत्म करते हुए जय हिंद। वहाँ मौजूद मेहमानान ने माहौल को फिर से गर्मा दिया। चिराग की बातें सुनकर मजमे में मौजूद व्हाइट साड़ी में मलबूस बहुत ही ज़ईफ़ उम्र खातून ने स्टेज पर आने का इशारा किया। दो तलबा दौड़े चले गए और खातून को आराम से स्टेज पर लाकर बिठाया। उन्होंने माइक पकड़ते हुए कहा, प्यारे बच्चों, अभी आपने IAS ऑफिसर मोहम्मद चिराग की गुफ्तगू सुनी जिससे आप सभी ये तो बखूबी समझ ही गए होंगे जिस तरह उस्ताद से एक घंटा गुफ्तगू 10 बरस के
मुताले से बेहतर होती है, ठीक उसी तरह उस्ताद की फटकार भी बड़ी ही कारामद साबित होती है।

0: है कि वो रोशन चराग हो जिससे कितनी ही तारीख राहें रोशन हो सकती हैं। तभी चराग दौड़कर सोनाली मैम के करीब पहुंच गया और कहा, मैम वाकई उस्ताद ही वो रोशन चराग है जिससे तारीख ही दूर होती है।
1: रोशन चिराग, अभी आप सुन रहे थे ये अफसाना। अफसाना निगार थी महमूदा कुरैशी। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अंजुमन अब खत्म होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को ही हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री

0: अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथि पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। साथ ही जानकारी देंगे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओ, हमारी इसी सभा में रात 9:30 पर आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा इरा मुखर्जी का धमार गायन। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 आज के आकर्षण रहेंगे यूथ को लैब विषय पर चर्चा होगी। आज का सवाल होगा नई पहल क्रम में ई जागृति प्लेटफॉर्म विषय पर जानकारी होगी। वैज्ञानिकी क्रम में पैराक्राफ्ट विषय पर जानकारी होगी। वार्ता प्रसारित की जाएगी सुविधा की कीमत पर संकटग्रस्त प्रकृति। वार्ताकार होंगी मोना कुकरेजा। क्रम रहेगा आज के हम सफर और चलते चलते। ग्रामीणों कार्यक्रम में 6:00 सुनिएगा सहभागिता योजना विषय पर चर्चा। खरीफ में प्याज फसल की तैयारी विषय पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ताकार रहेंगे लटूरी सिंह। नई किस्में क्रम में आप सुनेंगे मक्का के विषय में जानकारी। मंडी भाव होंगे। मौसम की जानकारी के साथ ही लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 6:30 पर श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मजदूर मंडल। इसमें प्लास्टिक के दुष्प्रभाव विषय पर चर्चा होगी। कानूनी वार्ता होगी श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान। वार्ताकार होंगे ज्ञानेन्द्र कुमार रावत। आज का प्रश्न होगा

कार्यक्रम रहेगा ज्ञान सागर, आज की पाती सेहत टिप्स और फिल्म संगीत। संध्या 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार चतुर्वेदी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, पर्यावरण की दुश्मन प्लास्टिक। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश प्रसारित किया जाएगा 7:31 पर। इसमें प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस विषय के अवसर पर भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी, स्वच्छ भारत से प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना विषय पर डॉक्टर आनंद रॉय से बातचीत करेंगे अनेंद्र सिंह। रात्रि 8:00 फिल्मों से कव्वालियां प्रसारित की जाएंगी, कार्यक्रम महफिली कव्वाली के तहत चित्रपट संगीत होगा और पसंदीदा फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा रात्रि 10:00। ये थे हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर चिंतन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार प्रसारित किए जाएंगे, श्री रामचरित मानस गान होगा हर रोज की तरह 6:35 पर। और 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में विनय कुमार की वार्ता का विषय रहेगा पशु खाद्य प्रबंधन। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर एचपी सिंह की वार्ता दृष्टि दोष कारण और उपचार, कार्यक्रम रहेगा स्वास्थ्य चर्चा। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे आसपास कल प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 9:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल वर्मा के गाए लोकगीत। पूर्वाह्न 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, कल का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। साथ ही एक और विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाएं जीवन पाएं। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 पर। 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

0: गोपी फिल्म की भक्ति रचना आपने सुनी महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण की इस रचना को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। सरगम फिल्म की भक्ति रचना अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी की इस रचना को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: तो आइए सुनते हैं सरगम फिल्म की ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम के अंत में जय संतोषी माँ फिल्म की ये भक्ति रचना, जिसे आवाज दी है उषा मंगेशकर ने, रचना प्रदीप की है और संगीत सी अर्जुन का।

जय संतोषी माँ। इस फिल्म की भक्ति रचना आपने सुनी उषा मंगेशकर और साथियों के स्वर में। रचना प्रदीप की थी, संगीत सी अर्जुन का। इसके साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 5:30 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, कल कॉलेज में एक डिस्कशन हो रहा था दोस्तों के बीच आपस में, तो एक दोस्त ने मेरे बहुत ही शानदार आइडिया बताया। उसने बड़े उत्साह से कहा, यार सोचो अगर हम ऐसा ऐप बना दे या प्रोजेक्ट बना दे जो गांव के किसानों को सीधा बायर से जोड़ दे, ताकि उनकी अपनी फसल का सही दाम मिल सके उन्हें, और बीच में कोई बिचौलियों का निर्भर भी ना रहना पड़े उन्हें। तभी दूसरा दोस्त कहता है उसी में से, वो भी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाना चाहता था जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार कर सके। सच में दोस्तों, आप मानोगे नहीं, उनके आइडिया सुनकर को तो ये लगा कि आज के युवाओं के पास कितने टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन तभी किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी तीसरे ग्रुप में कोई छुपा हुआ बैठा था, पीछे से बोलता है, अरे यार ये सब इंडिया में इतना आसान नहीं है, बस आइडियाज ही बातों तक बनवा लो। और बस वहीं पे

दोस्तों लगा, महसूस हुआ कि कितने भी बेहतरीन आइडिया सिर्फ इसलिए ही अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस, सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और दोस्तों इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही खास इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है यूथ कोलैब। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी फेवरेट दोस्त और होस्ट अदिति अग्रवाल और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाणी, जहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि इन बातों के पीछे छिपे अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के दोस्तों जो युवाओं के आइडियाज़ को सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि उन्हें पहचान, दिशा और आगे बढ़ने का मौका भी देता है। आज की हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों यूथ कोलैब, युवाओं के सपनों को पहचान देने वाला मंच। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए ले लेते हैं आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट आज का सवाल। तो तैयार हो जाइए दोस्तों अपने दिमाग के गियर्स को थोड़ा सा घुमाने के लिए। ज़रा सोचिए, समझिए और बिना गूगल की मदद करिए जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज का सवाल है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसे आज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की स्टार्टअप राजधानी कहा जाता है? थोड़ा सा सोचिए, आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। एक छोटी सी हिंट भी दे देती हूँ, ये देश अपनी नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और लाखों नए स्टार्टअप आइडियाज़ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यही नहीं, यहाँ हर साल हज़ारों नए एंटरप्रेन्योर्स अपने सपनों को लेकर एक नई पहचान देते हैं। एंड डोंट वरी दोस्तों, इसका सही जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी हमारे कार्यक्रम के एंड में। चलिए बिना देरी किए जानते हैं यूथ कोलैब के बारे में, ये कैसा मंच जो युवाओं के सपनों को सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि उन्हें उड़ान भी देता है। दोस्तों अब सवाल है, ये आखिर यूथ कोलैब है क्या? नाम सुनकर पहली बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई साइंस लेबोरेटरी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो को का मतलब है कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना, और लैब का मतलब है एक ऐसी जगह, ऐसा भंडार जहां नए आइडियाज़ पर काम किया जाए, उन्हें बेहतर बनाया जाए और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश किया जाए। यानी यूथ कोलैब एक ऐसा मंच है युवाओं के सपनों के लिए एक नए आइडियाज़ और इनोवेशन को सही दिशा दी जाती है। यहाँ सिर्फ बातों नहीं होती दोस्तों, यहाँ आइडियाज़ को एक्शन में बदलना सिखाया जाता है। अगर किसी युवाओं के पास समाज में किसी समस्या का समाधान नहीं है या कोई नया बिजनेस आइडियाज़ है, कोई स्टार्टअप प्लान है या फिर ऐसा इनोवेशन जो लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकता है, तो यूथ कोलैब उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे कि मैंने दोस्तों शुरुआत में आपसे कहा था कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। अब आप ही देख लीजिए, हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में, यहाँ तक कि गांव में, हर जगह ऐसे युवा मिल जाएंगे जिनके पास शानदार आइडिया होते हैं, लेकिन अक्सर ये आइडियाज़ वही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। कई बार तो दोस्तों स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि आइडिया को बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाए, इन्वेस्टर से कैसे बात करें, प्रेजेंटेशन कैसे दें या फंडिंग कहाँ से मिले। कुछ लोग फेलियर के डर से ही अपने आइडियाज़ पर काम ही नहीं करते। उन्हें लगता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और यही डर दोस्तों उनके सपनों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। दोस्तों यही गैप भरने के लिए यूथ कोलैब की शुरुआत की गई थी, जो हुई थी साल 2017 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और सिटी फाउंडेशन ने मिलकर इस इनिशिएटिव को शुरुआत की थी। दोस्तों इसका उद्देश्य मोटो बहुत ही सिंपल था। इसका उद्देश्य सिर्फ स्टार्टअप बनाना नहीं था बल्कि युवाओं को ऐसा लीडर बनाना था जो समाज की समस्याओं को समाधान खोज सके। यूथ कोलैब का मानना था कि अगर युवाओं को सही ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वही युवा अपने देश और समाज का बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और लीडरशिप तीनों एक साथ काम करते हैं। दोस्तों यूथ कोलैब सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ तक सीमित नहीं है। अगर आप में से आपके दोस्त कोई क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाहता है या एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाना चाहता है, कोई भी आपका दोस्त एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहता है, हेल्थ केयर डोमेन में जाना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या डिजिटल टेक्नोलॉजी, वुमन एम्पावरमेंट या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में कुछ नया करना चाहता है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। यानी

अगर आपके पास समाज की किसी समस्या का सोल्यूशन है तो यूथ गुलाब उसे आगे बढ़ाने में आपकी हमेशा मदद करता है। अब सवाल यह है कि इसका फ़ायदा सिर्फ एक स्टूडेंट को होता है या पूरे भारत को, पूरे देश में? तो दोस्तों जवाब तो बहुत ही सिंपल है, पूरे देश को। क्योंकि जब एक युवा सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू करता है ना, तो वो सिर्फ अपनी इनकम नहीं बढ़ाता बल्कि दूसरे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करता है। नई टेक्नोलॉजी आती हैं, नई सर्विस शुरू होती हैं और इकोनॉमी भी मजबूत होती है। यही वजह है दोस्तों कि आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की दिशा में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यही यूथ कोलैब की सबसे बड़ी सोच है, छोटे आइडियाज़ को बड़ा इम्पैक्ट बनाना को मौका देना। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई नया आइडिया आए तो उसे सिर्फ डायरी के आखिरी पेज तक सीमित मत रखिए, उस पर काम कीजिए, सवाल पूछिए, एक्सपर्ट से सीखिए और खुद पर हमेशा विश्वास रखिए। क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा बदलाव पहले किसी एक युवा के छोटे से विचार के रूप में ही शुरू हुआ था। हो सकता है अगला आइडिया जो दुनिया बदल दे वो आपका ही हो। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में जानकारी भी ज़रूरी है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी। तो चलिए, इतनी प्यारी सी शाम की और प्यारी सी चर्चा के बाद अब आपके दिल को भी थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, मुस्कुराइए और इन्जॉय कीजिए ये शानदार गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कभी नया मोबाइल ख़रीदा हो, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करी हो, या हम लोग आसपास हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसेस ख़रीदते हैं या फिर किसी दुकान से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया हो, लेकिन घर आकर पता चलता है ये सामान ख़राब है या फिर जो दिखाया गया था वो हमें मिला नहीं। ऐसे समय पर सबसे पहले सवाल मन में आता है, अब शिकायत कहाँ करें, कौन हमारी बात सुनेगा। और सच कहूँ तो दोस्तों, कई लोग जो सिर्फ इस डर से शिकायत ही नहीं करते कि सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत समय लगेगा और शायद कोई सुनवाई ही ना हो इस पर। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अब आप घर बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप की मदद से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसकी हर अपडेट दिखा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हियरिंग में शामिल हो सकते हैं और फैसला भी ऑनलाइन पा सकते हैं, तो कैसा लगेगा दोस्तों। यही बदलाव लेकर आई है सरकार की एक नई पहल जिसका नाम है ई जागृति। दोस्तों, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ई जागृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी कंज्यूमर्स अपने साथ हुए किसी भी समस्या की ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। दोस्तों, पहले जहां शिकायत करने के लिए अलग अलग ऑफिस जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स लेकर बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वही पूरा प्रोसेस ई की प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कंप्लेंट रजिस्टर करने से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, नोटिस रिसीव करना, यही नहीं कि इसकी प्रोग्रेस देखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेयरिंग अटेंड करना और फाइन एंड ऑर्डर की कॉपी प्राप्त करना, सब कुछ अब ऑनलाइन हो सकता है। यानी दोस्तों, सिंपल है, टेक्नोलॉजी ने जस्टिस को पहले ही कहीं ज़्यादा आसान और एक्सेसिबल बना दिया है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। दोस्तों, क्या है, पहले अगर किसी कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो जाता था, खराब प्रोडक्ट मिल जाता था या किसी सर्विस में परेशानी आती थी, तो शिकायत दर्ज करने और समाधान पाने में महीने लग जाते थे। अब कई लोग दूर दराज के इलाके में रहते हैं, कई लोग आसपास समय नहीं होता है और कई लोग सिर्फ प्रोसेस की वजह से ही शिकायत करना छोड़ देते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए 1 जनवरी 2025 में ई जागृति प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, ताकि हर कंज्यूमर्स को तेज, आसान और ट्रांसपेरेंट जस्टिस मिल सके। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को और भी स्मार्ट बनाने के लिए इसमें कई मॉडर्न फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन, AI चैटबॉट, वॉइस टू टेक्स्ट सुविधा, मल्टी लैंग्वेज इंटरफेस किसी को भाषा में दिक्कत हो, ऑनलाइन पेमेंट्स, SMS और ईमेल अलर्ट्स, AI और मशीन लर्निंग का उपयोग, दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं। इवन दोस्तों, एडवोकेट तथा ऑफिशियल के लिए अलग अलग डिजिटल डैशबोर्ड्स भी बनाए गए हैं, यानी हर व्यक्ति की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको देती हूँ ई जागृति पोर्टल का लिंक, https://e-jagriti.gov.in। तो दोस्तों, आप सब कुछ एक्सेसिबल है, यहाँ जाकर सिर्फ आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपने मामले की स्थिति देख सकते हैं और उपभोक्ता सेवाओं से भी जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने जाना कि कैसे तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। अब ई जागृति जैसे पहल हमें घर बैठे न्याय पाने की सुविधा देती है, ये डिजिटल इंडिया की एक शानदार मिसाल भी है। लेकिन दोस्तों, हर सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आज हम दोस्तों जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से प्रकृति का भी उसका असर दिखाई दे रहा है। बढ़ता ई वेस्ट आप देख लीजिए अपने आसपास, बिजली की बढ़ती खपत, संसाधनों का अधिक उपयोग और पर्यावरण पर पड़ता दबाव, ये ऐसे सवाल हैं।

0: जिनके बारे में हमें आज भी ये सोचना होगा, क्योंकि दोस्तों विकास तभी सार्थक है जब वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे साथ है हमारी विशेषज्ञ वार्ताकार मोना कुकरेजा, जो हमें बताएंगी कि कैसे सुविधा की कीमत पर संकटग्रस्त प्रकृति का क्या अर्थ है, अनुधिक जीवन शैली किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, और हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल कर कैसे प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बिना देरी किए सुनते हैं उनसे विशेषज्ञ वार्ताकार मोना कुकरेजा जी की ये खास वार्ता।
1: मनुष्य ने अपने इतिहास में अद्भुत प्रगति की है। कभी जो दूरी दिनों में तय होती थी आज घंटों में पूरी हो जाती है। कभी संचार के लिए संदेश वाहकों की आवश्यकता पड़ती थी, आज एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारी हथेली में सिमट गई है। वातानुकूलित घर, चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार वाहन, ऑनलाइन सेवाएं और आधुनिक तकनीक, इन सब ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन इसी विकास के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या हमने कभी इन सुविधाओं की वास्तविक कीमत का आकलन किया है? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आराम के लिए कितने जंगल कटे, कितनी नदियां प्रदूषित हुईं, कितने जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास से वंचित हुए, प्रकृति का कितना संतुलन बिगड़ा? सच तो ये है कि हमारी अधिकांश सुविधाएं सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। जब हम नई सड़कें बनाते हैं तो पेड़ कटते हैं, जब हम बड़े शहरों का विस्तार करते हैं तो जंगल सुकड़ते हैं, जब हम अधिक बिजली की मांग करते हैं तो ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, जब हम उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तो कचरा, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है इस प्रकार सुविधा की चमक के पीछे प्रकृति का एक मौन संघर्ष छिपा हुआ है। यदि हम वर्तमान स्थिति को आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो ये संकट और स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले के तुलना में लगभग 1.2 से 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में ये वृद्धि मामूली लग सकती है, परंतु इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, भीषण गर्मी, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं इसी परिवर्तन के संकेत हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 1880 के बाद वैश्विक समुद्र तट 2.1 से 2.4 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। ये वृद्धि लाखों तटीय निवासियों के लिए खतरे की घंटी भी है। और दोस्तों वनों की स्थिति तो और ज्यादा चिंताजनक है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 1990 में अब तक विश्व लगभग 49 करोड़ हेक्टेयर वन खो चुका है। कल्पना कीजिए धरती के फेफड़े कहे जाने वाले यही जंगल लगातार सुकड़ते रहें और हम स्वच्छ हवा के लिए मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने भी इस संकट को निकट से महसूस किया है। वर्ष 2025 में हैदराबाद के कांचा गाची बोली वन क्षेत्र राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया था। शहरी विस्तार और विकास परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई भी आरंभ हुई। नागरिक और विद्यार्थी सब एकजुट खड़े हुए और ये मामला न्यायालय तक पहुंच गया। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि विकास आवश्यक है, लेकिन यदि यही विकास प्रकृति के विनाश की कीमत पर हो तो उसका लाभ स्थायी नहीं हो सकता। आज हमारी जीवन शैली भी प्रकृति पर भारी दबाव डाल रही है। उदाहरण के लिए एयर कंडीशनर हमें गर्मी से राहत देते हैं, लेकिन इनके बढ़ते उपयोग से बिजली की मांग बढ़ती है। यदि वह बिजली जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न हो रही है तो कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है। ऑनलाइन खरीदारी हमारी सुविधा बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ अतिरिक्त पैकेजिंग, प्लास्टिक और परिवहन से उत्पन्न प्रदूषण भी जुड़ता है। आज उपभोक्तावाद की संस्कृति ने जरूरत और इच्छा के बीच की दूरी को कम कर दिया है, जिससे संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि हम प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया जाता है। समुद्रों में भी एक गंभीर समस्या उभर रही है, जिसे वैज्ञानिक डेड जोन या मृत क्षेत्र कहते हैं। ये ऐसे समुद्री क्षेत्र हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि अधिकांश जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते। कृषि रसायनों और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण दुनिया भर में ऐसे क्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो समुद्र कभी जीवन का आधार थे, वे धीरे धीरे जीवन विहीन क्षेत्रों में परिवर्तित

हो रहे हैं। विडंबना ये है कि जिस सुविधा के लिए हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, वही सुविधा अंततः हमारे लिए ही नई समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। स्वच्छ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदने पड़ रहे हैं, शुद्ध जल के लिए फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं, बढ़ती गर्मी से बचने के लिए अधिक बिजली खर्च करनी पड़ रही है। अर्थात हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उन्हीं समस्याओं का समाधान खरीद रहे हैं जिन्हें हमने स्वयं पैदा किया है। हालांकि स्थिति गंभीर है लेकिन निराशाजनक नहीं। विश्व स्तर पर और भारत में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास लक्ष्य, पेरिस जलवायु समझौता और जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण पहले शुरू की हैं। मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, नमामि गंगे परियोजना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और

0: करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण पहले शुरू की हैं। मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, नमामि गंगे परियोजना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और स्वच्छ भारत मिशन इनके कुछ उदाहरण हैं। किंतु केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक शुरुआत हमारे दैनिक जीवन से होती है। यदि हम जल बचाएं, ऊर्जा की अनावश्यक खपत कम करें, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं, वृक्षारोपण करें और जिम्मेदार उपभोग की आदत विकसित करें, तो हम प्रकृति पर बढ़ने वाले दबाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सच्चा विकास वही है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को भी रक्षा करे। सुविधा और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन ही सतत विकास का मार्ग है। प्रकृति कोई बाहरी सत्ता नहीं है, हम स्वयं प्रकृति का हिस्सा हैं। जब जंगल कटते हैं, नदियां प्रदूषित होती हैं या जलवायु बदलती है, तो उसका प्रभाव अंततः हमारे जीवन पर ही पड़ता है। इसलिए समय की मांग है कि हम विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रकृति को पीछे ना छोड़ें। हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जिसमें सुविधा भी हो और जिम्मेदारी भी हो। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को केवल आधुनिक सुविधाएं ही नहीं, बल्कि स्वच्छ वायु, निर्मल जल, हरित वन और संतुलित पर्यावरण भी विरासत में देंगे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद मोना जी, आपने हमारे दोस्तों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि सुविधा हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाती है, लेकिन अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपने हमें ये भी बताया कि छोटी छोटी अच्छी आदतें अपना कर ये पर्यावरण को हम रक्षा कर सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसे स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया की स्टार्टअप राजधानी कहा जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब सोच लिया होगा। तो दोस्तों, अगर इसका जवाब इज़राइल है तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही इज़राइल क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से एक छोटा सा देश है, लेकिन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के मामले में उसने अपनी पूरी दुनिया में अपने को एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में नए स्टार्टअप शुरू होते हैं। रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और साथ साथ हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में भी लगातार नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं। यही सोच दोस्तों ने स्टार्टिंग के टॉपिक में देखी थी, यानी इन यूथ को लैब भी हमें यही सिखाता था कि हर युवा के अंदर इनोवेटर छिपा है, ज़रूरत सिर्फ उसे सही मंच, सही मार्गदर्शन और सही अवसर देने की है। क्योंकि जब युवाओं के आइडियाज़ को उड़ान मिलती है तभी समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है और भविष्य और भी बेहतर बनता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई नया आइडिया है तो उसे सिर्फ सोचकर मत छोड़िए, उसे लिखिए, उस पर काम कीजिए, लोगों से सीखिए और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिए। क्या पता अगला बड़ा स्टार्टअप या इनोवेशन आपके ही दिमाग से निकले। दोस्तों, जुलाई की हल्की हल्की फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और दिल में उमड़ते ढेर सारे एहसास, ऐसे खूबसूरत मौसम में चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत सेवा आपके लिए।

0: जैसे के फूल हंस के जहर कोई पिए जाए।
1: तो सो हंसा मेहता जी ने बड़ा ही योगदान दिया था अपना यूनाइटेड नेशन में, और वो माना जाता है जब दुनिया के लिए ह्यूमन राइट्स का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था, तब उसमें लिखा था ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। यहाँ हंसा मेहता जी ने कहा इसमें सिर्फ मैन नहीं बल्कि ह्यूमन बींग्स लिखा जाना चाहिए, ताकि ये संदेश महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए इक्वल हो। उनकी बात मानी गई और आज पूरी दुनिया में ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल पढ़ती है, और ये उनकी सोच और दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी इस मुलाकात में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, समझा होगा, साथ में शानदार गीत भी भरपूर आनंद लिया होगा। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं थी आपकी दोस्त और होस्ट आदित्य अग्रवाल, आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नए दिन नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 6 बजे आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

राम राम किसान भाइयों बहनों, और कैसे हैं आप सब? सब कुशल मंगल? चलिए, यही होना भी चाहिए। आइए अब अपने ग्रामीणों कार्यक्रम की चौपाल की शुरुआत करते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज पुनः आपकी सेवा में हाजिर होने का मौका मिला है आपके साथी देवेंद्र को। तो चलिए साथियों, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे हमारे और आपके घर आंगन से जुड़ी हुई है, पर शायद हम आप उस पर उतनी बात नहीं करते जितनी की करनी चाहिए। अरे भाई, जरा सोचिए, अगर आज हमारे खेत लहरा रहे हैं, घरों में खुशहाली है, तो जानते हैं इसका सबसे बड़ा क्या कारण है? इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो वो है हमारे पशुधन का। वही पशुधन जिनको हम आप अपना काम निकलते ही आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, पर जानते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे सच बताना, जब हम आप इन निराश्रित गोवंशों यानी आवारा पशुओं को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? यही ना कि क्या होगा, कौन इनकी देखभाल करेगा, कौन इनका रखरखाव करेगा? पर पता है, हमारी सरकार ने इस चिंता का भी एक पक्का समाधान निकाल लिया है सहभागिता योजना के जरिए।

0: अब हमारी सरकार न केवल हमें इन बेजुबानों की देखभाल का जिम्मा सौंप रही है, बल्कि बदले में वो हमारी सेवा का सम्मान भी दे रही है। तो सम्मान के तौर पर हमें क्या मिल रहा है, किस तरीके से या किस माध्यम से हमें इन बेजुबानों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और ये सहभागिता योजना क्या है, इन सब तमाम बातों के विषय में थोड़ा और विस्तार से जानने के लिए हमने रुख किया एक पशु चिकित्सालय का।
1: किसान साथियों नमस्कार। देखिए आज हम एक कान की जानकारी के लिए फिर से पहुंचे हैं एक पशु चिकित्सालय में और वहां हमारी मुलाकात हुई है वहां की जो डॉक्टर हैं डॉक्टर भारती कटारे जी। तो मैम हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारी सरकार हमारे किसान भाइयों के लिए तमाम तरह की योजनाओं को चलाती है, उन्हीं योजनाओं में से आज हम एक योजना के विषय में आपसे जानने आए हैं। उस योजना का नाम है सहभागिता योजना। तो ये सहभागिता योजना क्या है, इससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ा आप बताने।
2: सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम ये पशुपालन विभाग की जो योजना है सहभागिता योजना, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी योजना पशुपालन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निराश्रित सहभागिता योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति गौवंश 1500 रुपए प्रति माह दिया जाता है
1: भरण पोषण के लिए।
2: तो जिसको हमको क्या करना है उसके लिए अस्थाई गौआश्रय स्थल है हमारे पास, जहाँ भी जो खुले हुए हैं उनसे गौशालाएं अस्थाई गौआश्रय स्थल है उनसे आपको एक गौवंश लेना है
1: जी।
2: अब इसमें अधिकतम आप 4 गौवंश ले सकते हैं,
1: ठीक है।
2: तो जो इससे किसानों की जो आर्थिक सहायता है वो लगभग 6000 रुपए तक हो जाएगी यदि आप 4 गौवंश
1: लेते हैं। तो हमें 6000 रुपए महीना में मिलेगा सरकार की ओर से अनुदान के तौर।
2: मुख्यतः योजना का उद्देश्य ये है कि जो सड़कों पे आवारा जो पशु घूम रहे हैं वितरण कर रहे हैं तो उनका सुरक्षित संरक्षण हो सके। सुरक्षित संरक्षण का मतलब ये अच्छा पशु है जो कि छोड़ दिया गया है वो पशुपालकों के पास पहुंच जाएगा, उनसे उनकी आर्थिक सहायता भी मिलेगी उनको और दूध है से पोषण भी मिलेगा उसमें।
1: अच्छा मैम एक चीज पूछना चाह रहे थे, चलिए आपने कहा कि गौशाला से आप 4 पशु ले सकते हैं, तो उसको लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम लोग आवेदन करें, कहाँ से इस बात की जानकारी होगी
2: जी? इसमें आवेदन के लिए आपको आपके विकास खंड में जो गौशालाएं संचालित हैं वहीं से आपको संपर्क करना पड़ेगा।
1: मतलब हमें अपने ब्लॉक से जो हमारे ब्लॉक के अधीन जो गौशालाएं संचालित है वहीं से लेना पड़ेगा,
2: वहीं से संपर्क करना।
1: तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए?
2: इसमें आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप पहले गौशाला में घूम लीजिए, जैसे आसपास आपकी जितनी गौशालाएं उनमें आप एक बार कौन सी गौशाला में आपको कौन सा गौवंश पसंद आ रहा है तो आप वहाँ की आपकी नजदीकी जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी उनसे आप संपर्क करेंगे,
1: ठीक है।
2: संपर्क करने के बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म दिया जाएगा, तो उस फॉर्म को आपको कम्प्लीट करना है। कम्प्लीट करने के बाद उसको जमा करना है वहीं पर,
1: अच्छा उसी पशु चिकित्सालय में
2: आपको जमा करना है,
1: ठीक है।
2: बस उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो ग्राम प्रधान है जहाँ के हम निवासी हैं,
1: अच्छा जिस गांव के हम निवासी हैं
2: वहाँ से आपको उसको सत्यापित करवाना पड़ेगा,
1: अच्छा गाय देना चाहते हैं
2: और एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि एग्रीमेंट नहीं एफिडेविट बोल सकते हैं, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 100 रुपए के स्टाम्प
1: पेपर
2: में लिखवाना पड़ता है कि हम इसको बेचेंगे नहीं,
1: ठीक है,
2: इसको छोड़ेंगे नहीं, यदि ये बेकार हो जाती है या फिर दूध देना बंद कर देती है या फिर ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो हम तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे और उनको इसके बारे में बताएंगे, तो जो आगे की प्रक्रिया है वो पशु चिकित्सा अधिकारी संपन्न करेंगे।
1: अच्छा मैम उनके भरण पोषण के लिए आपने कहा 1500 रुपए मिलेगा, तो और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? जैसे मान लीजिए हम वो गाय को ले आए तो बीमार होती है या किसी कारणवश कुछ उसको दिक्कतें होती है तो उसमें इलाज के लिए क्या हमें पता कराना पड़ेगा कि इसके लिए भी सरकार द्वारा कोई सुविधाएं?
2: नहीं आपको इलाज तो जो बेसिक इलाज होगा आपको मिलेगा पशु चिकित्सालय पर। पशु चिकित्सालय में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर इलाज जो है वो आपकी जो सरकारी दरें हैं उन्हीं पे होगा, बाकी सुविधाएं ये मिल सकती हैं आपको कि भई आप संपर्क करेंगे तो आपके घर पे जो 1962 एम्बुलेंस है उसको भिजवा दिया जाएगा।
1: अच्छा उसका बीमा भी होता है, जैसे हम यहाँ से गाय लेंगे तो उसका बीमा ही करवाया जाता है?
2: नहीं नहीं बीमा।
1: अच्छा एक किसान भाई 4 आपने बताया 4 पशु ले सकते, जैसे चारे के लिए या बाड़े आड़े के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता दी जाती
2: है? नहीं, ऐसी तो कोई सहायता नहीं है। इसमें सिर्फ 1500 रुपए भरण पोषण के लिए दिया जाता है।
1: भरण पोषण के लिए
2: तो इसमें ये है कि आपके सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कोई बीच की कोई प्रोसेस नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म जमा करना है, उसके बाद वो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सत्यापित होती है, वो जो लिस्ट बनती है, उसके बाद फिर जब आपके वहाँ से सत्यापन होने के बाद फिर आपके अकाउंट में सीधे पैसा आना शुरू हो जाता है।

0: तब तक जब तक हम गाय रखेंगे तब तक रेगुलर आता रहेगा। हाँ। इसके लिए कोई जांच टीम आती है जिसकी जांच पड़ताल हो रही है?
1: जी जी प्रतिमा, आपके यहाँ पर लेखपाल द्वारा या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा, इन सभी के द्वारा, पशुपालन विभाग और ये दूसरा भी जो राजस्व विभाग के द्वारा इसकी जाँच पड़ताल
0: वेरिफिकेशन होता है की ये गाय है भी इनके पास की नहीं है।
1: जीपीएस टैग वाला फोटो दिया जाता है, वो अपलोड होता है, उसके बाद डिमांड भरने के बाद आपके अकाउंट में सीधा पैसा आता है।
0: अच्छा, हम एक बार में मैम चार गाय ले सकते हैं कि धीरे धीरे करके एक एक करके लेना पड़ता है? हम चाहे तो इकट्ठा ले सकते हैं।
1: नहीं, एक बार में यदि आप लोगे तो आपको एक बार एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और सारी जो
0: फॉर्मेलिटी है
1: वो एक बार में लेनी पड़ेगी, तो चार के लिए हो जाएगी।
0: अच्छा, एक ही फॉर्म में चार हम गाय उसमें ले सकते हैं एक ही फॉर्म के ऊपर?
1: जी।
0: अच्छा, घर परिवार में एक ही लोग को सहायता मिलती है?
1: नहीं, एक परिवार में एक ही व्यक्ति मिलेगा।
0: अच्छा, महिला पुरुष में कोई वरीयता दी जाती है?
1: महिला को ज्यादा वरीयता दी जाती है, जाता है जल्दी।
0: और क्या मैम आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिए?
1: इसमें जो आवेदन के लिए पात्रता भी देखी जाती है, पहला तो मूल निवासी होना चाहिए।
0: कहाँ का मूल निवासी होना चाहिए?
1: यही अपने विकास खंड का होना चाहिए, और साथ में उसके पास पर्याप्त जगह होना चाहिए
0: गौशाला, मतलब उसको
1: पालने के लिए, और हरा चारा पानी इसकी सुविधा होना चाहिए। ये मेनली जो कुपोषण वाले परिवार है, जो कुपोषित परिवार है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। यदि उनको हम इसमें एक उनके लिए थोड़ी सी लिबर्टी दे
0: देते हैं,
1: आप इसको
0: मतलब जो गरीबी रेखा है कहें कि कुपोषित का मतलब यही हुआ ना, जो निचला जीवन स्तर जीते उन्हें वरीयता दी जाती है।
1: जी जी।
0: वैसे मिलना तो सबको अलाउड
1: कोई ले सकता है,
0: कोई भी ले सकता है। अच्छा, इसको जैसे ऑनलाइन हम लोग जनसेवा केंद्र से नहीं कर सकते ना, यहाँ से पशुपालन विभाग से करना पड़ेगा। इसका फॉर्म भी यहीं से मिलता है हमें, उसके बाद एफिडेविट हमें वहाँ से बनवाना पड़ेगा अपने तहसील से, उसमें ये लिखवाना पड़ेगा कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा मैम, किसी कारणवश अगर किसी कोई मान लीजिए इन नियमों का पालन नहीं करता है, छोड़ देता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है?
1: अब उसके खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन ये है कि उसमें किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया।
0: अच्छा, मतलब वो ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा, जो सरकारी योजना है उनका उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
1: पशुपालन विभाग से संबंधित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री है, मिनी नंदिनी है, कोई भी जो योजना है सरकारी योजना है उनमें किसी उसको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कृत्रिम गर्भाधान है जो फ्री में होता है, उसको अभी लाभ नहीं मिलेगा।
0: अच्छा मैम, साथ साथ और कौन कौन सी योजना अगर आप बताना चाहेंगे, दो चार योजनाओं के बारे में तो हमारे किसान भाई को बता दी जो इस समय चल रही है पूरे प्रदेश में।
1: गोकुल मिशन योजना चल रही थी जिसमें एआई फ्री थी, कृत्रिम गर्भाधान फ्री था।
0: अच्छा,
1: उसमें आपको आधार कार्ड लेके आना पड़ता था और बाकी जो पशु टैग लगवाना है।
0: और अभी सुनने में आया कि नंद बाबा योजना चल रही है।
1: जी, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, उसमें भी 2 लाख रुपए का लोन है, उसमें 80,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी दो गाय पालने पर।
0: दो गाय पालने,
1: लेकिन उसमें जो गाय है वो स्वदेशी नस्ल की होना चाहिए, जैसे कि गिर है, साहिवाल है,
0: थारपारकर
1: है, होना चाहिए। और एक और योजना है गोवन से ही संबंधित, जैसे कृत्रिम गर्भाधान है, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें बछिया का कृत्रिम सीमन यूज किया जाता है, जिससे कि बछिया ही पैदा होगी। वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। उसमें सिर्फ 100 रुपए उसके पैसे जमा होते हैं, और
0: मतलब 100 रुपए शुल्क हमें देना है, और
1: शुल्क है उसका,
0: तो फुल गारंटी है कि वो बच्चा जो होगा वो बछिया ही होगी।
1: हाँ, मतलब 90% ये है कि उससे जो पैदा होगा वो बछिया ही पैदा
0: होगी, और वो देसी होगी कि ऐसी
1: देसी होगी?
0: अच्छा, देसी ही साई वाले, अच्छा दूध देने वाली,
1: अच्छा दूध देने वाली निकलेगी।
0: योजना का नाम क्या बताया मैम आपने?
1: सेक्स ऑर्डर्ड सीमन है वो। यदि आप पशु चिकित्सालय पर जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी गाय में उसी का इस्तेमाल करें जो कि बछिया पैदा हो, तो वहाँ पर 100 रुपए आपको शुल्क देना पड़ेगा और आपको वो अवेलेबल करा देगा। हमारे जो जो गोवंश को छोड़ देते हैं, जैसे काम कर रहे हैं,
0: कम दूध देते हैं, लगातार पूरी मेहनत,
1: यदि
0: ये समस्या नहीं आएंगे, अच्छे नस्ल के बच्चे होंगे, अच्छी नस्ल के बच्चे होंगे, अच्छा दूध देंगे, अच्छे बैल होंगे, अच्छे सब कुछ होगा, तो हम उन्हें ऐसे छुट्टा नहीं छोड़ेंगे जैसे आवारा पशु जैसे आजकल घूम रहे हैं, किसी काम के नहीं है। कहने का मतलब आपका ये है। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमारे सुनने वाले को, हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी डॉक्टर भारती कटारे जी ने सहभागिता योजना के विषय में बड़ी ही उपयोगी बातें बताई, उसे देखते हुए हमें इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। अरे भाई, पशु तो हम आप पालते ही हैं, तो क्यों ना इस योजना का लाभ उठाते हुए पशुपालन करें, ताकि आम के आम और गुठलियों के दाम हो सकें।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, देखिए, खरीफ की बुआई का समय चल रहा है और हम आप बुआई में लगे भी होंगे, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर जैसी फसलों की। पर जानते हैं, घटती हुई जोत के कारण हमारे कुछ किसान भाइयों को इन फसलों से उतना लाभ नहीं होता जितना कि दूसरी फसलों जैसे सब्जियों की फसलों से होता है। इसलिए आज हम अपनी चौपाल में खरीफ में प्याज की फसल की तैयारी कैसे की जाए, इस विषय में जानते हैं लटूरी सिंह से।
2: भारत में प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं बिहार राज्य प्रमुख हैं। भारत से प्याज अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है, जैसे मलेशिया, UAE, कनाडा, जापान, लेबनान एवं कुवैत। यद्यपि प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जाता है। कंद निर्माण के पूर्व प्याज की फसल के लिए लगभग 21 सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त माना जाता है, जबकि सलग कंदों में विकास के लिए 15 से 25 सेंटीग्रेड तापक्रम उत्तम रहता है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवांशयुक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय एवं दलदली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। इसकी उन्नत

किस्में एग्री फाउंड डार्क रेड अच्छी किस्म है। यह किस्म उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। इसके शलाकंद गोलाकार 4 से 6 सेंटीमीटर आकार वाले होते हैं तथा परिपक्वता अवधि 95 से 110 दिन और उपज 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। यह किस्म खरीफ प्याज उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दूसरी एक और किस्म है N53। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है। किस्म की परिपक्वता अवधि 140 दिन तथा औसत उपज 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। एक और किस्म है भीमा सुपर, जो पिछेती खरीफ के लिए भी उपयुक्त है। यह किस्म 110 दिन से 115 दिन में तैयार हो जाती है तथा प्रति हेक्टेयर 250 से 300 कुंटल तक उपज देती है। इन किस्मों के अतिरिक्त और भी किस्में हैं, जैसे पूसा रिधि, अर्का, कल्याण, एग्री फाउंड, रोज, बसवंत 780, भीमा, सुब्रा। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। खेत की प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। इसके उपरांत 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के पश्चात पाटा अवश्य लगाएं, जिससे भूमि में नमी सुरक्षित रहे तथा साथ ही मिट्टी भुरभुरी हो जाए और भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर रोपाई करें। अतः कृषक भाई, प्याज के खेत को रेज्ड बेड सिस्टम से तैयार करें। प्याज की फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्याज की फसल में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर रुपाई से 1-2 माह पूर्व खेत में डालें। इसके अतिरिक्त नत्रजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने से अधिक उपज प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सल्फर 25 किलोग्राम एवं जिंक 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्याज की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक है। पौध तैयार करने के लिए मई जून में बुवाई करें तथा जुलाई अगस्त में रोपाई की जाए। प्याज अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाएगी। पौधशाला के चयनित खेत की पहले से जुताई करें। इसके पश्चात इसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालें। पौधशाला का आकार 3 मीटर लंबा तथा 1 मीटर चौड़ाई में क्यारी बनाकर तैयार करें। 2 क्यारियों के बीच 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें, जिससे कृषि कार्य आसानी से किए जा सकें। पौधशाला के लिए बलुई दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। पौध सैया लगभग 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचाई पर बनाएं। बुवाई के बाद बीजों को 2-3 सेंटीमीटर मोटी सतह जिसमें छनी हुई महीन मृदा एवं सड़ी गोबर की खाद से ढक दें। बीजों को हमेशा पंक्तियों में बुवाई करें। खरीफ मौसम की फसल के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें। इसके पश्चात क्यारियों पर कंपोस्ट, सूखी घास की मल्चिंग बिछा दें, जिससे भूमि में नमी संरक्षण हो सके। पौधशाला में अंकुरण हो जाने के बाद मल्चिंग हटा दें। किसान भाई, इस बात का भी ध्यान रखें कि पहली सिंचाई फुब्बारे से करें। खरीफ मौसम की प्याज के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। खरीफ मौसम हेतु पौधशाला सैया पर बीज की बुवाई 1 से 15 जून तक कर दें। जब पौध 45 दिन की हो जाए तो उसकी रुपाई कर देना उत्तम रहेगा। प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त करने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। प्याज के पौधे एक दूसरे के नज़दीक लगाए जाते हैं, इनकी जड़ें भी उथली रहती हैं, अतः खरपतवार नष्ट करने के लिए पेंडीमेथिलीन 2.5 से 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर खरपतवार नाशक पौधों की रुपाई के 3 दिन बाद 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरीफ मौसम की फसल में रोपण के बाद सिंचाई करना चाहिए, अन्यथा सिंचाई में देरी होने पर पौधे मरने की संभावना बनी रहती है। जब मानसून चला जाए उस समय सिंचाइयां आवश्यकता अनुसार करें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि शलाकंद निर्माण के समय पानी की कमी

0: कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्याज फसल की क्रांतिक अवस्था होती है। यदि अधिक वर्षा या अन्य कारण से खेत में पानी रुक जाए तो उसे शीघ्र निकालने की व्यवस्था करें, अन्यथा फसल में फफूंदी जनित रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। प्याज की फसल अक्टूबर नवंबर माह में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही प्याज की गांठ अपना पूरा आकार ले लें और पत्तियां सूखने लगें, लगभग 10-15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर दें और प्याज के पौधों के शीर्ष को पैर की मदद से कुचल दें, जिससे कंद ठोस हो जाते हैं। इसके बाद कंदों को खोदकर खेत में ही सुखा लें। प्याज की फसल के लिए कीट रोगों से बचाव आवश्यक है। इसमें थ्रिप्स एक कीट है जो प्याज की फसल को अधिक नुकसान देता है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके नियंत्रण हेतु नीम तेल आधारित कीटनाशियों का छिड़काव करें या इमीडाक्लोप्री कीटनाशी दवा की 1.25 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। एक और कीट इसको नुकसान पहुंचाता है प्याज की फसल को, माइट। इस कीट के प्रकोप के कारण पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु 0.05 थाइमेथोएट दवा का छिड़काव करें। एक रोग बैंगनी धब्बा इसमें और लगता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इन फफूंदी नाशक दवाओं में चिपकने वाले पदार्थ जैसे ट्राइटोन या साधारण गोंद अवश्य मिला दें, जिससे घोल पत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चिपक सके।
1: अभी हमारे लटूरी सिंह भैया जानकारी दे रहे थे खरीफ में प्याज फसल की तैयारी। तो उम्मीद है इस बार खरीफ का जो हमारा प्याज का रकबा रहेगा वो जरूर बढ़ेगा। आइए अब जान लेते हैं मौसम काल। तो साथियों, मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है, पर हमारे शहर आगरा में अभी बरसने में 2-3 दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले से तापमान जरूर कम हुआ है। अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो रहा 35 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 29 डिग्री सेल्सियस। साथियों, मौसम चाहे जो हो पर सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि हमारी छोटी सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी बिना देरी किए आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब श्रमिक श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल।

हमारे सभी भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। साथियों, आजकल शाम होते ही ना बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जो हमें आने वाले मानसून का संदेश देती हैं। कितना अच्छा लगता है ना इस खाली वक्त में चाय का प्याला हाथ में लेकर इन ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेना। लेकिन सोचिए, अगर हमें इन ठंडी हवाओं की जगह मिले गंदी और प्रदूषित हवा जिसमें दुर्गंध आ रही हो, क्या हम उन हवाओं का आनंद ले पाएंगे? क्या हम उन हवाओं में सांस भी ले पाएंगे? नहीं ना। लेकिन आजकल देश में कई जगहों का मंजर ऐसा हो चुका है जहाँ की हवा प्रदूषित हो चुकी है। शहरों में जगह जगह पानी भर जाता है, नालियों में गंदा पानी इकट्ठा रहता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखेंगे ना, तो नालियाँ चौक होने का, शहरों में जगह जगह गंदा पानी भरने का, कूड़े के ढेरों का लगातार बढ़ते रहने का एक बहुत बड़ा कारण आपको मिलेगा। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बिना सोचे समझे बड़े ही आराम से इस्तेमाल किए ही जा रहे हैं, और वो चीज़ है प्लास्टिक। साथियों, प्लास्टिक हमें सुविधा तो बहुत देती है पर कीमत बहुत भारी वसूलती है। एक छोटी सी पतली सी दिखने वाली पॉलिथीन, रंग बिरंगी सी, हमें लगता है क्या ही करेगी। लेकिन आपको पता है, इस पॉलिथीन का, इस प्लास्टिक का हमारे पूरे पर्यावरण पर कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव है। देखिए, पहला दुष्प्रभाव

है जमीन और पानी की मौत। प्लास्टिक ना गलती है ना सड़ती है, जो पॉलिथीन आज आप कचरे में फेंकेंगे वो 400 सालों तक वहीं उसी जमीन में पड़ी रहेगी और बारिश के पानी को जमीन के अंदर नहीं जाने देगी, जिससे जमीन के अंदर का पानी सूख जाएगा, फसलें खराब हो जाएंगी। नदियों नालों में प्लास्टिक फंसकर उन्हें जाम कर देती है और फिर थोड़ी सी बारिश में ही शहर तालाब बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है जानवरों की मौत। जितने भी आवारा गाय बकरी कुत्ते हैं वो सब अपना खाना कचड़ों में ढूंढते हैं और कई बार वो खाने के साथ प्लास्टिक भी खा लेते हैं और उस प्लास्टिक को वो पचा नहीं पाते। वो प्लास्टिक उनके पेट की थैली में फंस जाती है और वो जानवर धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सोचिए साथियों, जो गाय हमें दूध देती है हम उसी को प्लास्टिक खिला रहे हैं। प्लास्टिक का हमारी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक को हम दबा नहीं सकते, पानी में फेंक नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसे जलाएंगे भी ना, तो जलाने से इसमें इतना जहरीला धुआं निकलता है जो हमारे फेफड़े खराब कर देता है, अस्थमा बढ़ाता है और कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें उस जानलेवा धुएं से हो सकती हैं। और जो प्लास्टिक की बोतल में पानी रखकर धूप में हम उसे छोड़ देते हैं ना, उस पानी में जहर घुल जाता है और उस पानी को पीने से कैंसर तक का खतरा हो सकता है। सोचिए, ये प्लास्टिक हमारी सारी खूबसूरती को भी तबाह कर रही है। हमारा आगरा, हमारा ताज, हमारे बाग, हर जगह हमें प्लास्टिक के ढेर मिलते हैं। जब दुनिया भर से लोग इस खूबसूरत ताज के दर्शन करने आते हैं तो उन्हें ताज पहुंचने से पहले सड़कों के चारों तरफ क्या दिखता है? प्लास्टिक के ढेर। इसके कारण हमारा पर्यटन मर रहा है, हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। साथियों, प्लास्टिक शैतान नहीं है, शैतान तो हमारी आदत है, क्योंकि हमें लगता है कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमें आराम से मिल जाएं, सस्ते में मिल जाएं और उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दें, यानी एक बार इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये आदत हमारे पर्यावरण के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है ये हमें अब महसूस हो रहा है। तो हम क्या करें? देखिए साथियों, पहले के समय में भी ना, जब बड़े बूढ़े बाजार जाते थे तो घरों से झोले थैले अपने साथ लेके जाते थे। इस आदत को दोबारा अपनाइए। जब भी बाजार जाएं तो घर से कपड़े का थैला अपने साथ लेके जाएं और पॉलिथीन को पूरी तरीके से ना कहें। पानी की प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल इस्तेमाल करें। देखिए, स्टील की बोतल थोड़ी बहुत महंगी ज़रूर होती है, लेकिन वो बोतल आपको पानी जो प्लास्टिक में हम पीते हैं उससे होने वाली भयंकर बीमारियों से बचाती है। मिट्टी का बर्तन तो फिर सबसे अच्छे हैं ही, अगर आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपको कहीं पानी लेके जाना है तो प्लास्टिक से बचिए और उसकी जगह स्टील का इस्तेमाल कीजिए। अपने घरों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना शुरू कीजिए। ये हम कई बार सुनते हैं लेकिन इस आदत को अपनाते नहीं। हमें लगता है क्या ही हो जाएगा, सारा कचरा ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा किचन से निकलने वाला गीला कचरा है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी कि बहुत ही जल्द जब वो पर्यावरण में जाता है तो उसमें घुल मिल जाता है, लेकिन जब हम उसमें प्लास्टिक को मिला देते हैं तो प्लास्टिक ना तो खुद गलती है ना ही उस कचरे को गलने देती है। अगर हम प्लास्टिक को सूखे कचरे में डालेंगे तो वो रिसाइकिल हो सकती है और उससे कई अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, छोटी सी बात है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों को भी समझाइए कि यहाँ वहाँ इधर उधर सड़कों पर कचरा ना डालें, कचरा डालने की जो जगह है उसी जगह डालें, खासकर की प्लास्टिक और पॉलिथीन। साथियों, ठंडी हवा का मज़ा हम तभी ले सकते हैं जब वो साफ हो। यमुना के किनारे बैठकर ताज देखने का मज़ा तभी है जब यमुना साफ हो, यमुना में कोई प्लास्टिक या गंदगी ना तैर रही हो। प्रकृति ने हमें खुली हवा दी है, हमने उसे प्लास्टिक में बंद कर दिया, अब वक्त है उसे फिर से आज़ाद करने का। और साथियों, वक्त है आज के प्रश्न का भी।
देखिए, यूँ तो हम सब जानते हैं कि जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे

बहुत प्रदूषण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक को जलाने से कौन सी खतरनाक गैसें निकलती हैं? सोचिए, आप अपना जवाब सोचिए, तब तक हम इन ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं इस गीत के जरिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, अब वक्त है आज पूछे गए प्रश्न के जवाब का। पर आज का प्रश्न था कि जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो कौन सी खतरनाक गैसें निकलती हैं। साथियों, यूं तो प्लास्टिक जलाने से कई सारी खतरनाक गैसें निकलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गैस हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं, जैसे डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम इन गैसों के संपर्क में आते हैं तो ये हमें फेफड़ों और आँखों में जलन दे सकती हैं, अस्थमा या फिर कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हमें हो सकती हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक को जलाने से बचना चाहिए। और साथियों, आज है शुक्रवार और आज के दिन हम आपको सुनाते हैं कानूनी दांव पेचों से जुड़ी हुई वार्ता। और आज की कानूनी वार्ता है श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान। वार्ताकार हैं ज्ञानेन कुमार रावत।
2: किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ स्थापित उद्योग धंधों से प्राप्त उत्पादन पर निर्भर करती है। उद्योग धंधों में नियोक्ता द्वारा कर्मकारों को नियुक्त किया जाता है तथा उद्योग धंधों के कुशल संचालन तथा नियोजक कर्मकार के मध्य संबंधों की सीमाओं, झगड़ों को निपटाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बनाया गया, जिसकी धारा 1 में वर्णित है कि यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाएगा तथा इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा तथा यह 1 अप्रैल 1947 से प्रभावी होगा। इसके पश्चात इसकी धाराओं में परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। मुख्यतः धारा 22 हड़ताल और तालाबंदी का निषेध करती है, जिसके द्वारा संविदा के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति जनोपयोगी सेवाओं में कार्यरत है हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। नियोजक को हड़ताल पर जाने से 6 सप्ताह पूर्व एक सूचना देनी होगी तथा ऐसी सूचना देने के 14 दिवस के अंदर या हड़ताल के समाप्त होने के पहले या समझौते की कार्यवाही के निष्कर्ष के पश्चात ही हड़ताल कर सकेंगे। इसी प्रकार तालाबंदी के लिए नियोजक को अपने कर्मकार को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व एक नोटिस देना होगा तथा ऐसे नोटिस के 14 दिवस के अंदर अथवा तालाबंदी से पूर्व या समझौते की कार्रवाई के निष्कर्ष के 7 दिन पश्चात ही तालाबंदी कर सकते हैं। यदि हड़ताल या तालाबंदी

पहले से है तो किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 23 में प्राविधान दिया गया है कि यदि कोई भी नियोजक एवं कर्मचारी समझौता की कार्रवाई के विचाराधीन रहते हुए हड़ताल एवं तालाबंदी करेगा वह अवैध होगी। श्रम न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्रवाई लंबित होने की दशा में अथवा निर्णय के बाद 2 माह की अवधि से पूर्व हड़ताल नहीं करेंगे। मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान हड़ताल और तालाबंदी एवं निष्कर्ष के 2 माह तक, जब तक इसका प्रकाशन नहीं हो जाता, हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकते हैं। धारा 24 विधि विरुद्ध हड़ताल और तालाबंदी के बारे में बताती है। धारा 22 अथवा धारा 23 के प्रावधानों के उल्लंघन में घोषित हड़ताल एवं तालाबंदी अवैध होगी। यदि हड़ताल या तालाबंदी पहले से चल रही है तो अवैध नहीं होगी। धारा 25 अवैध हड़ताल अथवा तालाबंदी के लिए आर्थिक सहायता करने को सभी लोगों को निषेधित करती है। धारा 25 से किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहां 50 से कम व्यक्ति कार्य करते हैं वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा, तथा जो व्यक्ति सामयिक कार्य करते हैं उन पर भी ये प्राविधान लागू नहीं होंगे। धारा 25 बी में लगातार सेवा को परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति लगातार सेवा में माना जाएगा यदि वह किसी हड़ताल या तालाबंदी या बीमारी की छुट्टी या अधिकृत छुट्टी से बाहर रहा है। धारा 25 सी किसी कर्मकार को 1 वर्ष में 45 दिन से अधिक के अवकाश पर रहता है तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी कर्मकार के एवज में लगाया गया है और उसका नाम मस्टर रोल में है तो वह भी इस प्रावधान का लाभ नहीं ले सकेगा। धारा 25 डी बताती है कि प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मकारों का मस्टर रोल रखना अनिवार्य होगा। धारा 25 ही बताती है कि यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति की एवजी में कार्य करने के लिए मना करता है तो वह भी मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा। धारा 25 एफ बताती है कि किसी कर्मचारी के छटनी का प्रावधान क्या है, जिसके द्वारा नियोजक कर्मचारी को 30 दिन का नोटिस देगा या 1 माह का अग्रिम वेतन देगा तथा नोटिस में हटाए जाने का कारण भी देगा। यदि नियोजक का स्थानांतरण किसी कारणवश होता है तो कर्मकार मुआवजे का अधिकारी होगा। धारा 25 एफ एफ फर्स्ट प्रथम में दिया है कि यदि नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करता है तो उसे कर्मकार को नोटिस व मुआवजा दोनों ही देने होंगे। धारा 25 जी बताती है कि किसी कर्मकार के छटनी का प्रावधान क्या है। धारा 25 एच बताती है कि छटनीशुदा कर्मचारी का पुनर्नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है। धारा 25 एल में परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के तहत फैक्ट्री, खान और प्लांटेशन आदि आते हैं। धारा 26 अवैध हड़ताल या तालाबंदी के लिए 1 माह के कारावास व ₹50 जुर्माना की सजा का प्राविधान करती है। नियोजक के लिए भी 1 माह की सजा व ₹1,000 जुर्माना का प्रावधान करती है। धारा 27 बताती है कि अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए दुष्प्रेरण करने पर 6 माह की सजा या ₹1,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 28 अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए आर्थिक सहायता देने पर 6 माह की सजा या ₹1,000 जुर्माना या दोनों का प्राविधान करती है। धारा 29 अवार्ड या निर्णय के उल्लंघन पर 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों का प्राविधान करती है। यदि लगातार इस प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो ₹200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाने का प्राविधान है। धारा 30

0: गोपनीय सूचनाएं देने पर 6 माह की सजा और ₹1,000 जुर्माने का प्राविधान करती है। धारा 30A बिना सूचना दिए प्रतिष्ठान बंद किए जाने पर 6 माह की सजा तथा ₹5,000 का जुर्माना का प्राविधान करती है। धारा 31 विभिन्न प्रकार की घटनाओं के लिए सजा का प्रावधान करती है जो इस अधिनियम में नहीं दी गई हैं, मैं 6 माह की सजा और या ₹1,000 जुर्माने का प्रावधान करती है। धारा 32 प्रकीर्ण के नाम से दर्ज है जिसमें कंपनी द्वारा किए गए अपराध को बताया गया है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कानूनी वार्ता, श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान, और वार्ताकार थे ज्ञानेंद्र कुमार रावत। साथियों, आज अपनी चर्चा में हमने बात की प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में कि कैसे प्लास्टिक

कानूनी वार्ता, श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान, और वार्ताकार थे ज्ञानेंद्र कुमार रावत। साथियों, आज अपनी चर्चा में हमने बात की प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में, कि कैसे प्लास्टिक हमारे आसपास के सारे वातावरण को प्रदूषित कर देती है, हमारी हवा को जहरीला बना देती है, और इस जहरीली हवा में सांस लेने के बाद कहीं ना कहीं हम सबको ये महसूस होता है कि क्यों ना कुछ वक्त ऐसी जगहों पे बिताया जाए जहाँ की हवा शुद्ध हो, जहाँ का पानी निर्मल हो, और वो जगह देखने में आँखों को सुकून पहुँचाए। और ऐसी जगह के लिए हम हमेशा पहाड़ों को ही तो चुनते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में यूं तो हजारों मंदिर हैं, लेकिन महादेव के 3 ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही खास हैं, और वो 3 शिव मंदिर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में विराजमान हैं। ये 3 शिव मंदिर हैं जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर तीनों ही प्राचीन शिव मंदिर हैं, जो अपनी मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों और आध्यात्मिक शांति के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला मंदिर है जागेश्वर, जो अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है। कहते हैं यहाँ 124 छोटे बड़े प्राचीन मंदिर हैं। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे, और तब से यहाँ की हवा में शांति है। यहाँ का महामृत्युंजय मंदिर सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर है। दूसरा है बागेश्वर धाम, जो सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा है। यहाँ बागनाथ मंदिर है। कहते हैं शिव जी यहाँ बाघ के रूप में आए थे। उत्तरायणी मेले में यहाँ लाखों लोग आते हैं। नदी का पानी इतना साफ है कि उसका तल तक दिखता है। यहाँ की मिट्टी पर पैर रखते ही मन पवित्र हो जाता है। और तीसरा है मुक्तेश्वर धाम। नैनीताल से थोड़ा ऊपर 2280 मीटर की ऊंचाई पर 350 साल पुराना शिव मंदिर। यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचुली। कहते हैं यहाँ शिव जी ने राक्षसों का वध किया था। यहाँ की ठंडी हवा सीधे सीने में उतरती है। देवभूमि की हवा में अस्थमा की दवा है, मन की शांति है और आत्मा की मुक्ति है। तो अगली छुट्टी में टूरिस्ट वाली भीड़ में नहीं, महादेव के इन 3 धामों का दर्शन कीजिए, और महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे इसी उम्मीद के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। रखिए अपना ख्याल और दीजिए अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया को इजाजत। नमस्कार। अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7 बजे है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक

0: Ministry of Panchayati Raj today organized a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on the recommendations of the 16th Finance Commission. The ministry informed that 4,35,236 crore rupees have been recommended for rural local bodies under the 16th Finance Commission, marking an increase of around 84% over the comparable five-year allocation under the 15th Finance Commission. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. And in the FIFA World Cup, Australia will take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. In other round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami Gardens, while Colombia will clash with Ghana at Kansas City Stadium tomorrow morning. Switzerland, Spain, Portugal, Belgium, the United States, England, Mexico, France, Norway, Canada, Morocco, Brazil and Paraguay have already advanced to the round of 16. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय कुमार चतुर्वेदी की वार्ता, पर्यावरण की दुश्मन प्लास्टिक।
2: पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि और आवरण शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ घेरा होता है, अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ चारों ओर से घेरा होना है। सामान्यतया ऐसी वस्तुएं जो जीवधारियों और निर्जीव के चारों ओर आवृत्ति बनाए हुए हों पर्यावरण कहलाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक, रासायनिक, जैविक, सांस्कृतिक दशाओं की अनुभूति जो मानव के चारों ओर व्याप्त हो और प्रभावित करती हो पर्यावरण कहलाती है। प्रकृति में वायु, जल, ताप, भूमि, आकाश, वनस्पति, जीव पाए जाते हैं। इनमें निश्चित रूप से संतुलन बना रहता है, किंतु जब इनकी मात्रा में कमी या अधिकता हो जाती है तब संतुलन बिगड़ जाता है, जो जीवन को प्रभावित करता है। इससे हानिप्रद परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इन अवांछनीय पदार्थों को प्रदूषक और इनके द्वारा प्रदर्शित क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन जो वनस्पतियों, जीवधारियों, जीवन परिस्थितियों, सांस्कृतिक धरोहर को हानि पहुँचाते हैं प्रदूषण कहलाता है। प्रकृति और मानव ईश्वर की अनमोल कृति है। अनादिकाल से प्रकृति मानव की पाठशाला रही है। सदैव प्रकृति आवश्यक पदार्थों को प्रदान करती रही है और आज भी कर रही है, परंतु उपभोक्ताकारी मानव ने अपने भौतिक सुखों को सर्वोपरि मानकर प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर अपनी प्रतिष्ठा और अस्तित्व को दांव पर लगा दिया। इससे संपूर्ण पर्यावरण आहत हुआ है। आज इसके दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट, अनियोजित शहरीकरण, अत्यधिक और अनियोजित औद्योगिकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, वनों जंगलों के क्षेत्र में कमी होना, कंक्रीट और सीमेंट के जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ना समस्या को हल करने के स्थान पर समस्या को बढ़ा रहे हैं। मानव के अनियोजित विकास प्रक्रिया का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण है, जो हानिकारक है। आज इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसका आधार प्रदूषण का संक्रमण है, जो प्रकृति के विभिन्न अवयवों पर होता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। प्रदूषण विशेष पदार्थ के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण। जब प्लास्टिक वातावरण में एकत्रित होती रहती है तब अपने दुष्प्रभावों को प्रदर्शित कर प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्लास्टिक का आविष्कार वैज्ञानिकों ने मानव

0: के सुख सुविधा और कल्याण के लिए किया था, परंतु मानव ने प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग कर वातावरण में इधर उधर फेंक देने से पर्यावरण प्रदूषित हुआ। आज पृथ्वी ही नहीं अपितु समुद्र भी प्लास्टिक की उपलब्धता से व्यथित है। समुद्री वनस्पति और जीवों का जीवन संकट में है। प्लास्टिक में विशेष गुण पाए जाते हैं, इस कारण प्लास्टिक की लोकप्रियता अधिक हो गई। प्लास्टिक हल्की, आकर्षक, ताप, विद्युत, कंपन प्रतिरोधी होती है। प्लास्टिक पर अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं होता है। प्लास्टिक का उपयोग गृह उपयोगी वस्तुओं से लेकर कृषि, भवन निर्माण, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जा रहा है। आज प्रत्येक घर में प्लास्टिक का आधिपत्य है। घर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां प्लास्टिक न हो। घर के रसोई घर में खाद्य पदार्थों को रखने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। स्नान घर में बाल्टी, मग, स्टूल का प्रयोग किया जाता है। पठन पाठन कक्ष में कूलर और एसी उपयोग में लाए जाते हैं, जिनकी बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है। पठन पाठन कक्ष में मेज, कुर्सी, स्टूल का भी प्रयोग होता है। भोजन कक्ष में बर्तन, बाउल्स, ग्लास भी प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं अधिकतर प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों एरिक फॉसेट और रेजिनॉल्ड गिब्सन ने पॉलीथीन का आविष्कार किया। पॉलीथीन दो प्रकार की पाई जाती है, एक कम घनत्व वाली, दूसरी अधिक घनत्व वाली। कम घनत्व वाली पॉलीथीन से बनी थैलियाँ बहुतायत में उपलब्ध हैं। बाजार से कोई भी वस्तु लाने में इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग एक ही बार किया जाता है और फिर फेंक दी जाती हैं। कूड़े के ढेर में, नाली नालों में, बहुतायत में पड़ी रहती हैं। नाली नालों में कचरा बनकर सीवरेज व्यवस्था को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे गंदगी चारों ओर फैल जाती है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। फल सब्जियों के छिलके इन थैलियों में भरकर फेंक देते हैं। पशु थैली सहित इन्हें खा जाते हैं। पॉलीथीन पेट में एकत्रित होती रहती है, जो सांस को प्रभावित करती है। मछलियों को भी खाना थैली सहित डाल देते हैं। मछली भी थैली सहित खाना खाकर मर जाती हैं। इससे बचना चाहिए। जल जीवन के लिए आवश्यक है। आजकल जल भी प्लास्टिक की बोतलों में मिलता है। फ्रेंडोलिया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने सोध कर बताया कि जल में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। जल में जो प्लास्टिक पाई गई वह पॉलीप्रोपाइलीन है। इस प्लास्टिक को ढक्कन बनाने में काम में लाते हैं। प्लास्टिक में अवगुण भी पाए जाते हैं। प्लास्टिक का विखंडन सरलता से नहीं हो पाता। प्लास्टिक सतह रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं पाती। यदि प्लास्टिक को मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग में अवरोधक बन जाती है। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देती है। प्लास्टिक जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न करती हैं, अतः प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कम घनत्व वाली प्रोपेलीन और पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग पूर्ण रूप से बंद करना होगा। ऐसी प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए जिसे रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग में ला सकें। पॉलीथीन बैग के स्थान पर कागज, जूट, कपड़े के थैले का उपयोग करना हितकर होगा। बोतलें कांच के ही उपयोग में लाई जाएं। अचार और खाने की वस्तुएं रखने के लिए कांच के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करें या न करें, वनों और जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। तभी पर्यावरण और मानवता को बचा सकेंगे। तभी विकास सार्थक होगा, अन्यथा विनाश निश्चित है।
1: विविधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कुमार चतुर्वेदी की वार्ता, पर्यावरण की दुश्मन प्लास्टिक। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की खड़ी में संध्या के 7:18 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
4: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
3: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
5: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। विकसित उत्तर प्रदेश,

0: सिर्फ भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
2: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
1: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
4: यूपी का APY स्कीम में काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 9,25,00,000 से ज्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
1: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणित

संवितरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम अपने देश के विषय में और देश से संबंधित जो देश की माटी है उसके विषय में बात करते हैं। और चूंकि आज प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है, तो इस अवसर पर कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता, स्वच्छ भारत से प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना। डॉक्टर आनंद रॉय से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह। आइए सुनते हैं।
2: स्वच्छता केवल सफाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। आज हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक कचरा हमारे हर जगह को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान को प्लास्टिक मुक्त भारत के लक्ष्य से जोड़ना ये समय की ज़रूरत बन गया है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण संरक्षण के अभियानों से जुड़े डॉक्टर आनंद राय जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जैसे कि हम स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने में बहुत हद तक जिम्मेदार रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने, आप इसे प्लास्टिक मुक्त भारत के अभियान से किस तरह जुड़ा हुआ पाते हैं?
3: प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जो है वो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पहले मैं अगर उसके स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करूं तो मैं कई साल तक ये आगरा का स्वच्छ भारत मिशन का आगरा का कन्वीनर रहा और उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर रहा और अब उसको अपनी इंडिया राइजिंग संस्था है उसके जरिए उसका ही फॉलो कर रहा हूँ सारा मिशन। कुछ समय तक मैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम

0: नाम का भी ब्रांड एम्बेसडर था आगरा ग्रेटर का। तो मुझे जो पर्यावरण है वो मुझे बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है,
1: जी
0: और ये मेरे लिए क्या हर मानव के लिए, हर इंसान के लिए पर्यावरण का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि लगातार मानव और पर्यावरण का इंटरेक्शन होता है और बहुत दोनों एक दूसरे को।
1: एक दूसरे के पूरक हम कह सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी तो जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन की बात है, तो अगर हम 2014 से पहले चले जाएं, उस समय का जो हालात थी या अब के जो हालात है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है जो मैं महसूस करता हूँ खुद। लोगों में जागरूकता तो बढ़ी है निश्चित रूप से, जो डिस्पोजल है कूड़े का वो स्मार्ट हो गया है पहले से, जिसमें नगर निगम का भी अच्छा योगदान है, और लोगों में ये बात आई है कि अगर हम अपने घर को साफ़ रखते हैं तो घर के आसपास भी साफ़ रखें, बेहतर रहेगा, सुंदर लगता है, स्वस्थ है और बेहतर है।
1: सरकार के जो अभियान हैं, छोटे छोटे अभियान, लेकिन अब इन्होंने इतनी जागरूकता बढ़ा दी है। सुबह कूड़े की गाड़ी आती है और वो जब एक उसमें गाना बजता है, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये अवेयरनेस लोगों में उसके सेग्रीगेशन को लेके, इसमें भी बहुत जागरूकता आई है। लेकिन अगर हम बीते दशक की बात करें या 2 दशक की बात करें, तो यहाँ पर प्लास्टिक का जो प्रदूषण है वो बहुत बड़ा है, और वो इतना व्यापक तौर पर बड़ा है कि पर्यावरण के लिए आज एक बड़ी समस्या बन चुका है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। आप उसको किस तरह से पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती मानते हैं?
0: मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और ये सच्चाई है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है इस पृथ्वी के लिए, जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए। और हमने इसको जिस तरह से इस्तेमाल करना था, जिस तरह से इसके साथ व्यवहार करना था, वो हमने शुरू से ही नहीं किया है, और इसमें इंडिविजुअल्स की भी प्रॉब्लम है और जो हमारी इस समय नीति नियंता है, जो उनका भी एक मैं देखता हूँ थोड़ा सा हल्का उसके प्रति एटीट्यूड है वर्ल्ड वाइड। जो किया जाना चाहिए वो नहीं हो सका है अब तक। और जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो 50 माइक्रॉन्स से नीचे के प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, लेकिन आप अगर बाजार जाएं तो आपको 50 माइक्रॉन से नीचे के पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स मिलेंगे, और वो बहुत प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, वो ड्रेन्स चोक करते हैं, वो लैंडफिल साइट्स में जाएं आप तो वही दिखाई पड़ते हैं, और कूड़े पर और ज़मीन में अगर जाएं तो आप उसे जहरीला बना देता है, वो पानी में जाए उसे जहर कर देता है, जला देते हैं लोग मुक्ति के लिए तो वो पूरी हवा को जहरीला बना देता है, तमाम लंग डिजीज़ और कुछ बहुत कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें और असरकारी तरीके से कार्य करने के दोनों तरफ, नागरिक और
1: इंडिविजुअल के तौर
0: सिस्टम,
1: पे भी, और जो सिस्टम है
0: हाँ,
1: हमारा,
0: करने
1: सरकार
0: की
1: है,
0: ज़रूरत है।
1: दोनों तरफ से ज़रूरत है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आपने बात की, बहुत एक चुनौती है सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी। तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं?
0: चुनौती तो है, लेकिन बहुत सी चुनौतियों से हम लड़े हैं और उस पर विजय पाई है, मानवता ऐसे ही करती है। तो लेकिन यह है कि एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए व्यवस्था में भी और इंसानों में भी, हम नागरिकों में भी, कि हमें इससे पार पाना है, कोई रास्ते निकालने हैं जिससे कि इससे मुक्ति मिले, क्योंकि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाला समय मानवता के लिए क्या, समूचे जो जीवन है पृथ्वी पर उसके लिए भारी पड़ने वाला है।
1: अक्सर लोग ऐसा होता है कि प्लास्टिक को एक कूड़े की समस्या मान लेते हैं, लेकिन इसका जो असर है वो हमारी मिट्टी पे भी पड़ता है, हमारे जल पे भी, आपने बताया, पड़ता है, चाहे वो पशु हो चाहे मानव हो, हर किसी के स्वास्थ्य पे इसका कुप्रभाव आज नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल सही बात है, और अगर हम मानव को लें तो पॉलीथीन या प्लास्टिक जिसे भी आप कहें, तो उसमें से लगातार केमिकल्स रिसते हैं, एक समय के बाद केमिकल रिसने लगते हैं, वो केमिकल्स बहुत पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो हमारी सिस्टम में जाते हैं तो वो हार्ट डिजीज़ कर सकते हैं, वो लंग अगर जलाया गया तो लंग डिजीज़ हो जाती है। ये पाया गया है अभी रिसेंटली कि वो हमारे ब्लड में मिला, माइक्रो प्लास्टिक,
1: जी
0: छोटे छोटे कण प्लास्टिक के हमारे ब्लड में चले गए और सेलुलर लेवल पर पाए गए हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, फर्टिलिटी गिराते हैं, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसे कंप्रोमाइज़ करते हैं, और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी कंप्रोमाइज़ करते हैं।
1: आप चूंकि ऐसे अभियानों के, अपनी संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं, अब तो आपने बहुत सारी रिसर्चेज भी होती हैं, उनके
0: जी
1: भी आप हिस्से रहे हैं,
0: जी
1: तो क्या मतलब आपको लगता है हमारे यहाँ, जैसे यमुना एक नदी है, जीवन दायिनी नदी है
0: जी
1: हमारे आगरा के लिए,
0: जी
1: उसका भी लेवल देखें तो बहुत हद तक

0: जो है गिरता जा रहा है, पानी दूषित है, तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें।
1: जी कर रहा है। एक बार अभी कुछ साल पहले खुदाई की गई थी उसके तले में, जमुना के यहीं शहर की लिमिट में,
0: जी
1: तो पाया गया कि 8 फीट तक प्लास्टिक, पॉलीथीन और चमड़े की कतरन बुरी तरह से जमी हुई थी। तो इससे यमुना उथली हो गई है और वहाँ पानी कम हो गया है, बारिश कम हो रही है, थोड़ा सा ग्लेशियर लेवल पर भी असर आया है। और फिर जब उथला हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरा ये हुआ है कि जो पानी रिसता था ज़मीन के अंदर, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाता था, वो भी वहाँ से बंद हो गया है। ये इसका नुकसान हमें
0: तो
1: झेलना
0: हमारा
1: पड़ा है।
0: वाटर लेवल भी डाउन जा रहा है।
1: जी
0: हमारी जो आजकल की जीवन शैली है, जिसमें हम सुविधावादी या उपभोक्तावादी जीवन शैली अपनाने लगे हैं, और हमारी प्लास्टिक पर निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, तो क्या आपको नहीं लगता है कि स्थानीय तौर पर या पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के तौर पर कुछ और विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए?
1: बिल्कुल बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यही आज नीड ऑफ द आवर है। और कुछ पॉलीथीन बैग की जगह कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं जो उतनी आसानी से नहीं बन पा रही हैं, उतनी सस्ती नहीं बन पा रही हैं, उतनी मजबूत नहीं है कि वो पॉलीथीन को
0: रिप्लेस कर
1: रिप्लेस
0: पाए।
1: कर सके। लेकिन वैज्ञानिक हैं, वो लगातार लगे हुए हैं क्षेत्र में, अगर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी कोई चीज़ मिले जो बायोडिग्रेडेबल हो, ज़मीन में जाके गल ख़त्म हो जाए और उसके ये हार्मफुल इम्पैक्ट सारे के सारे ना हों, ऐसी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन नागरिक के लेवल पर अगर हम देखें तो मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा थैला लेके चलता हूं कपड़े का।
0: जी
1: जी, और जब अगर मुझे पता है कि मुझे ख़रीदारी करने ही जाना है तो मैं जो मेरे घर में एग्जिस्टिंग पॉलीथीन है, उस 4, 5, 7 पॉलीथीन उसी थैले में रख के ले जाता हूँ, और जब ख़रीदारी कर लेता हूँ तो बाकायदा लटका के भीड़ में चलता हूँ। आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट ये कोई क्लास या किसी उसका नहीं है, ये मानव मात्र के लिए बहुत जरूरी आज हो
0: ये
1: गया है।
0: आपको इंडिविजुअल लेवल पे समझना पड़ेगा कि ये जो कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक पोल्यूशन में,
1: जी
0: वो हर किसी का है हम में से, और हमको इंडिविजुअली इसको कहीं ना कहीं कर्टेल करने की
1: करना ही
0: ज़रूरत
1: पड़ेगा।
0: है।
1: जी
0: और वो तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे हम
1: जी
0: उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये शायद हम में से हर किसी को सोचने की ज़रूरत है।
1: जरूरत है।
0: आपने बात की कि ये तो चलो इंडिविजुअली, लेकिन जो प्लास्टिक कचरे का सेग्रीगेशन है या उसकी रिसाइकलिंग है या उसका, जैसे आपने कहा कि रीयूज है,
1: जी
0: उस डायरेक्शन में अगर मैं जानना चाहूँ तो इंडिविजुअल तौर पे क्या वो तरीके हो सकते हैं?
1: तरीका एक तो आपने बोला ही, रीयूज है। जैसे मैं करता हूँ,
0: जी
1: पॉलीथीन जो आ गए उन्हें रखता हूँ और फिर दोबारा से उसी में सामान खरीद के ले आता हूँ, फिर उन्हें यूज़ कर लेता हूँ। एक ये है। रिसाइकल की बात अगर जहाँ तक है और मेरा जो ज्ञान है वर्ल्ड वाइड, इंडिया और पूरा वर्ल्ड, तो मैंने पाया है कि 30% से कम प्लास्टिक पॉलीथीन रिसाइकल हो पा रहा है।
0: अच्छा,
1: जी बिल्कुल,
0: 70% जो है वो पोल्यूशन कर रहा है।
1: लैंडफिल साइट में है, समुद्र में डंप किया जा रहा है। समुद्र में बताया कि 40,000 के करीब तरह तरह के प्लास्टिक 1 किलोमीटर की रेंज में कोस्टल एरिया में पाए गए एक बार सर्वे करने पर। आप समझ सकते हैं उसका क्या असर होगा पृथ्वी पर और समुद्र में। तो ये है। और बाकी का जला दिया जाए, 28% जो डंप होता है उसमें से 28% जला दिया जाता है,
0: वो और ज्यादा
1: वो
0: हानिकारक है।
1: बेहद
0: हाँ
1: खतरनाक हो जाता है, फिर बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इंडिया डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड नेशन भी है और डेवलप्ड नेशन भी है, जैसे अमेरिका और यूरोप। तो अमेरिका और यूरोप में भी यही स्थिति है। आप सड़कों पर तो कूड़ा नहीं पाएंगे, प्लास्टिक पॉलिथीन नहीं पाएंगे, बिल्कुल साफ मिलेगा आपको। लेकिन उनकी असली सच्चाई ये है कि वो भी 70% ऑफ देयर दिस प्लास्टिक इन पॉलिथीन दे आर डंपिंग समवेयर, मे बी वो अंडर डेवलप्ड नेशन में भेज देते हैं, ये भी करते हैं वो। तो ये ही पृथ्वी की आज सच्चाई है।
0: और हो सकता है कि वो, चूंकि 1/3 हिस्सा तो हमारा समुद्र है,
1: जी
0: उसमें डंप किया जा रहा हो।
1: जी लेकिन वो है तो पृथ्वी पर ही।
0: बिल्कुल, अगर वो यूज हो रहा है, दैट हैज टू फाइंड ए प्लेस टू डंप ऑल्सो।
1: डेफिनेटली, जैसे ग्रेन बनाया जाता है, प्लास्टिक का ग्रेन बना के दोबारा से उसको मोल्ड कर लिया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अभी 30% से कम ही कर रहे हैं इसको ये।
0: तो जैसे आपने कहा कि उसको, एक तो बेहतर ये है कि उसका यूज़ कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए,
1: जी
0: दूसरा ये है कि आप उसको रीयूज़ करें, पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं, और रिसाइकलिंग की एक बात है। ये जो एक थ्योरी है वो व्यवहार में कैसे उतारी जाए?
1: व्यवहार में मैं देखता हूँ बहुत जगह मुझे बुलाया जाता है जहाँ पर संस्थाएं थैले बांटती हैं, कपड़े के थैले, जूट के थैले बांटती हैं।
0: जी
1: लेकिन जब मैं उसको फॉलो अप करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो घर में ही कहीं ना कहीं ले जाके रख दिए जाते
0: कोने
1: हैं।
0: में पड़े
1: दे आर
0: रहते
1: नॉट
0: हैं।
1: यूज्ड एक्चुअली, दे आर नॉट यूज्ड। तो लोगों को ये अच्छे से समझाना पड़ेगा किसी भी तरह से कि भाई

0: आप उसको इस्तेमाल करिए, अपने खरीदिए, अपने बनवाइए, इस्तेमाल करिए, अगर जीवन अपना और अपने आने वाली जनरेशन का बचाना है।
1: इवन यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे अभियान होते हैं जहाँ पर इस तरह का, वहाँ पे भी आपको पानी जो सर्व किया जाता है वो भी प्लास्टिक बोतल में ही किया जाता है। तो ये जो हम एक दोहरे मापदंड अपनाते हैं, इनको किस तरह से हम निगेट कर सकते हैं?
0: हाँ, मैं मुझे जब जैसे या तो मैं प्यास से मर रहा हूँगा तो मैं बोतल से पानी पी लूँगा, लेकिन अगर मैं रुक सकता हूँ तो मैं कभी भी बोतल एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बोतल के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं, पीने पर वो आपके एसिमिलेट हो जाते हैं, ब्लड और सेल तक, सेलुलर लेवल तक चले जाते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं जगह जगह, वो एक कारण होता है, ट्रिगर होता है कैंसर का। अभी मैं एक हायर लेवल के बैंक ऑफिसर के पास गया था तो उन्होंने मुझे बोतल दी, मैंने कहा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैं इसके खिलाफ अभियान चलाता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ कुछ करना तो चाहिए। तो एक हफ्ते के अंदर उन्होंने उनके अंडर में जितनी ब्रांचेस आती थी सब जगह पे स्टील की बॉटल अपने एम्प्लॉयज़ को मुहैया कराई, उन पर उनके नाम लिखकर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आदमी इतना जागरूक है, सिस्टम को ही यूज़ कर रहा है लेकिन कर तो रहा है कुछ।
1: कुछ ना कुछ हमको इनिशिएट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा,
0: हाँ जी,
1: तब जाके हम परिवर्तन की उम्मीद कहीं
0: कर
1: सकते
0: सकते हैं जी।
1: ऐसा नहीं है कि हमारे सरकारी प्रयास ही या सरकारी अभियान ही इसको सफल बना सकते हैं। कोई भी अभियान हो, सफल तभी हो सकता है जब उसमें जन भागीदारी हो।
0: सर्टेनली
1: तो
0: सर्टेनली
1: जन भागीदारी किस तरह से हो सकती है, क्योंकि वही है जो इसके अभियान की सफलता की कुंजी बन सकता है।
0: मुझे लगता है कि जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है तो अंदर से संभालता है, बाहर से मारता है उसे, नागरिकों को भी इसी तरह की जरूरत है, क्योंकि हम सुविधा भोगी हैं, हमें अगर हमारे ऊपर थोड़ा बहुत भी कंट्रोल ना किया जाए तो हम अपने हिसाब से स्वच्छंदता से जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें बढ़ावा भी दिया जाए और हमारे ऊपर सख्ती भी की जाए। सख्ती बहुत ज़रूरी है, अगर सख्ती होगी
1: कहीं ना कहीं वो संतुलन बनाने की ज़रूरत है,
0: डेफिनेटली।
1: क्योंकि ये एक ऐसा मसला है शायद हम में से कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन उस पर कितना हमारा नियंत्रण हो सकता है ये शायद हम तय कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है।
1: आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअल, चलिए ठीक है इंडिविजुअल तो कोशिश मुझे नहीं लगता है कि उतनी बेहतर तरीके से हो पाती है, बहुत सारे जो अभियान चलते हैं या जो आजकल का डिजिटल ज़माना है उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आपको रन करते हुए मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो सामुदायिक तौर पे हों, चाहे वो इंडिविजुअल तौर पे हों, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू हों, बट आपको लगता है कि इन अभियानों का कुछ इम्पैक्ट एक कॉमन पर्सन पे पड़ता है?
0: जी बिल्कुल, मैं सोशल एक्सपेरिमेंट किया है पीछे, एक हम लोगों ने शरबत, एक खास दिन था, धार्मिक दिवस था कुछ
1: जी,
0: तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने स्टॉल लगा के सड़क किनारे और ड्रिंक्स बनाकर, आई मीन शरबत बना के लोगों को पासर बाय को सर्व किए और एक वहाँ पर ड्रम रख दिया। दो एक बार कहना पड़ा कि आप ग्लास को ड्रम में डालें। उसके बाद मैंने देखा कि मोर देन 70% ऑफ द गाइस उन्होंने अपना जो ग्लास था उसको ड्रम में ड्रम किया। तो ये पहले मैंने, सालों पहले मैंने कभी नहीं देखा, लोग यूं ही उड़ाते थे और पूरी सड़क को गंदा कर देते थे, जो प्रसाद होता है तो और भी ज़्यादा गंदा करता है, लेकिन थोड़ा इस लेवल पर मैंने देखा है कि लोगों के ये विचार, इसको मैं स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ता हूँ जो लगातार टीवी पर रेडियो पर आता है और तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर कुछ आया तो है।
1: वो जागरूकता का कहीं ना कहीं एक अंश कहीं बैक ऑफ द माइंड तो चलता है
0: जी बिल्कुल, और उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये समझता हूँ मैं,
1: क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने इर्द गिर्द, त्योहारों का देश है हमारा भारत, हर जगह आपको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, हर समय पे कुछ ना कुछ ऐसे उत्सव जलसे होते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर सामुदायिक तौर पर आपको प्रसाद के तौर पर या भोजन उपलब्ध कराया जाता है, और वहाँ पर ऐसे जो प्लास्टिक्स हैं उनका बहुतायत में उपयोग होता है, और जो जब वो प्रोग्राम या कोई भी कार्यक्रम ख़त्म होता है उसके बाद वहाँ नज़ारा अपने आप में अपनी कहानी कहता है, तो ऐसे जगहों पर उनको बताए जाने की ज़रूरत है, उनको जागरूक किए जाने की ज़रूरत है कि इसके बाद जो है आपको उसका निस्तारण किस तरह से करना है।
0: जी बिल्कुल, अभी मैंने आपसे बताया शरबत वाले मामले में हमारा शुरू का थोड़ा सा प्रयास, फिर वो एक

0: की उस समय की परंपरा बन गई और लोगों ने उसे ओबे किया, मैक्सिमम लोगों ने। तो अगर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो उसको कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दें तो वो उसी तरह से बिहेव करेंगे आने वाले, और ये फिर स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीरता है या उसके समाधान हैं या जो पीपल पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसकी जो आवश्यकता है उस पर जो आज हमने बातें की, ये कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर वो प्रभाव ज़रूर अंकित करेंगी ऐसा मेरा विश्वास है। चलते चलते हमारे श्रोताओं को अगर कुछ और महत्वपूर्ण सलाह या संदेश आप देना चाहें तो।
0: एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं नासा के मंगल ग्रह परियोजना के लिए काम कर रहा था,
1: जी
0: तो मंगल ग्रह परियोजना जो है वो इस व्यू में लेकर चलाई गई है कि इंसानों को पृथ्वी से मंगल ग्रह पर बसाया जाए, उसका बेसिक यही है। तो अगर हमें इतनी सुंदर, इतनी रिच ईश्वर की दी हुई पृथ्वी मिली है, उसे हम सुधार लें, अरबों डॉलर मंगल ग्रह परियोजना और इस तरह की इसमें जा रहे हैं। सॉरी टू से, मैंने उसी के लिए काम किया, मेरी ब्रेड बेटर उसी से थी, लेकिन मैं वहां भी ये बोलता था कि अगर हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं मंगल ग्रह परियोजना के लिए, उसका एक हिस्सा अगर हम पृथ्वी पर, पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए खर्च करें, तो क्या जरूरत है उस बेजान ग्रह में जाकर सिर मारने की। दूसरी बात यह है कि हर नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि वो अपनी अंतिम पीढ़ी नहीं है,
1: उसके
0: उसने और
1: बाद
0: भी लोगों
1: भी
0: को पैदा किया, वो और लोगों को पैदा करेंगे, पृथ्वी चलती रहेगी, उसकी संतति चलती रहेगी। अगर चलती रहनी है तो आपको आज ही सोचना पड़ेगा।
1: नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, मनन करने की ज़रूरत है, हम में से हर किसी को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज डॉक्टर आनंद राय साहब हमारे स्टूडियो आकर हम सबसे मुखातिब हुए, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आपने ये भेंट वार्ता सुनी, स्वच्छ भारत से प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना विषय पर डॉक्टर आनंद राय से भेंट कर रहे थे अनेन्द्र सिंह। दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, वार्ता के माध्यम से आपने जाना और ये भी जाना कि हमारा जो देश है भारत, ये तमाम इसमें उत्सव महोत्सव पर्व सब मनाए जाते हैं, कहीं प्रसाद वितरण हो रहा है, कहीं खाने का हो रहा है, कहीं लिक्विड में कोई शरबत या जूस आपको दिया जा रहा है प्रसाद लगाकर भगवान का, और हम क्या करते हैं कि बहुत शौक से उस प्रसाद को ग्रहण तो करते हैं लेकिन जिस बर्तन में यानी प्लास्टिक के जिस प्लेट में या कप में हमको जो सामान दिया गया है उस प्लास्टिक के प्लेट और कप को हम ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है क्योंकि हमारा जो देश है भारत, उसकी जो नींव है वो खेती किसानी की नींव है। जाहिर सी बात है, मिट्टी खेती किसानी की नींव है और हमारी मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी फसलें उतनी ही अच्छी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है इस बात को कि हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ कैसे बनी रहती है? हालांकि इसमें कीटों का हाथ होता है और जो हमारी नज़र से अक्सर अदृश्य रहता है, लेकिन जो हम पॉलिथीन्स हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं या जो भी प्लास्टिक का सामान है उसको यूज़ किया और ऐसे ही फेंक देते हैं और वो धीरे धीरे करके खेतों तक भी पहुंच जाता है, खेतों में भी बहुत सारे आपको प्लास्टिक के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक को कहा जाता है ये अवशोषित नहीं होती, ये ख़त्म नहीं होती है कभी, तो जब ये खेतों में तक पहुंचेगी, खेतों में होगी तो वहां की मिट्टी को प्रदूषित करेगी और जब मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी तो फिर खेती कैसे होगी, कैसे हम सब भरण पोषण कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जो धरती है वो तो बहुत उपजाऊ है लेकिन हम सब लोग मिलकर इसको प्रदूषित करने पर लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमें कठोर कदम उठाने होंगे और बिल्कुल कोशिश करें कि या तो हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें और अगर मजबूरीवश प्लास्टिक के बैग्स का या प्लेट्स का या जो भी आइटम है उसका अगर हमें उपयोग करना पड़े तो एक उसके लिए निश्चित स्थान बना लें ताकि उसको वहाँ डाल दें हम, और कहीं ऐसी जगह जाके उसको डंप किया जा सके ताकि वो दूसरी जगहों को, खास तौर से हमारे खेतों को, हमारी उपजाऊ भूमि को नुकसान ना पहुंचाए, तभी हम इस प्लास्टिक के प्रदूषण से बच सकते हैं।

तो श्रोताओं, बहुत कुर्बानियों के बाद हमने आज़ादी की नेमत पाई है और इस आज़ादी को यूं ही बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हमें अपने जो देश की माटी है उसको प्रदूषण से, किसी भी प्रकार के प्रदूषण से, खासतौर से प्लास्टिक प्रदूषण से दूर रखना होगा, तभी हम कह पाएंगे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और इसके साथ ही अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मों से कवालियां, कार्यक्रम महफिल कवाली के तहत।

मेरे हमदम मेरी दोस्त, इस फिल्म की कव्वाली आपने सुनी लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी इस कव्वाली को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी, मनाडे, सुधा मल्होत्रा, बातिश और साथियों ने। साहिर लुधियानवी की इस लिखी कव्वाली को संगीत से संवारा है रोशन ने। आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे बरसात की रात फिल्म की कव्वाली, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, सुधा मल्होत्रा, बातिश और साथियों के स्वर में। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महफिल कव्वाली। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली कव्वाली।

मुगल आजम फिल्म की कव्वाली आपने सुनी लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों के स्वर में। शकील बदायूनी की लिखी इस कव्वाली को संगीत से संवारा था नौशाद ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की लिखी ये कव्वाली, जिसे हमने लिया है अमर अकबर एंथोनी फिल्म से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

अमर अकबर एंथोनी, इस फिल्म की कवाली आपने सुनी मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। कवाली आनंद बख्शी ने लिखी थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता, उसके साथ ही कार्यक्रम महफिल कवाली अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

तीसरी कसम फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। अब सुनते हैं दूर गगन की छांव में फिल्म का गीत। गीत, संगीत और आवाज किशोर कुमार की है।

अभी आप सुन रहे थे दूर गगन की छांव में फिल्म का गीत। गीत संगीत और आवाज किशोर कुमार की थी। दूसरा आदमी, आइए सुनते हैं फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत राजेश रोशन का।

किशोर कुमार की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी की गीत रचना को संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फिल्मी गीत अब आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे अपनी पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा में। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: Prime Minister will also be visiting...
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे।

0: वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधार कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर

में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के

0: अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम

विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रूपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकिफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफिका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामिया नुक्ता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत, जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे, जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमी कंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड

0: मकामी कंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज OSAT का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं, जिन पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई, दयानतदारी और आला तरीन पेशावराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख बरकरार रखते हुए अवाम को बाखबर रखने का काम करता है, सवाल उठाता है और बाशऊर अवामी मुबाहसे की हौसला अफजाई करता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत एलनिनो की वजह से मुल्क के बाज़ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतालिका वजारतों को चौकस रहने और रियासती हुकूमत के साथ राब्ते में रहने के लिए कहा है ताकि किसानों को मुनासिब फसलों के बारे में मशवरा दिया जा सके। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल DSE ने दिफाई अफवाज की जंग की तैयारी को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की कैपिटल हुसूलियाबी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मंजूर शुदा तजावीज फौज, बहरिया और फजाइया की हरबाबंदी की सलाहियतों में इजाफा करेगी। भारतीय फौज के लिए एंटी अनमैंड एरियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग की खरीदारी के लिए मंजूरी दी गई है, जो फौज की सफबंदियों को मौसर एंटी UAV तहफ्फुज़ फराहम करेगा। कौंसिल ने मैन पोर्टेबल टैंक मुखालिफ गाइडेड मिजाइल निज़ाम, दरमियानी दूरी तक जमीन से फजा में वार करने वाले मिजाइल हथियारों के निज़ाम, बहुत कम दूरी तक वार करने वाले फजाई दिफाई निज़ाम, टैंकों के लिए फ़ाल तहफ़ुज़ाती निज़ाम और जेट बेस्ड कामिकाजे ड्रोन निज़ाम की खरीदारी को भी मंजूरी दी है। भारतीय बहरिया के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, नेवल शिपबॉर्न अनमैंड एरियल निज़ाम की खरीदारी और इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन निज़ाम के लिए जमीनी टेस्टिंग सहूलत के क्याम की मंजूरी दी गई है। उधर भारतीय फजाइया के लिए फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सीडो सेटेलाइट की खरीदारी की मंजूरी दी गई है, जो भारतीय फजाइया के लिए मुस्तकिल इंटेलिजेंस, निगरानी, मवासलात और रिमोट सेंसिंग के काम अंजाम देगा। आकाशवाणी दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेटा की एक टीम ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत के हुक्काम के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम्स फीचर के रोल आउट के मामले पर उन्हें समन नोटिस भेजने के बाद हुई। जराए ने बताया कि वजारत के हुक्काम ने इस फीचर से मुतालिक सरकार की तशवीश के बारे में उन्हें आगाह किया। ज़राए ने मजीद कहा कि यूजर नेम्स फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने के लिए वक्त की हद 3 दिन दी गई है, इसलिए मेटा मुकर्रा वक्त के मुताबिक अपना हतमी जवाब पेश करेगा। इसी दौरान ज़राए ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्विनी वैष्णो ने वजारत के हुकाम को हिदायत दी है कि वो इंस्टाग्राम के उन एड्स के मामले पर मेटा को समन भेजें जिनमें भारत में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के मवाद को फरोग दिया जा रहा है। वजारत इस मामले पर मेटा से वजाहत तलब करेगी। हुकूमत ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से BAT, BMS, इपोकायन और लॉसिजी एप्स हटाने के अहकाम जारी किए हैं। ये इकदाम सिक्योरिटी के मद्देनजर किया गया है। ये कदम इन इल्जामात के बाद उठाया गया है कि इन एप्लीकेशंस को ई रिक्शा समेत ई व्हीकल्स को रिमोट के जरिए नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इत्तला और नशरियात की वजारत ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस तहकीकती कौंसिल BARC को न्यूज और गैर न्यूज दोनों तरह के प्रोग्रामों में उस वक्त तक टेलीविजन रेटिंग्स की इशात को रोकने की हिदायत दी है जब तक कि टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत उसके लाइसेंस की तजदीद नहीं हो जाती। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने आज कोहिमा में खेलों के बुनियादी ढांचे के 16 प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इनमें खेलो इंडिया प्रोग्राम के

0: तहत 4 और रियासती फंड से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आला रियो ने सोशल मीडिया पर कहा कि रियासती हुकूमत ने मयारी बुनियादी ढांचा तैयार करके और आलमी मयार की तरबियती सहूलियात फराहम करके खेलों के शोबे को तब्दील करने की खातिर एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद मिलेगी और नागालैंड और मुल्क का नाम रोशन होगा। पंचायत राज की वजारत ने 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 2,76,000 देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: अमली अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इनफरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है, जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़राई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। ये फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है, जहां किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गई। यह तादाद गुजश्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिनसे कम अज कम 2,000 इजाफी अमवात का एंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि यह आदादोशुमार नामुकम्मल है और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीफ में रूसी हमलों से होने वाले नुकसान की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बम्बारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमरीका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तुगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमरीका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ राब्ते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे।

दिफाई साजो सामान की हौसलाअफजाई की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। जी हाँ, फिल्म संगीत, वो भी आप सभी की पसंद का। पत्रों के माध्यम से आप सभी अपनी पसंद हम तक पहुंचाते हैं और हम उन्हीं पत्रों को पढ़कर यानी आपके नाम बताकर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज की फरमाइश के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा और सबसे पहली फरमाइश, ये हमारे हाथ में पत्र लिखा है, रखा है लदावली जिला मुरादाबाद का। आप सभी ने लिखा है अजीत कसाना, माया देवी, आदित्य कसाना, बस स्टैंड डिलारी से सुमित सागर, मीना सागर और गीता सागर। आप सभी की पसंद पर सबसे पहला जो गीत है वो है राजहट फिल्म से, आइए सुनते हैं।

लदाबली जिला मुरादाबाद और बस स्टैंड डिलारी से जो हमें पत्र मिला था, उन श्रोताओं की पसंद पर आपने राजवट फिल्म का गीत सुना।

ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ था, लता मंगेशकर और साथियों के आवाज में था, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की पसंद पर, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैनी बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नी सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, हृदयांगनी कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। करुणा मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जीतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं आए दिन बहार के फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पसंदीदा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। मेरे यानी आपकी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा के साथ कार्यक्रम का अगला गीत रामअवतार फिल्म से है, मोहम्मद अजीज की आवाज में। पसंद आप सभी की है। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडो खेड़ा, जीवन सिंह बोक और समस्त खेड़ा परिवार। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत कौर और सीएस बेगाना। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमन मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हर्षित पुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी और अरुणपुरी। यहीं से नेहापुरी, एकतापुरी, शमसीपुरी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, वीकेपुरी और आरएसपुरी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं रामअवतार फिल्म का ये गीत।

राम अवतार फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद अजीज की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की पसंद पर गांव कैरो पंजाब से सुनीता शम्मी सरजनी आकाशदीप बेबी अनहा पोत्रा और गुरुबख्श। यह है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सीआर कुलकर्णी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश बत्ता। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कस्मे वादे फिल्म का गीत किशोर कुमार आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में।

कार्यक्रम का अगला गीत पहचान फिल्म से है। आवाजें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। पसंद किसकी है ये गीत सुनने के बाद आपको पता चलेगा। आइए सुनते हैं पहले पहचान फिल्म का ये गीत।

पहचान फिल्म का गीत आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। पसंद आप सभी की थी। अलगी डांड कोरबा छत्तीसगढ़ से लोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फुलजी यादव एवं समस्त यादव परिवार। कवाई सालपुरा जिला वारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुपरिया अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, रमेश मिगलानी। और भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, मुरली क्षत्रिय खान और सावन नायक। श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम गीत जानीमन फिल्म से है। आवाज लता मंगेशकर की है, पसंद आप सभी की। शार्दुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। गांव चौहलदा से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। आप हैं उत्तर प्रदेश लोनी से रजा अहमद, इसरत जहां, जमाल, कमाल, माहिर और बुशरा और उनके समस्त परिवारीजन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। और आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं जानेमन फिल्म का ये गीत।

जी हाँ श्रोताओ, आपको भी हमारी याद अगर आए तो आप आकाशवाणी आगरा को ये पत्र लिख सकते हैं। अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक विभव नगर आकाश

जानी मन फिल्म का गीत आपने सुना है लता मंगेशकर की आवाज में, और उसके साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं इरा मुखर्जी का गाया धमार। धमार राग मालकोस में निबद्ध है। आलाप और धमार के बोल हैं बनिए तो बंसीधर। आपके साथ सारंगी पर हैं आशिक अली खां और पखावज पर उदय कुमार मलिक।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे इरा मुखर्जी का गाया राग मालकोस में धमार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का

0: अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty, IWT, remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing later in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism.
3: India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism.
2: On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods exports to rise from about $440 billion to around $530 billion and services exports to increase from roughly $421 billion to about $470 billion. The minister noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive approach in which every state, district and industry segment is treated as equally important. Later, speaking